यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में
1: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जिगोगाशा की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती है। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य

0: साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जेगो गौशा की ओर भेजा गया है। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। राष्ट्रपिता सर शिवसागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। एसएसओ बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर, पोर्टविस वॉटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा पर और उनके जन्म स्थल केवल नगर बेलगीव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप का आयोजन किया जाता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमलों में किया युद्ध अपराध, तेहरान ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम में सुधार आने लगेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आज रात पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दोपहर बाद को समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:03 पर और शाम 6:05 पर सूरज ढल जाएगा।
1: RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे अजीज सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु, सुबह बखैर, यौम जुम्मा मुबारक हो। फिलहाल आप ORM Free रेडियो पर उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर समात कर रहे हैं। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का पुरखलूस इस्तकबाल करता है। सामईन, कुछ महीने तारीख में आते हैं और गुजर जाते हैं, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो अपने साथ यादों की खुशबू और अकीदतों का मौसम लेकर आते हैं। माह रबीउस्सानी में हम महबूब सुभानी कुतब रब्बानी इमामुल औलिया गौसे आज़म हज़रत अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक मनाते हैं। इसी मुनासिबत से आज की सबाल खैर में हम गौसे पाक रहमतुल्लाही की हयात मुबारक और खिदमात का ज़िक्र खैर करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें औलिया कामिलीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। आइए सामईन, इस अंजुमन का बाकायदा आगाज कलाम इलाही की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

मोहतरम सामईन, महबूब यजदानी, कुतब रब्बानी, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही ने पैदा होते ही रोज़ा रखा। 5 बरस की उम्र में जब आप रहमतुल्लाही पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म अदा करने के लिए एक बुज़ुर्ग के पास बैठे, तो आपने औऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और अलीफ लाम मीम से लेकर 18 सिपारा पढ़कर सुना दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा, और पढ़ो? तो जवाब दिया, मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उस वक्त पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया था। सामईन, 11वीं शरीफ के ख़ास मौके पर आइए हस्ब मामूल जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक ख़ताब समात करते हैं।

0: अगर किसी का दिल हक की तरफ है तो ये उसका अजीम एहसान है। किसी से अगर नेकियां हो रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में सुन्नत और शरीयत की बहार है, तो ये अल्लाह जल्ल मजदहू का अजीम इनाम है, अजीम तर इनाम है। और ये अल्लाह का उस पे एहसान है। और अगर किसी का दिल हक से हट गया, फिर गया, तो ये उसके गुनाहों की वजह से, बदामालियों की वजह से है। सो ऐसी दुआ जिसमें दिल हक की तरफ रहे, हक पे रहे, बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अपनी उम्मत को सिखाई कि अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ फल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। ए अल्लाह, दिलों को बदलने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। जो हदीस हमने खुतबा में पढ़ी उसका तर्जमा ये है, अन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस رضي الله عنهما قال قال رسول الله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रावी हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, दिलों को बदलने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। हम भी ये दुआ पूरी उम्मा के लिए करते हैं कि मौला सबके दिल अपनी इताअत की तरफ फेर दे। बमा अलैना इल्ल बलाग।
1: मोहतरम सामईन, उर्दू नशरियात सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आपने जामा मस्जिद पोटलवी के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया का एक ईमान अफरोज बयान समात फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ों एहसान कि उसने हम जैसे गुनहगारों पर करम फरमाकर हमें गौसे आज़म रहमतुल्लाही जैसे बरगुजीदा वली कामिल के दामन करम से वाबस्ता होने की सआदत अता की।

सामईन कराम, पीरान पीर रोशन ज़मीर, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इल्म दीन की मज़ीद जुस्तजू की और 18 साल की उम्र में बगदाद तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वही उन दिनों इल्मी और सियासी एतबार से मुसलमानों का मरकज़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म दीन हासिल करने का इस कदर ज़ौक व शौक़ था कि इल्म की खातिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ घर बार को खैरबाद कहकर दूर दराज का सफ़र अख्तियार किया, बल्कि अपनी शफीक माँ की जुदाई भी गवारा फरमाई। बगदाद पहुँच कर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के मशहूर व मारूफ और इंतहाई माहिर उस्तादों से इल्म दीन हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से उलमाए वक्त और मशाइख़ ज़माना से इल्म दीन हासिल किया।

0: उनकी सोहबतों में रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के उलमा और मशाइख में से बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़ हुए। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मे दीन सीखने के लिए फाका कशी यानि भूख और तकालीफ बर्दाश्त की। इन सब के बावजूद कभी भी ज़बान से कोई शिकवा शिकायत के अल्फाज ना निकले।
1: या

सामेईन इकराम, पीराने पीर रोशन ज़मीर, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अली इल्म का समंदर होने के बावजूद कुरान पाक की कई तफासीर पढ़ते और बयान फरमाते, कसरत से इबादत और रियाजत करते। आप रहमतुल्लाह अली 15 साल तक रात भर एक रकत में कुरान करीम ख़त्म फरमाते। गोया गौसे आज़म रहमतुल्लाह अली की ज़िंदगी का हर एक लम्हा शरीयत मुतहरा पर अमल करते हुए गुजरता था। आप रहमतुल्लाह अली 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते रहे।

मोहतरम सामईन, शेखुल मशाइख हुजूर गौसे पाक हज़रत सैदना अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान व हदीस, इल्म फ़िक्ह, जग्राफिया, इल्म तिब, तारीख, तफसीर, हिसाब, लुगत के अलावा दिगर उलूम में काबिले कदर किताबें लिखीं। उनकी किताबों की तादाद 300 से ज़्यादा बताई जाती है, जिनमें कई मुजल्लिद यानी वॉल्यूम्स हैं।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

प्रणाम मैं श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। और कहा जाता है कि भक्ति में लीन मनुष्य की मार्ग कभी भटकते नहीं, और भक्ति में लीन मनुष्य हमेशा सत्मार्ग पर ही चलते हैं और उन पर हमेशा परमात्मा की कृपा बनी रहती है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं, शुक्रवार माता रानी को समर्पित है। कहा जाता है माता रानी शक्ति का स्वरूप है, उन्हें अनेकों नाम से भी पुकारा जाता है जगदम्बा।

किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होते हैं अपने भक्तों की रक्षा हेतु। जिसने भी माता रानी को पूजा है उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए हैं। जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम है, माता रानी उनके भीतर ही वास करते हैं। आइए प्रेम से माता रानी का नाम लेते हुए इस वंदना को हम सुनते हैं।

तो श्रोताओं, अभी हम माता रानी के गुणगान कर रहे हैं और कहा जाता है कि हर अंत का एक आरंभ है और हर आरंभ का एक अंत है। ये केवल एक वाक्य ही नहीं अपितु ये जीवन की सच्चाई है। जीवन में जब जब ऐसा समय आए जहां लगे कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, तो बस आप अपने मन में यही आश रख लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो अंत है उसका एक आरंभ भी होगा। जिस प्रकार पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उगाते हैं, उसी समान हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन भी उसी भांति हैं। तो आइए अभी एक और सुंदर भजन हम सुनते हैं तृप्ति संज्ञा जी के वाणी में।

जिसने भी नाम धरा माँ का उसके सभी विघ्न हर जाते हैं। कहा जाता है जब जीवन की राहों में अंधकार छा जाए, जब अपने भी अनजान से लगने लगे, जब मन में उठे सवालों का, प्रश्नों का कोई उत्तर ना मिले, तब एक ही नाम हृदय को सहारा देता है और वो है अम्बे माँ। कहते हैं जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसके जीवन की कठिन राहों भी एक न एक दिन आशीर्वाद में बदल जाती हैं। माँ के दरबार में जो भी भक्त जाते हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को शक्ति मिलती है, किसी को शांति, किसी को आशा और किसी को केवल इतना विश्वास कि माँ मेरे साथ हैं।

0: शक्ति।
1: श्रोताओं कहते हैं कि माता रानी के श्रृंगार जो भी करता है उनके जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम अवश्य आते हैं। आइए एक और सुंदर सा भजन हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल जी की वाणी में।

श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर परमात्मा की कृपा बनी रहे, बस यही आशा है। आप सभी को पूजा की ओर से प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: संध्या देश विदेश की खबरें आपसे गीता, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार नीतुषा, सभी को हमारा नमस्कार। आज सुबह पॉम्पलेमोसिस के बोटानिकल बाग में भारी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपिता सचिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए गए और प्रार्थनाएं की गईं। उनके बेटे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, उनकी बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के कई समर्थक वहां मौजूद थे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत रख रहे हैं। गोविंदन पूजा के दौरान भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में पानी की निगरानी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया के जल संसाधनों की सुरक्षा के महत्व को समझाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और ये संख्या करीब 2 बिलियन लोगों के बराबर है। असुरक्षित पानी पीने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। और विदेश खबरों में, अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना है कि उसने अंतरिक्ष में ऐसे ऑन ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल हथियार तैनात किए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की अंतरिक्ष क्षमताओं को बाधित, कमजोर या नष्ट कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ने पिछले दिनों ये जानकारी साझा करके अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की आशंकाओं को और बढ़ावा दिया है। साथ ही करीब 60 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संधि की सीमाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। लापेगोस ओकुले में 73 साल के 73-year-old के श्री कृष्णदत्त हनुमान, जो राज से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके घर लापेगोस ओकुले से उठाकर बिकागा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। कारोलालो बेनोडे दे सेंपिया वाले दे प्रत्र में 85 साल की 85-year-old की श्रीमती देवावती भीपा, पैदाश नाम टेंगा और जो देवावती से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कागोलालो बेनोडे दे सेंपिया वाले दे प्रत्र से उठाकर सिपाही भोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। 64 साल के 64-year-old के श्री कादरेस सिनेवा सेन मोरी, जो वेला से ज़्यादा जाने जाते थे और जो काथ्रबो बनाकई रहते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे ओम शांति अंकियता से उठाकर लावोंचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड 57 साल के 57-year-old के श्री देवानंद झगड़ू, जो विकास से ज़्यादा जाने जाते थे और बोबासा पुलिस स्टेशन में सर्जेंट थे और नंबर 9 मौसलमा लिटांग बोबासा रहते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम 4 बजे लाशापेल अदांत एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासा से उठाकर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति

0: हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। शुक्रवार 18 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:05, रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमिता और आप सबका साथ देने के लिए हम आ गए हैं सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम को लेकर। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए तैयार हो जाए सुहाना सफ़र के इस खूबसूरत सफ़र में। 2 घंटे का ये जो सफ़र है बहुत ही यकीनन खूबसूरत होगा, यादगार होगा। पुराने गाने तराने यहाँ पर आपके लिए हम चलाएंगे और थोड़ी देर में हम अपने टिकटॉक पेज पर, रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भी हम तक पहुँचा सकते हैं 4028070 पर। साथ ही आप मैसेज कर सकते हैं 5250602000 पर। और चलिए आज का दिन बहुत ही विशेष भी है, बहुत ही खास भी है। राष्ट्रीय पिता, फादर ऑफ नेशन सर शिव सागर राम गुलाम जी को हम श्रद्धांजलि देते हुए इस सुंदर गीत के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय जय

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, खूबसूरत गानों का मौसम कहे या प्यार का मौसम कहे, गाने ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं प्यार का एहसास हो ही जाता है। सुहाना सफ़र ये जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोपहर के 2 बजे तक हम जो है आपके साथ साथ रहने वाले हैं और आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे। दोपहर का वक्त है, लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनापेची आप सभी को। बहुत सारे ऐसे लिसनर्स भी होते हैं जो काम करते हैं, लंच ब्रेक मिलता है तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए, साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत तो शुक्रिया। इस समय हमारे साथ वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ किरण पुरी जी जुड़े हुए हैं। थैंक यू किरण जी, हमेशा आपका मैसेज आता है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं। सो आपके इस साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना जो है आपके नाम हम करेंगे, आपकी ओर से गाना जाएगा। जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी, कलाराम कारीगर और वैंकूवर के आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हम हमारे साथ कनेक्टेड है ये गाना सभी के लिए। तो चलिए, जो गाना है यहाँ पर होटल फिल्म का ये तराना होगा, आशा जी और मनर जी की आवाज़ों में। आप सभी के नाम हम करते हैं और भूलिएगा नहीं, 4028070 है नंबर हमारा फॉर योर फ़ोन कॉल। साथ ही आपके मैसेजेस ऑन 5250 6200 पर। और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, सो आप अपने डेडिकेशंस जो है, अपनी फरमाइशें जो है, हम तक बेशक पहुंचा सकते हैं।

0: सुहाना सफर
1: चले। इन गानों से कौन भला प्यार नहीं करता, गाने हैं ही इतने खूबसूरत। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू उज्जवल जी आपके मैसेज के लिए। निजाम बहादुर जी कैसे हैं आप? उज्जवल जी हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक है। हाय फिया, हाउ आर यू? और यहाँ पर वी हैव निरिका। हाय निरिका, कैसी है आप? हेलो माधुरी जी, आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ साथ जुड़ी है और यहाँ पर भी आपका मैसेज हमें मिला। आपके गाने को थोड़ी देर में हम चलाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। वी हैव जितेन दलुआ जी, नमस्ते जितेन जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। और जितने हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्ताना जी कैसी है आप? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आपको हमने यहाँ पर देखा। सुबी जी, हेलो सुबी जी, कल ही आपका मैसेज हमें मिला था, आपने कहा कि काफ़ी दिन से हम लाइव पर नहीं आए हैं, चलिए आपने कहा और हम आ गए। कैसी है आप सुबी जी? और हम दोनों मिल के ओके ज़रूर इस गाने को हम शामिल करेंगे। हाय पिया जी, अब दिल्ली दूर नहीं मूवी का गाना। ऑल राइट, विल ट्राई टू प्ले। एंड वी हैव यूजर, ओ हाय वेदना कैसी है आप? सनम तेरी कसम, ओके विल ट्राई टू सी, अगर मौका मिला तो इस गाने को हम ज़रूर ज़रूर चलाएंगे। उज्जवल जी ओम नमः शिवाय आपको भी। हाय परी कैसी हो? परी आपका मैसेज हमें यहाँ पर मिला, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। कयाक, हेलो कयाक, हाउ आर यू? किरण पुरी जी, थैंक यू सो मच, आप भी व्हाट्सएप और टिकटॉक दोनों पर हमारा साथ दे रहे हैं। और अगला गाना आपके नाम और आपके सभी दोस्तों के लिए होगा। वी हैव रेखा रामा जी, कैसी है जी आप? हेलो रोशनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? अगला गाना फिल्म हम, टाइटल सॉन्ग हम, शायद आप अमिताभ बच्चन वाले हम की बात कर रहे हैं, तो वो गाना तो इस प्रोग्राम में हम नहीं शामिल कर सकते क्योंकि ये सुहाना सफ़र ये जो प्रोग्राम है ये पुराने गानों का प्रोग्राम है। तो कोई पुराना गाना अगर आप चाहे तो बेशक, अभी के लिए जो अगला गाना है आए दिन बहार के फिल्म का तराना है, रफ़ी साहब के सभी फैंस के नाम, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: Mere dil se

0: सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते दोपहर के 12:32 ऑलरेडी हो चुके हैं। सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर आप हमें सुन रहे हैं और साथ ही हमारे टिकटॉक पेज पर आप हमें फॉलो भी कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए, इस समय माधुरी और परी भी हमारा साथ दे रही है और कह रही है कि हमारे लिए एक गाना हो जाए धर्मवीर फिल्म का, और कह रही है कि हम दोनों को भूलिएगा नहीं। बिल्कुल, आप दोनों को कैसे भूल सकते हैं, इतने प्यार से आप दोनों हमेशा जो है हमारा साथ देती है। और यहाँ पर परी जी का भी मैसेज आया है। ओके चलिए, यहाँ पर अगला गाना आप दोनों के नाम हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे तो 90s के गाने यहाँ पर नहीं चलते हैं, लेकिन ये जो अगला गाना चलने वाला है ये सभी मनसुख परिवार के नाम हम करेंगे। रेणुका जी, थैंक यू आपके प्यार भरे साथ के लिए। वी हैव स्वराज, प्रिंस, राज, कृष्ण, नविता, कौशिक, आरती सुकन जी, थैंक यू। रुमिता है, कविता है, नीलिमा है, मनोज है, ईश्वर अधिकारी जी जो बाली इंडोनेशिया से हमारे साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला तराना धर्मवीर फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सबके नाम करते हैं।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: और चलिए खूबसूरत गानों का सफ़र, खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और रेडियो मनोरंजन पर आपका प्यार भरा साथ हमें यूँ ही मिलता रहे। और पुराने गाने ऐसे हैं कि कुछ गाने हमारे दिल के इतने करीब है और काफ़ी दिनों बाद जब सुनते हैं तो न जाने कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना। और आई बिलीव जितने भी गाने यहाँ पर चलते हैं सुहाना सफ़र के इस

0: प्रोग्राम में कोई ना कोई गाना किसी ना किसी के दिल के करीब ज़रूर है, कोई ना कोई यादें इन गानों से ज़रूर जुड़ी हुई है। अगर आप बताना चाहते हैं कि कौन सा गाना सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ या किसकी याद आई, तो बेशक आप अपने मैसेजेस जो है हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 5250-6200 पर, या तो हम इस समय इस वक्त जो है रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी, आप वहाँ पर भी अपने मैसेजेस हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी के लिए एक हसीना दो दीवाने फिल्म का ये तराना है मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ों में, दो कदम तुम भी चलो। ये गाना खासकर रोशनी जी आपके लिए, वी हैव लीना, वी हैव कल्याणी जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। निशी ने कहा कि अगला रोमांटिक सा गाना हो जाए इनके हस्बैंड विक्रम दर्शन के नाम। अविनाश जी थैंक यू सो मच हमारे लाइव को शेयर करने के लिए। एजे और अंजू ये गाना आप दोनों के लिए भी हम करेंगे। सानिया जी हमारा साथ दे रही है, वी हैव पूनम, श्यामा है और यहाँ पर समीता जी की ओर से कह रहे कि अगला गाना उनके लव के लिए हो जाए। ऐसे आपने गाना हमें लिखकर तो भेजा था लेकिन हम समझ नहीं पाए कौन सा गाना था, वो तो आप दोबारा हमें भेजें, कोशिश करेंगे चलाने की। सुविता जी आपकी ओर से अगला गाना आपके सभी कलीग्स के नाम जो कालबास और शिबेल में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अमृता है, शोभा है, ऐसे दो दो शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आप दोनों का वेलकम है और ये अगला तराना आप दोनों के नाम हम करते हैं। रोहित है, देवेन है, आप सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी के लिए ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: का सफर।
1: जी हाँ, दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे। यकीनन जिंदगी के इस सफर में अगर कोई अच्छा हम सफर होता है, कोई अच्छा दोस्त होता है, तो ये जिंदगी का सफर आसानी से कट जाता है। कभी कभार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलते रहती है। शायद किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है और हमें भी रुकना नहीं चाहिए। और ऐसे में चलिए अगला जो गाना है, अरुणा जी आपके और आपके हस्बैंड राजेश के नाम हम करेंगे। संजना जी है कैप की ओर से ये गाना उनकी वाइफ लवी के लिए। रोहित राज जी आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। वी हैव जेवीना, कुलराज, एमी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए जो अगला तराना है उन सभी के नाम जिनका भी आज बर्थडे है। यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है कि उनकी फ्रेंड प्रीति का बर्थडे है, लेकिन आपने अपना ही नाम नहीं बताया। तो चलिए आपकी ओर से आपकी प्यारी फ्रेंड प्रीति को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर नीलिमा जी अपनी ग्रैंड डॉटर फिदू सानवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है। सानवी आपको हैप्पी बर्थडे यहाँ पर नीलिमा जी की ओर। और यहाँ पर परी की ओर से प्यारी सी माधुरी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, कल उनका बर्थडे है। और यहाँ माधुरी जी आपने भी, माधुरी जी का भी मैसेज आ गया कि कल तो आप नहीं होंगी ना सुमी जी, तो आज हमारे लिए गाना बर्थडे का आज ही चला दे। चलिए माधुरी जी हैप्पी बर्थडे आपको हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। आप हमेशा ऐसे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारा साथ देते रहे। आप लोगों का साथ है तो हम हैं, हम ये हमेशा कहते हैं, आप है तो हम हैं। और यहाँ पर जेवीना जी प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नम्रता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है हो सके तो हेमंत कुमार जी का कोई गाना, ऑलराइट मौका मिलेगा तो हम ज़रूर चलाएंगे। राज जी हमने देखा आपने गाने की रिक्वेस्ट की है, विल ट्राई टू प्ले दिस थोड़ी ही देर में। और चलिए सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र है, कुछ और नाम हम जल्दी जल्दी यहाँ पर जोड़ते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ रोजबेल से सरिता जी भी साथ दे रही है। यहाँ पर मैसेज नहीं दिख रहा है, ओके ओके सरिता जी आपको अपना मैसेज नहीं दिख रहा है, ओके फिर से दोबारा भेजिए, क्या पता आपको दिख जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। और राज शोभा जी वापस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर करुणा जी

ने कहा अगर संगम फिल्म का कोई गाना हो तो चला देना, बिल्कुल हम जरूर चलाएंगे। यहां पर अगला गाना जाता है डॉक्टर युजेशा के नाम, जो अपना 27th बर्थडे मना रही है। रेशमा जी की ओर से उनकी प्यारी बेटी युजेशा को हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और ये गाना उन सभी के नाम जिनका भी बर्थडे है आज, आने वाले दिनों में आप मनाने वाले हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर सुहाना सफर में अब बारी है इस अगले तराने की, और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं दोपहर के एक बजे के समाचार की ओर। और समाचारों पर जाने से पहले चलिए यहाँ पर कुछ नाम जोड़ लेते हैं। अनु हमारा साथ दे रही है, हमेशा हमारे प्रोग्रामों में जुड़ती है। मंजुला जी अगला गाना आपके हस्बैंड संदीप के लिए। देन वी हैव मीना कुमारी जी, शवीना रोजल से साथ दे रही है। रुमिता जी अगला गाना आपकी ओर से, सभी दशरथ और सभी गुजा परिवारों के नाम।

0: अमृता जी आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। डेजी जी जो गाना आपने कहा, थोड़ी देर में इसे हम चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड देन वी हैव श्वेता, संगीता, जीतन, यही गाना जाता है सुनीता जी आपके लिए भी। जय जी नमस्कार, कैसे हैं आप। एंड वी हैव आरती जी, हेलो आरती जी। तो चलिए यहाँ पर इस गाने के साथ, यानी कि चिच्चोर फिल्म का जो अगला तराना चलने वाला है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचार की ओर। एंड हमारी आपकी मुलाकात होगी इन द सेकेंड आवर ऑफ सुहाना सफ़र।
1: RM3 Radio.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार नीतू शाह सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार आज सुबह बोटानिकल बाग में कि कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सर शिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की उनके बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गईं एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले को फूलों के साथ नमन किया गया मिसी मुस्तास लीक्स की जांच के सिलसिले में कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ सीसीआईडी के मुख्यालय पहुंचे लेकिन पुलिस के अनुसार उन्होंने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया आज सुबह प्रवीण जगनाथ ने पुष्टि की कि उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि जांच करने वालों ने स्पष्ट रूप से उनके सामने कोई तथ्य या स्थिति की जानकारी नहीं रखी विदेश की खबरों में नाइजीरिया में अवैध खुदाई करने के आरोप पर गिरफ्तार 37 लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई पुलिस ने इस मामले में एक जांच शुरू की है अधिकारियों का कहना है कि इनकी मौत बीमारी फैलने के कारण हुई है एक दूसरा कारण सेल के अंदर हवा की कमी और भीड़ भी बताई जा रही है मामले की तहकीकात के लिए एक कमांडर को हिरासत में लिया गया है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार लापेरोज ओकुले में 73 साल के 73 इयर्स ओल्ड के श्री कृष्णदत्त हनुमान जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान लापेरोज ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 8:30 PM कारोला लो बेनोदेन दे सेंट पियर वाली दे प्रेत में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवावती बीपा पैदाशी नाम तेंगा और जो देवावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी सपहर 2 बजे उनके मकान काहोलालो बेनोदेन दे सेंट पियर वाले दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 8:00 PM कत्र बो बोन अकाई में 64 साल के 64 इयर्स ओल्ड के श्री कद्रेस सिनिवासन मोरी जो वेला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी सपहर 3 बजे ओम शांति ओरिएता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 8:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफ़र का ये जो सेकंड आवर है इसमें आप सभी का वेलकम हम करते हैं, जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है चलने वाला है दोपहर के 2 बजे तक, और अभी तक आपने अपनी फरमाइश या अपनी रिक्वेस्ट हम तक नहीं पहुँचाई है तो बेशक आप पहुँचा सकते हैं ऑन 5250-6200 पर, साथ ही यू कैन कॉल अस ऑन 4028070 पर। तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए अगला गाना जो है हम अनु आपके नाम करेंगे, और यहाँ पर यही गाना जाता है आपके लिए भी राजेश और माया जी, आप दोनों के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, और यही गाना जाता है सरोज जी आपके नाम जो फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी है, हमारे साथ कनेक्टेड है। विमला अपादू जी आपका भी मैसेज हमें मिला इसके लिए शुक्रिया। शाहिद इकबाल जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव नम्रता मोहरम जी जो स्कॉटलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदिनी जी थैंक यू सो मच। यह अगला गाना जाता है रेखा जी की ओर से उनके नेफ्यू वेद उदित के लिए जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो आपको जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर ये जो अगला तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं और प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी हाँ, कहीं ना जा, बिल्कुल हम 2 बजे तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहीं पर आपके साथ साथ हम रहेंगे और खूबसूरत गानों के ज़रिए आपके साथ यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। लवली शो एज़ यूजुअल, गुड वाइब्स। और ये मैसेज आया है दारिन, श्वेता, रविश, प्रीशा, लविशा के नाम यहाँ पर सभी आपादू फैमिली जो है रोशनुआ से हमेशा की तरह हमारे साथ कनेक्टेड है। और दिल से मिले दिल फिल्म का जो तराना है, इसके गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, तो चलिए हम इस गाने को ज़रूर यहाँ पर आपके लिए चलाएंगे।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर सुहाना सफर में आप बारी है रफी साहब की आवाज़ में इस अगले तराने की गर तुम भुला न दोगे। यकीनन इन गानों को कौन भूल सकता है, भला न जाने आज कितने दशकों पहले ये गाने बने थे और आज भी हम इन्हें सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, है ना। तो चलिए ऐसे में अगला गाना जाता है माला के नाम, जो कट्रबोन से हमारा साथ दे रही है। तो चलिए आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रीमा जी हमारा साथ दे रही है, रीमा जी ने कहा कि कोई भी गाना हो सके तो इनके लिए चला दीजिएगा। तो चलिए गाना आपके लिए भी चल पड़ा।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी हाँ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, यकीनन प्यार पर बस कहाँ चलता है ना। और प्यार पर अगर बस करने लगे तो फिर कैसे चलेगा। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो होता है तो उसे होने देना चाहिए, क्योंकि इन इमोशंस के बिना, इन भावनाओं के बिना हम कुछ नहीं। ये है तो हम है, कहीं ना कहीं ये हमारी पहचान है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला गाना जो है यहाँ पर जाता है देवीना जी आपके नाम, हमारा साथ दे रही है। आपने कहा कि मुकेश साहब का अगर कोई गाना हो सके तो चला दीजिएगा, तो चलिए मुकेश साहब का जो अगला गाना है, पहचान फिल्म से लिया गया, बस यही अपराध, ये गाना आपके लिए हम करते हैं और मुकेश साहब के सभी फैंस के लिए।

0: नमस्ते।
1: तो चलिए, यकीन फिल्म का ये गाना चल पड़ा है और ये गाना जो है खास कर इसे हम करते हैं ज्ञान बिहारी जी की ओर से, उनके दोस्त सुनील संजीव के नाम, साथ में रानी है, शीतल है, भामा है और रेडियो मनोरंजन के तमाम सुनने वालों के लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए कुछ ही मिनटों में सुहाना सफ़र का जो सफ़र है ख़त्म होने को भी जाएगा, क्योंकि समय जो है इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है कि हम क्या कहें, है ना। चलिए वक्त पर किसका ज़ोर चलता है, लेकिन अभी के लिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। यहाँ पर माला जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है और माला जी के नाम इस अगले तराने को हम करेंगे। और ये जो अगला तराना है नागिन फिल्म से लिया गया है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में।
2: सदियों बाद बरसात हो गई,

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: और चलिए सुहाना सफर में अगला गाना खासकर हम कबीर के नाम करेंगे। कबीर जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कबीर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई यहां पर आपकी दादी माला की ओर से, रिवजियो रोंपो से, पूरे परिवार ने ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम भेजा है। खासकर आपके मामा है किरण, पापा है केविन, चाचा है शिव, सभी की ओर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं और ये गाना आपके नाम।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: यकीनन बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कब बड़े होंगे, कब हम नई दुनिया देखेंगे, कब हम नए नए अनुभव करेंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तो कभी कभार अपनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते मन में एक ना एक बार ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि हम छोटे थे तो कितने अच्छे थे, है ना। हमेशा ऐसा ही होता है ज़िंदगी के साथ, जो है उससे हम कभी खुश होते ही नहीं हैं और जो नहीं है या जो नहीं हो सकता है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। चलिए, ज़िंदगी है और हर एक का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, दो घंटे के इस खूबसूरत सफ़र में इतना प्यार इतना अपनापन मिला हमारे जितने लिसनर्स ने हमारा साथ दिया रेडियो के ज़रिए, साथ ही हमारे जितने फॉलोअर्स ने हमारे टिकटॉक लाइव से जुड़े, इतना प्यार इतने डेडिकेशन इतने मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हुआ है हमारे जाने का। जी हाँ, बारी होगी इस आखिरी गाने की और इस आखिरी गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात जो है वो ख़त्म होने को चली, लेकिन जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे। जी हाँ, कल दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी रेडियो मनोरंजन पर इतिहास के झरों के इस प्रोग्राम के साथ। अभी के लिए 2 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद अंजू गर्बरन जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा। तो उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को, और ये जो शुक्रवार है जो फ्राइडे है बहुत अच्छे से बीते, और कल फिर वीकेंड है, ऑब्वियसली फ्राइडे की एक्साइटमेंट तो कुछ और ही होती है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही हमें सुनते रहिए, हमारा साथ देते रहिए।
2: You're listening to RM3 Radio Mano

0: North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह बोटानिकल बाग में कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सचिव सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे डॉक्टर नवीन रामगुलाम, बेटी सुनीता रामगुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गई। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वालों को फूलों के साथ नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिव सागर रामगुलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुणों और उसूलों को अपनी ताकत बनाकर मॉर्शन समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। ऑडियो विजुअल्स की दुनिया अपने आप में कई यादें समेटी हुई हैं। हर एक दृश्य एक कहानी सुनाती है, एक लम्हे को कैद करता है और उन लम्हों को संजो कर रखना ज़रूरी होता है। आर्काइव्स में जमा दृश्यों का प्रयोग बार बार किया जाता है और ऐसे में इनका आसानी से उपलब्ध होना अनिवार्य है। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के आर्काइव्स में देश का इतिहास छिपा है, हर त्यौहार का रंग घुला है। इन्हीं आर्काइव्स को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसमें मदद देने के वास्ते फ्रांस से इंस्टीट्यूट नेशनल डू लोजोविजुअल की एक टीम मॉरिशस आई हुई है। एक हफ्ते तक वे आर्काइव्स की पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। मिसी मुस्तास्लीक्स की जांच के सिलसिले में कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ सीसीआईडी के मुख्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस के अनुसार उन्होंने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। आज सुबह उन्होंने एक बयान दिया और पुष्टि की कि उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जांच करने वालों ने स्पष्ट रूप से उनके सामने कोई तथ्य या स्थिति की जानकारी नहीं रखी थी। विदेश की खबरों में फिलीपींस के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 की उम्र 14 साल की बताई गई है। 8 लोग घायल हुए हैं जिनमें 4 की हालत गंभीर है। हमलावर 16 साल का था जो मारा गया। ये इस साल फिलीपींस में हुआ ऐसा तीसरा घातक हमला है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कथबो बोनाकय में 64 साल के 64 years old के श्री कादरेस सिनिवासन मोरी जो वेला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सपहर 3 बजे ओम शांति औरियता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। लापेरूज ओकुलेमे 73 साल के 73 years old के श्री कृष्णदत्त हनुमान जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान लापेरूज ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें गहरी हमदर्दी है।
5: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है, गीत नृत्य और परंपरा। अभिनंदन करते हैं हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं और जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आपका भी सहृदय अभिनंदन। सप्ताह चल रहा है गणेश चतुर्थी का, तो क्यों ना आज हम चर्चा इसी चेत

0: के पर्व की करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी एक चेतना का पर्व है, शुभ और मंगल का पर्व है। और श्री गणेश, जैसा कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं चलिए हम कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं, तो गणेश जी की बात करते ही शुभ और मंगल आता है हमारे मस्तिष्क में। और गणेश जी जो बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, और ये उनका सर जो बड़ा है उसका प्रतीक है कि वे इतने बुद्धिमान हैं। छोटी छोटी आँखें हैं जो दूर दृष्टि रखती हैं, छोटी आँखें बहुत अच्छी दृष्टि भी रखती हैं, और लंबी सूंड ऐसी कि जो आसपास पक रहा है उसकी भी वे खुशबू ले लेते हैं, और बड़े बड़े कान जो हैं वे हमारी बातों को खूब ध्यान से सुनते हैं, और बड़े कानों से ध्यान से सुनी हुई बातें बड़े उदर में पचा भी लेते हैं, और आपकी उन तक पहुंची हर बात को वह अपने पाचन शक्ति से अंदर दबा भी लेते हैं, भीतर रखने की भी क्षमता खूब है, और सवारी जो है उनकी मूषक है। तो आज की दुनिया जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वहाँ पर भी माउस कंट्रोल में ना हो तो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही गणेश जी भी मूषक की सवारी करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है गणेश चतुर्थी, बिना संगीत, बिना नृत्य और बिना गीत संगीत के नहीं पूरा हो सकता है। तो आज हमारी अतिथि जो हैं वे इस पर चर्चा करने आई हैं, वे आपकी जानी पहचानी हैं, क्योंकि वो पहले भी हमारे एक कार्यक्रम में आ चुकी हैं, तब बातचीत हुई थी उनके साथ कथक नृत्य पर आज वे, मैं आपको छोटा सा एक परिचय देना चाहूँगी जिन्होंने पिछला कार्यक्रम ना देखा हो या सुना हो, तो उनके लिए कि वे एक बड़ी सशक्त कोरियोग्राफर हैं और समर्पित प्रवर्तक भी हैं, और साथ ही नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली पर तो बात कर चुकी हैं, पर लोक नृत्य कला को मॉरिशस में बढ़ावा देने के लिए बहुत तत्पर रहती हैं। आप भारत बेंगलोर से स्नातक तथा पुणे से नृत्य कला और कोरियोग्राफी में स्नातकोत्तर हैं, और साथ ही मंच संचालन आदि का भी बखूबी अनुभव रखती हैं। मराठी लोक नृत्य में महारत रखती हैं। आप नृत्यनाद स्कूल ऑफ डांस की संस्थापक निदेशक हैं। आज की युवा पीढ़ी को नियम, विश्वास और अपनी सांस्कृतिक कलाओं पर गर्व को संजोने में सहायक बनती हैं, साथ ही मंच तक लय ताल की परंपरा को भी उत्कृष्ट अर्थात एक्सेलेंस तक पहुंचाती हैं। तो आपकी जानी पहचानी जो सांस्कृतिक परंपराओं को नर्चर करती हैं वे हैं श्रीमती रोचना देसाई लुकिया गोपोल जी। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार, नमस्कार
0: आज के इस कार्यक्रम में। आज हम आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आप एक मराठी संस्कृति से जुड़ती हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी आपके लिए क्या है।
1: नमस्कार अंजू जी, नमस्कार मॉरिशस, गणपति बापा मोरिया। तो गणेश चतुर्थी मेरे लिए
0: ये पूरा देश मना रहा है।
1: एग्जैक्टली, पूरा देश मना रहे हैं,
0: और आज तो विश्व भर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं।
1: Exactly.
0: कोई भी कार्य करते हैं, शिव तक पहुंचने के लिए भी हमें गणपति का ही समर्पण करना पड़ता है, तभी हम शिव तक भी पहुंच सकते हैं।
1: एग्जैक्टली, तो गणेश चतुर्थी मेरे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है
0: जी।
1: वो स्पॉट ऑफ मी, क्योंकि मैंने बचपन से मेरे पापा मामा सब मराठी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर में मेंबर थे, और वहाँ के जब गणेश चतुर्थी, मतलब जब हम बोलते हैं अभी गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, तो मतलब प्रिपरेशंस, डेकोरेशंस, गणपति आने वाले हैं, ये सब तो मैंने ब्रोथ एंड ब्रिंग अप इन दैट एटमोसफियर कि गणेश चतुर्थी है। यस, तो हमें मंदिर जाना है, सवेरे जाना है, रात को बहुत देर से वापस आएंगे। तो जब हम गणपति बापा मोरिया भी कहते हैं ना, तो सिर्फ मैं

0: कहने के लिए नहीं,
1: एक इमोशंस है अंदर से ही, मतलब गणपति बप्पा मोरिया तो जब ऐसे गूस बम्स होता है, तो ये है गणेश चतुर्थी मेरे लिए। और मतलब स्लीप सोने का नहीं है अभी, और सब पूरे रात जागती है, डांस करने हैं, सिंगिंग, नाचना गाना, आरती मना, ये सब मतलब गणेश चतुर्थी। और जो डेलिकेसीज है उसको बनाना, तो ये सब मेरे लिए गणेश चतुर्थी है।
0: चलिए, हम जब गणेश आरती करते हैं, गणेश वंदना करते हैं, तो प्रसाद जो होता है वे मोदक है, और लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं। तो मोदक, लड्डू, जिस प्रकार से हम कलीमाई पे खीर पूरी चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पर भगवान शिव का प्रिय खीर ही है, पर भगवान गणेश के लिए हम मोदक का प्रयोजन करते हैं, जो बाहर में चावल
1: और अंदर में
0: गुड़,
1: कोकोनट और गुड़।
0: क्योंकि जो पारंपरिक मोदक की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि वे गुड़ से बनती थी, नारियल का बुरादा और गुड़। इसके अलावा प्रसाद में और क्या क्या होता है?
1: मोदक है, लड्डू है, और कनौला भी है। कनौला जो इसके अंदर भी कोकोनट है और आटा से बना हुआ है, तो वो भी है प्रसाद।
0: जिस प्रकार हम दीपावली हम यहाँ पर गातो बतात के बिना नहीं सोच सकते,
1: लेकिन
0: और उसका आकार भी बिल्कुल बराबर है।
1: हाँ, लेकिन गातो पतात जो है वो कनौला सेम ही है, लेकिन पतात नहीं है इसमें, सिर्फ वो कोकोनट। हाँ, मैदे और कोकोनट,
0: ऊपर का खोल जो है वो मैदे का है। ये पारंपरिक हर मराठी परिवार में बनता है।
1: यस, गणेश चतुर्थी के लिए तो ये बनना चाहिए।
0: मोदक, आनी, कनौला,
1: लड्डू,
0: ये तीनों चीजें बनती हैं। इसके अलावा जब हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, तो मराठी परिवार में या जहाँ भी गणेश वंदना हो रही है, गणेश पूजन का प्रावधान है, वहाँ पर प्रसाद के साथ साथ नृत्य बहुत आवश्यक होता है। आप फल फूल रखते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, उसके बाद एक लोक नृत्य की परंपरा है जिसे झाकरी कहते हैं, इस पर हमारे श्रोताओं को।
1: आपने कहा कि गणेश चतुर्थी जो पूजा हम करते हैं
0: जी,
1: तो मैं इसके बारे में फर्स्ट मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी है बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि ये गणेश जयंती भी है, ये दो अलग चीजें होती हैं
0: जी।
1: तो गणेश चतुर्थी और गणेश जयंती ये दो अलग चीजें होती हैं, क्योंकि गणेश जयंती जो है वो गणेश जी का जन्मोत्सव
0: है।
1: हाँ, और वो माघ शुक्ल चतुर्थी में आती है। तो फिर गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद महीने में जो है चतुर्थी
0: मतलब चौथे दिन,
1: तो ऐसा
0: चांद का चौथा दिन।
1: एग्जैक्टली, तो हम गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव का आरंभ होता है
0: जी,
1: भाद्रपद महीने का चौथा दिन,
0: जो 10 दिन चलता है।
1: एग्जैक्टली, अनंत चतुर्थी तक,
0: तो अभी चल रहा है। ये पूरा चलेगा।
1: तो फिर ऐसा नहीं कि जब हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं तो हमें तिथि को देखना पड़ता है, उसका जो मुहूर्त, उसका जो धर्म से अनुसार जो कितने बजे पूजा होना चाहिए, उसका तिथि कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उसको देखना है। पंचांग में लिखा हुआ है ये सब, तो ऐसा नहीं कि मुझे आजस करना है। अभी तो ये गणेश चतुर्थी जो स्थापन होता, गणेश जी की पूजा होती है, वो इस साल में मंडे को
0: तिथि हुआ।
1: तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा तो उस 2 दिन पहले वीकेंड थी तो चलो आजस करो, हम वीकेंड में करेंगे, और फिर ये नहीं होता। लेकिन ये सब जानना
0: समय का, उसकी तिथि का ध्यान रखना होता है।
1: ऐसा नहीं है कि वीकेंड है चलो हम स्थापन सैटरडे को करते हैं, तो फिर हम सैटरडे होल डे गणेश जी हमारे साथ होंगे, संडे को फुल डे है, और मंडे को भी फुल डे, और ट्यूसडे को विसर्जन, ये ऐसा नहीं होता। हमारे जो तिथि है वो मंडे से शुरू होता है, तो मंडे को हम स्थापन मतलब गणेश जी का पूजा करना चाहिए, और फिर और 12 बजे से पहले, और फिर 1.5 डे होता है ट्यूसडे, उसका विसर्जन होता है। और जो लोग 10 दिन या 15 डेज ये सब अनंत चतुर्थी तक वो सेलिब्रेट करेंगे, बाद में विसर्जन करेंगे।

0: बाद में विसर्जन करेंगे। जब हम विसर्जन की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जिनको हमने बुलाया इतने मान सम्मान से उनका विसर्जन करने जा रहे हैं, तो ये एक संदेश देता है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हम उसे लौटा रहे हैं। और ये सब आरती में आता है, तेरा तुझको अर्पण।
1: और तो वो ये जो हम जब गणेश चतुर्थी है और 6 बजे जो होता है पंचोपचार पूजा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम गणेश जी का पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य ये 5 जो ऑफरिंग्स होता है हमें देना चाहिए गणेश भगवान जी को, पंचोपचार पूजा वो जो 6 बजे होता है, उसके बाद फॉलोड होता है आरती। और जब हम विसर्जन करेंगे उसका फिर से पूजा होंगे और फिर आरती और उसका जो शिदोरी जो है, जब वो खाना होता है,
0: शिदोरी का अर्थ
1: मतलब
0: क्या होता है शिदोरी?
1: हाँ, जो हम बनाते हैं जब भी किसी को ट्रैवल करना चाहिए, किसी के लिए हम एक जर्नी के लिए जा रहे हैं तो हम खाना
0: प्रस्थान कर रहे हैं।
1: एग्जैक्टली, हम तो हम खाना देते हैं घर से, कुछ पका मतलब बनाते
0: भोजन बना के देते।
1: एग्जैक्टली, तो ये है शिदोरी। जब हम गणेश जी को मतलब जाने के लिए बोल रहे हैं तो फिर उसका जो शिदोरी है सो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके साथ जाएंगे वो।
0: इसमें क्या बनता है?
1: इसमें जो राइस है, चावल है, कोकोनट भी होता है और ट्रेडिशनल लीव्स जो फे बेतल जो है उस हाँ इसमें डालते हैं और इसके साथ जाते हैं विसर्जन से पहले। ये सब हम उनको देते हैं और कहते हैं पुरचा वर्षी लव करिया, तो नेक्स्ट
0: आप जा रहे हैं
1: तो नेक्स्ट ईयर इससे पहले आ जाइए।
0: मतलब प्रस्थान करने से पहले, हम भी कहीं घर से निकलते तो माँ कहती है कि जाना नहीं को, मैं आऊंगी।
1: हाँ, ऐसे
0: ये बहुत शुभ माना जाता है।
1: एग्जैक्टली, तो ये है शिदोरी।
0: और ये जब पूजन होता है रात के 12 बजे तक लोग नाचते हैं, उस नृत्य को मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है गीत नृत्य और परंपरा। तो लोक नृत्य में झाकरी किस प्रकार से होता है?
1: झाकरी मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा झाकरी का जो बहुत सारे गाने लिखा हुआ है झाकरी का, तो बचपन से मैं इनके साथ ही थी। तो हम झाकरी जो है वो एक सर्कल में ट्रेडिशनल है, सर्कल में डांस करना पड़ता है। सर्कल में क्या होता है, यूनिटी होता है, टुगेदरनेस होता है। और वो क्या है, हम जब गा रहे हैं तो गणपति बाप्पा के सब जो खुशी हमको मिलती है, जो हमको एहसास होता है कि गणपति बाप्पा आए हुए हैं, तो ये सब फीलिंग्स जो है वो झाकरी सॉन्ग्स में होता है। और जब हम डांस करते हैं तो सर्कल्स में करते हैं। क्यों सर्कल्स में? ताकि मैं मेरा जो जो भी है सर्कल में डांस कर रहे हैं
0: तो हम एक्सप्रेस
1: कर सकते हैं, देख पा रहे हैं जो भी हम बोल रहे हैं गाने, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। गणपति आला तो हम हाथ ऊपर करेंगे।
0: चलिए इस एक्सप्रेशन को हम सुनते हैं गीत के माध्यम से। और हमारी टीम में आज जुड़े हुए हैं भाई यूसुफ, प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं रितेश जी, और साथ ही दे रही हैं उरुसा जी। तो इस टीम के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं, फिर चर्चा बातचीत जारी रहेगी।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: एक बार फिर हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं जो अभी अभी जुड़े हैं। उनकी जानकारी के लिए बताएं कि आज की टीम में भाई शिव भी जुड़ गए हैं और आज की हमारी अतिथि हैं श्रीमती रोचना देसाई जी। रोचना जी, आपने जो अभी आरती सुनी, देखिए उसमें आने की भी बात है, जाने की भी, विसर्जन की भी बात है, और ये भी है कि अगले वर्ष के लिए आपने उनको आमंत्रित भी किया। साथ ही साथ अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने, आपने बताया कि पूजन होता है और भोग चढ़ता है,

0: उसके साथ साथ लोक नृत्य होता है जो कि है झाकरी, उस पर थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए।
1: हाँ, तो फिर जो झाकरी हम बात कर रहे थे तो सर्कल में होता है,
0: गोलाकार में नृत्य होता
1: है। एग्जैक्टली, और एक दूसरे से मतलब हम डांस करते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को देखना है, एक्सप्रेस करते हैं हम डांस के थ्रू। और झाकरी खास बात क्या है, वो जैसे शुरू हुआ झाकरी डांस, ऐसा नहीं कि शुरू से ही हम डांस करना चाहिए और एंड तक होना चाहिए। अगर मिडल में हमें लगा कि हाँ मुझे फील होना है कि मुझे डांस करना है तो बीच में आ सकते हैं, अगर एंड तक डांस
0: करना है
1: हाँ तो फिर हम बाद में हम निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से लास्ट मोमेंट तक ये डांस हमें करना चाहिए, ऐसा ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है झाकरी डांस में। और जब हम जब ऐसे जब फील होता है वो हम वही मतलब डांस करते हैं। ट्रेडिशनली वो जो डांस होता है वो एक गोल में होता है और टोसो से हम बैंड करती थी, सिर्फ टोसो में यहाँ से हम बैंड करते हुए और फिर ऊपर से ये सर्कुलर मूवमेंट जाते थे।
0: आपकी बॉडी की भी सर्कुलर मूवमेंट
1: हाँ,
0: है।
1: तो हम नीचे गए फिर ऊपर, ये सब एक गोल सर्कल में, ये सब मतलब ये रिपीट होना चाहिए
0: रिदम के साथ।
1: हाँ, रिदम के साथ। अभी क्या हुआ, वो उसका इवोल्यूशन हो गया झाकरी का, मतलब उसका ढोलक जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ढोलक है
0: बीच में, एक गोलाकार में कोई बीच में रहता है,
1: यस,
0: ढोलक बजाता है,
1: जो ढोलक है, चिमटा है, झाल है, अभी थोड़े लोग अभी उसमें ढोल भी ला सकते थे तो मतलब यूज करते हैं। तो ये इवोल्यूशन और क्या है, जो स्टेप्स जो मतलब झाकरी के, उसका भी बहुत सारा इवोल्यूशन हो गया, मतलब सिंक्रोनाइज स्टेप्स, मतलब जो हमारे जेन जी है, मतलब इन्होंने जो पारंपरिक जो झाकरी है इन्होंने अपने हिसाब से
0: उसमें बदलाव लाया है।
1: यस, लेकिन गोल सर्कल में, गोल सर्कल में गणेश जी के सब एक्सप्रेस जो भी फीलिंग्स है गणेश जी के लिए ये गाने में होता है, लेकिन जो प्रेजेंट हम प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा बदलाव, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज स्टेप्स मतलब आ गया इसमें, और पैटर्न्स फ्लो होता है, ट्विस्टिंग, टर्निंग, स्वर्लिंग, ये सब इन्होंने ऐड किया। और जो हमारे जो हम जो काश्ती नववारी पहनते हैं, नान्योद साड़ी
0: जी,
1: उसका वो उनका यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सेम कलर नववारी, सेम टाइप ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सेम, और ये सब जो चीज़ें जो है उन्होंने मतलब स्टडी किया बहुत अच्छी तरह से और एक यूनिफॉर्म बनाया। और जो झाकरी है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के लोग गाना है और जो लड़की है वो उसको नाचना पर, नहीं,
0: सब एक साथ
1: लड़की भी गा सकते हैं, लड़का भी नाच सकते हैं जो अभी हो रहा है
0: जी।
1: तो फिर क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन, जो नववारी साड़ी जैसे कि ये नववारी कलर पिंक का होता है तो लड़के लोग पिंक कलर का कुर्ता भी पहनते हैं है। या फिर कंट्रास्ट
0: धोती,
1: ये सब मतलब विजुअली मतलब बहुत अच्छी तरह से, मतलब वेरी नाइस टू सी कैसे वो प्रिपरेशन करता है। और ये जो झाकरी होता है उसका जो सॉन्ग्स, मतलब यूट्यूब से नहीं होता, हमें लिखना पड़ता है, तो ये सब जो ग्रुप्स झाकरी ग्रुप्स है सब लिखता है वो गाना अपने हिसाब से, उसको कंपोज करता है, उसको स्टेप्स मतलब
0: बनाते
1: हैं और प्रेजेंटेशन करता है,
0: मतलब अलग अलग ना जाएं,
1: एग्जैक्टली
0: सब मतलब डिफरेंट करें।
1: तो जो हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं तो ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, तो उसका प्रिपरेशन जो है वो छः महीने पहले से ये
0: शुरू
1: सब
0: हो
1: शुरू
0: जाता है।
1: हाँ, और जो मोबिलाइजेशन होता है सब, मतलब सब यंगस्टर्स जो है मतलब काम से पूरा एक हफ्ता छुट्टी,
0: आजकल तो मराठी मंडली फेडरेशन है
1: ये भी, मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, मराठी स्पीकिंग यूनियन, सब एक साथ होते हैं, एक कल्चरल प्रोग्राम बनाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन जो है
0: जी।
1: तो फिर जो एसोसिएशन मराठी एसोसिएशन उसको मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बेच सकती है, तो वो उसका एक कार्यक्रम

0: होता है ऑफिशियल नेशनल लेवल के, और फिर उसका विसर्जन भी नेशनल लेवल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब प्रोग्राम्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्लान हो जाते हैं। जाकरी मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन का प्रोग्राम, और जो आप ये जाकरी बोल रहे हैं ना, तो कल ही वो शिवाजी भोसले महासंघ, इन्होंने महाजाकरी का ये

0: सब आएंगे एक ही जगह में, सब नाचेंगे झाकरी पूरी रात. Okay. तो बहुत भीड़ होता है और सब मतलब एंजॉय करता है. जो तुमने झाकरी बनाया उसका जो स्टेप्स मैं फॉलो करूंगी, जो तुमने बनाया हम फॉलो करेंगे, ऐसा कर करके ये गोल कितना बड़ा होता है. लेकिन इससे कहते हैं झाकरी, यूनिटी, टुगेदरनेस, शेयरिंग, हाँ ये सब होता है.
1: तो जो नृत्यनाथ स्कूल ऑफ डांस है उसने क्या आयोजन किया इस बार?
0: नृत्यनाथ स्कूल ऑफ डांस जो हम झाकरी नहीं करते, लेकिन हम गणेश जी के इन प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेश जो यूट्यूब के जो म्यूज़िक है हमने उसको लिया और हमारे कोरियोग्राफी हमने बनाया. और इस साल हमने 15 कोरियोग्राफीज बनाई हम स्टूडेंट्स के साथ. तो आपने बोला अभी, तो आज ही हमारा प्रोग्राम है मराठी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर में 8:30 रात को. हमारा 45 मिनट्स नॉन स्टॉप डांस होंगे नृत्यनाथ स्कूल ऑफ डांस. वन स्टेज 60 आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर, हम परफॉर्म करेंगे गणेश बापा की सॉन्ग्स के
1: समर्पित हैं.
0: यस,
1: एवरीथिंग.
0: यस,
1: तो ये एक समर्पण है नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से.
0: यस,
1: जो मराठी होते हैं और साथ ही पूरे देश में
0: पूरे
1: ये आयोजन हो रहे
0: exactly.
1: हैं और हमारी संस्कृति का वो भाग हैं जो कि बहुत सुंदरता से अपनी झाकरी प्रस्तुति हर जगह आयोजित कर
0: exactly.
1: समर्पित कर रहे
0: और
1: हैं
0: वो जो
1: गणपति जी.
0: हाँ, और वो झाकरी जो होता है एक मतलब फोक डांस है कोकन
1: जी,
0: से.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, तो फिर हमने इम्प्रोवाइज किया, मॉरिशस में अडाप्ट किया. और फिर अभी उसका रिसर्च हो रहा है कि वो अभी यूनेस्को में आज इंटेंजिबल
1: हेरिटेज
0: इसका ये रिसर्च हो रहा है. हम मराठी मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन ये तीन जो बॉडीज हैं मराठी का उस ये सब इसके ऊपर रिसर्च और स्टडी कर रहे हैं कि वो यूनेस्को तक जाएं.
1: बहुत सुंदर. चलिए एक और गीत सुनते हैं, फिर उस गीत पर चर्चा कर पाएंगे.

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: गीत नृत्य और परंपरा की टीम में जुड़ गई हैं अपर्णा जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने ये गीत आप तक पहुंचाया। रचना जी से पूछना चाहेंगे, ये जो गीत बजा ये महाराष्ट्रियन कल्चर या उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर, ये पूरी फिल्म बाजीराव मस्तानी महाराष्ट्र की और मराठी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और ये जो गीत था उसमें हाथ की मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा अधिक थी, तो आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं किस प्रकार से झाकरी और ये जो अभी गीत हमने सुना उसमें अंतर कैसे पाते हैं, क्योंकि दोनों ही मराठी संस्कृति से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ, ये जो सॉन्ग्स है वो पिंगा सॉन्ग, पिंगा जो है, पिंगा जो ट्रेडिशनल पिंगा है उसका संबंध जो है वो खास तौर पर मंगला गौर का है। मंगला गौर मतलब वो जो शादीशुदा महिलाओं का, मतलब वो जैसे वो सोशलाइज करते हैं और फिर उसका जो एक मतलब मीटिंग होता है, तो फिर ये महिलाओं जो है वो ये सब ये पिंगा डांस करती हैं,
1: जैसे हमारे यहाँ गीत गवाई होती है,
2: जैसे हाँ
1: बिल्कुल। रात को महिलाएं पहले मिलती थी उसमें पुरुष नहीं होते थे,
2: exactly.
1: एक कमरे में बंद होके वे अपनी गीत गवाई करती थी, गीतों का आनंद लेते थे, लोक गीत
2: exactly.
1: गीतों का आनंद तो होता था, उसी प्रकार से होगा।
2: हाँ हाँ जी, वो मतलब यूज टू मीट हाँ और सोशलाइज, ये ट्रेडिशन जो होता है कल्चर के लिए, तो अभी वो ये डांस शुरू कर सकते थे, तो वो पिंगा मतलब डांस करते थे। और जो हमने सुना अभी वो संजय लीला बंसाली ने जी को, उसने इम्प्रोवाइज किया, अडेप्ट किया उस सॉन्ग, और उसने मतलब म्यूजिकलिटी का मतलब इम्प्रोवाइज किया, मतलब ऐसे कि सिनेमाटोग्राफी की माध्यम से इन्होंने ये पिंगा सॉन्ग बनाया।
1: संजय लीला बंसाली जब बात करते हैं
2: तो वो
1: हाइट्स पर जाता है।
2: एग्जैक्टली, तो हमारी ट्रेडिशनल पिंगा जो है वो सर्कुलर मूवमेंट से ही होता है, लेकिन ये झाकरी नहीं होता, सर्कुलर मूवमेंट। और
1: इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि झाकरी और पिंगा में क्या अंतर है,
2: क्योंकि ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है।
1: अच्छा, हाँ, और जो झाकरी है
2: वो
1: सभी के लिए है,
2: बच्चे लोग, मैन वुमन, और जो दादा दादी सब जॉइन कर सकते हैं,
1: पूरा समाज जुड़ सकता
2: exactly.
1: है।
2: एग्जैक्टली, तो ये पिंगा मतलब ये पर्टिकुलर महिलाओं के लिए।
1: हाँ, और वो जब पोरी शब्द आ रहा है तो वो लड़की के लिए कहा जाता है,
2: और ये सर्कुलर मूवमेंट से होता है, लेकिन ग्रेसफुल मूवमेंट्स और टर्न्स भी होता है पिंगा ऑन पिंगा सॉन्ग। हाँ,
1: तो झाकरी का एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए आप

0: वहाँ पर, ताकि वे अंतर जान पाएं कि पिंगा जो है महिलाओं के लिए और झाकरी पूरे समाज के या पूरा ग्रुप जो भी जुड़ता तो है उसके लिए है।
1: मेरा मेरा जो आवाज है वो
0: आवाज का पर ध्यान नहीं देना है, हमें उस गीत की चर्चा करनी है जो झाकरी में गाए जाते हैं।
1: मेरे पापा ने लिखा हुआ है ये गाना और हम हमेशा ये होना ही चाहिए हमारे जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं झाकरी भवानी मंदिर में तो ये होता है। हम कहते हैं ये हमारे नेशनल एंथम है भवानी मंदिर में, क्योंकि हम हर साल
0: इसके बिना
1: नहीं
0: गणेश चतुर्थी कंप्लीट नहीं होती है।
1: तो

0: ऐसे होता है।
1: तो वो, अब हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को ये जानकारी मिल गई कि पिंगा जो है महिलाओं के लिए है और झांकरी जो है सभी भक्तों ने समर्पित किया गणपति जी के लिए।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप मराठी संस्कृति में क्या पाती हैं? गणेश वंदना, गणेश भोग, गणेश आरती, झांकरी, इसके अलावा पारंपरिक मराठी संस्कृति में क्या पाया जाता है?
0: हमारे मतलब जो हम बनाते हैं गणेश जी के लिए, हमने बोला हम लड्डू, मोदक, ये सब वगैरह डांस तो हम करते ही है गणेश जी के लिए। हम जो आरती जो है, हम
1: परिधान आपका बिल्कुल अलग होता है, और आपने कहा
0: नौवारी
1: तो परिधान पर भी
0: हम तो अटाया जो है वो हम नौवारी पहनते हैं, जो हम कहते हैं यहाँ पे काश्ती,
1: यहाँ पर काश्ती कहा जाता है।
0: हाँ, काश्ती नौवारी मतलब नान्योड, नान्योड जो साड़ी है हम लगाते हैं, उसके हम चंद्रकोर का ये बिंदी लगाते हैं, और नथ इम्पोर्टेंट है
1: सबसे ज्यादा।
0: यस, वो नथ और वो नवारी
1: और वो लटकी होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी मैं नथ है, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगी।
0: एग्जैक्ट। और मेरा है, मैं मैंने बाग में डाल दिया हमारा। हाँ, तो अब जो हम पहनते हैं नवारी, पैर में जो पायल होता है, और ग्रीन कलर का बैंगल्स, उसके साथ पर्ल बैंगल्स।
1: देखिए, संस्कृतियाँ एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। अभी किसी दिन हरियाली तीज मनाई गई, जो बिहार में बहुत अधिक मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाती है, गीतों के माध्यम से हरियाली तीज मनाई जाती है, उसमें भी हरी साड़ी, हरी चूड़ियों का प्रावधान है। समय, तिथियाँ थोड़ी अंतर पे रहती हैं, समय वही है। और क्यों है ये सब कुछ हरा? ये एक बहुत सुंदर विचार है। हमारे जितने भी सांस्कृतिक आयोजन हैं, जितनी भी पूजाएं हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, वे हमारी ऋतुओं के माध्यम से जुड़ते हैं। और साथ ही कृषि प्रधान देश है भारत, महाराष्ट्र, मॉरिशियस भी कृषि प्रधान देश है, चारों ओर देखते हैं गन्ना है, हरियाली है, और साथ ही हम उत्सव मनाते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो।
0: Exactly.
1: जब वे जल जो विसर्जन के बाद खेतों में भेजा जाता था, तो वो गणपति के चरणों से होके निकलता है ताकि हमारे खेत लहलहाते रहें। तो ये कितना सुंदर प्रावधान कि हमारी पूजा से हमारे उत्सव को जोड़ते हुए हमारा जो व्यवसाय है कृषि, उसके साथ जुड़ता है। तो उसमें हरी चूड़ियां, हरी साड़ी पहनना, वो कहीं ना कहीं जोड़ पाता है। ये विचार हमारी संस्कृति ने दिया हुआ है।
0: Exactly.
1: जिसे हमें संजोना है, जोड़े रखना है, हमारी जड़ों तक पहुंचाना है।
0: हाँ,
1: चलिए एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

0: हमने जो गीत सुना विघ्नहर्ता हैं गणपति जी विघ्नहर्ते हैं, तो हम जब प्रार्थना करें तो हमारा भी प्रयास रहना चाहिए कि हम कहीं किसी के लिए विघ्न ना रखें। किसी आयोजन में हम अच्छे से आयोजन करें और उस आयोजन को सफल बनाएं, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए किसी भी त्यौहार में, केवल गणेश चतुर्थी के लिए नहीं, किसी भी त्यौहार में जब हम समाज में रहते हैं तो हमको एक दूसरे के लिए समर्पित भी रहना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है कि गणेश चतुर्थी मनाई गई 15 तारीख को, एक सभी के लिए छुट्टी का दिन था, बहुत से लोगों ने विसर्जन के लिए अपना बहुत आयोजन किया, सभी समुद्र तटों पर लोग पहुंचे हुए थे, आपका इस पर क्या विचार है?
1: क्योंकि हाँ, विसर्जन के दिन जब लोग जाते थे, मतलब
0: और इसमें सरकार कितना आयोजन करती है?
1: यस, क्योंकि मोबिलाइजेशन बहुत हुआ था, मतलब सब पुलिसमैन जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, सब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सब मतलब चले गए थे फिका फ्लाक समुद्र, ये कि पीएफओ के जो रिवर जो है, जो दो चीज दो प्लेसर जो मैं गई थी, तो सब ने मतलब अपने जो मूर्ति का विसर्जन किया था, सबने मतलब अच्छी तरह से किया, मतलब ऐसा कि रश नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल यही हाँ,
1: क्योंकि हमने गणेश जी को इनवाइट किया हमारे घर,
0: तो उसी सुंदरता से हम विदाई भी करें।
1: एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी विसर्जन कर रहे हैं तो चलो सिर्फ डम करना है
0: बिल्कुल
1: पानी में, नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी एक डिवोशन
0: प्रार्थना समर्पण,
1: क्योंकि इमोशंस है जब हम गणपति बाप्पा मोरिया पुरछा वर्षी लौकर या ये सब मतलब बोलते हैं ना, तो हमको अश्योर होना चाहिए कि जो गणपति हमने उसका विसर्जन किया पानी के अंदर डाला वो
0: तो सम्मान सहित।
1: एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाला और फिर उसके ऊपर हमने बाय मिस्टेक उसके ऊपर चढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ हमको विसर्जन करना पड़ेगा, पर होना
0: करना चाहिए।
1: और जब हम प्रोसेशन भी करते हैं उस मतलब ये भी, क्योंकि जो लोग
0: हम रास्तों में कोई विघ्न ना उत्पन्न करें।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि हम नाचते हैं गाते हैं, हम डिफरेंट मतलब
0: एक अलग मूड होता है
1: क्योंकि हमको नाचना है गाना है, तो फिर देखना पड़ता है कि हम जब हम ये कर रहे हैं
0: भक्ति भाव से अपने आराध्य को समर्पण करना है अपने आप को।
1: एग्जैक्टली
0: जी,
1: तो ये सब ध्यान
0: करना है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई आयोजन में त्रुटि ना हो, कोई विघ्न ना पड़े, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और इस बार की पूजा करते समय आपने क्या विचार ऐसा सोचा कि हमारा समाज जुड़ा रहे, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो किस प्रकार सशक्त हो पाए, हमारी जड़ें और सशक्त हो जाएं?
1: क्योंकि हमारी
0: हम अंत की ओर आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से सोचती हैं कि आपने आमंत्रित तो अगले वर्ष के लिए भी कर दिया है, पर ये संस्कार ये जड़ें जुड़ी रहें हमारी परंपराओं से, क्योंकि भारत से जब आए थे तो परंपराएं कुछ अलग थी, आज अलग हो रही हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है।
1: एग्जैक्टली,
0: तो उसमें
1: बाद में और बहुत ये
0: हो जाएगा जी,
1: ये चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो है हम जो भी है हम यंगस्टर से बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी जो है वो सिर्फ नाच गाना डेकोरेशंस म्यूजिक या फिर सज धजना
0: ये उसे एक पर्व के साथ
1: ये, ये सब होना चाहिए हाँ, लेकिन
0: हमें सांस्कृतिक प्रारूप
1: जो
0: को बनाना
1: ट्रेडिशन
0: है।
1: जो जुड़ा हुआ है ट्रेडिशन कल्चर जो वैल्यूज है इसमें ये जानना पहले ये
0: बहुत
1: है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ये सब आ जाते हैं, तो ये जो वो वैल्यूज होता है ट्रेडिशन पारंपरिक जो होता है
0: जी,
1: ये पहले आना चाहिए। और जो वो जो यंगस्टर्स वो मतलब चेंज जो है या फिर अडाप्टेशन इम्प्रोवाइजेशन ये आई वॉन्ट से कि वो

0: ठीक नहीं है, अच्छा है, क्योंकि वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि
1: बदलाव के साथ साथ उसके प्रारूप को ना बदले.
0: एग्जैक्टली हाँ,
1: उसको संजोते हुए थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो कोई बात नहीं,
0: दैट इज ओके, ये ठीक है, लेकिन मतलब
1: पूरा उसका रूप ना बदल दे.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि ये ट्रेडिशन हमने कैरी किया हुआ है,
1: वो एक लोक संस्कृति है.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि
1: उसको बचाए रखना आवश्यक है.
0: हाँ, ये मुझे मतलब ये मैसेज पास ऑन करना है, जो मैं जो मेरे पापा ने किया, जो मंदिर में किया, वो मैंने देखी और सेम रिपीट हो रहा है. थोड़ा बदलाव ये हाँ कुछ एडजस्टमेंट, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे बच्चे देख रहे हैं, तो जब वो करेंगे 20 years after, तो शायद
1: हमें क्यों की परंपरा से आते हैं. आज का बच्चा बिना कुछ कारण जाने उसका कारण क्या है, क्यों झांकरी करते हैं, क्यों हम उनको आमंत्रित करते हैं, इस क्यों से जुड़ा हुआ है. क्यों की परंपरा बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम प्रश्न का उत्तर भी ढूंढते हाँ. हैं, तो जब वो हमें सही उत्तर मिलेगा तो हम अपनी जड़ों से और सशक्त हो पाएंगे.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि अभी क्या होता है, जब हमको मंत्र कहना है तो हम
1: उसका अर्थ भी जाने
0: नहीं, यूट्यूब में डालते हैं तो हम, क्योंकि हम नहीं समझते हैं ना कैसे करेंगे
1: जी,
0: तो फिर मैं आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो झाकरी के डाला यूट्यूब में और नाच रहे हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल,
0: तो ये मुझे मतलब ये नहीं देखना चाहती मैं, यू नो, कि एटलीस्ट कुछ
1: उसमें एक समर्पण होना चाहिए.
0: yes, क्योंकि जो हम गाते हैं वो हम
1: हृदय से निकले.
0: एग्जैक्टली, ये ऐसा नहीं कि हमने आज सवेरे उठे कुछ लिखा, नहीं, ये हम सोच रहे, कितने दिनों से सोच रहे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किसी को करेक्ट करने के लिए ये सब हम
1: बेचते. हाँ, बिल्कुल,
0: तो ये सब अंदर से आती है ये सब.
1: बहुत सुंदर आपने विचार हमारे साथ साझा किए. हमारी टीम में भी लोग जुड़ते गए और ये टीम आप तक इस सुंदर कार्यक्रम को पहुंचा पाई, इसके लिए हम टीम का आभार प्रकट करेंगे. आपने अपना बहुमूल्य समय दिया रचना जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी.
0: हाँ, और साथ से पहले जो
1: हाँ, गणपति जी से वंदना हाँ, है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सब शुभ हो, सब मंगलमय हो.
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे विचार बांटकर. ये
0: भी एक गाना है जो मेरे पापा ने लिखा हुआ है
1: जी,
0: जो हम हर साल मतलब ये गाते हैं जब हम विसर्जन से पहले, तो गण

0: करूँ या, तो गणपति आने वाले हैं, हम गाएंगे, डांस करेंगे, पूजा भी करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए माहौल।
1: हाँ, बहुत सुंदर। yes. गीत नृत्य और परंपरा में आपने बहुत सशक्त संदेश दिया कि हमारी प्रार्थनाएं गीत संगीत और नृत्य के बिना अधूरी है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, और आप हमारे साथ जुड़ पाई, अपना विशेष बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह बोटानिकल गार्डन में कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सस्योसागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम, बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गई। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले को फूलों के साथ नमन।

0: किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिव सागर राम गुलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुणों और उसूलों को अपनी ताकत बनाकर मॉरिशस समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। हिंद महासागरीय इलाके में सहयोग मजबूत करने की दिशा में IOC और सिहाद के बीच कायम फ्रेमवर्क समझौते को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एबेन में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से लागू हैं, जिसके तहत इलाकाई स्तर पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को काफी बढ़ावा मिला। इस साझेदारी का मकसद है हिंद महासागरीय इलाके में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान मजबूत करना। ऑडियो विजुअल की दुनिया अपने आप में कई यादें समेटी हुई है। एक घर, एक दृश्य, एक कहानी सुनाती है, एक लम्हे को कैद करती है और उन लम्हों को संजो कर रखना ज़रूरी होता है। आर्काइव्स में जमा दृश्यों का प्रयोग बार बार होता है और ऐसे में इनका आसानी से उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के आर्काइव्स में देश का इतिहास छिपा है, हर त्यौहार का रंग घुला है। इन्हीं आर्काइव्स को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसमें मदद देने के वास्ते फ्रांस से इंस्टीट्यूट नेशनल डी लोजोविजुअल की एक टीम मॉरिशस आई हुई है। 1 हफ्ते तक वे आर्काइव्स की पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। विदेश में नाइजीरिया में अवैध खुदाई करने के आरोप पर गिरफ्तार 37 लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि इनकी मौत बीमारी के फैलने के कारण हुई। एक दूसरा कारण सेल के अंदर हवा की कमी और भीड़ भी बताई जा रही है। मामले की तहकीकात के लिए एक कमांडर को हिरासत में लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. My

0: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 18 सितंबर शुक्रवार का दिन अभी से लेकर 10 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम पर हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ है कादिया, साथ है दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और रितेश मोहबिया हमारे प्रोड्यूसर। आपको ये भी याद दिलाते चले कि दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच पुनः आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, और बिल्कुल आज हम एक बार फिर बात करेंगे बंटवारे पर जो डिवोर्स के बाद जारी रखा जाता है। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रघुनंदन जी।, और आज के कार्यक्रम में आज हम तोहर साथ रहब तो जरूर, जैसे पिछला सप्ताह बात कर ले रहलन तो एगो छोटा सन रिकैप करे के चाहिला, जितना कोई श्रोता लोगन हमने के सुनत हवन जनियन स कि कौन टॉपिक पर आज हम बतियात हैं।
1: हाँ, अली हमने हाउ समय नुआ दिखले रही सर पताज कब हुए ला, जब एगो एगो आदमी जीवोश होला, पति पत्नी शादी कर ले बा, तब ओकर जोन जोन चीज किन ले होन सन तो उ सदिया में तो कैसे पतज हुआ हुए ला। मैं आज होतना उ में नहीं जाब सर, मैं एगो एगो रिकैप कर थी सर। हाँ। कि जब एगो आदमी शादी करेला कोई भी है तो वो ओके मिलेला शादी में मजे, मैम की पति किन ले हुई कोनो चीज या पति है, है पत्नी किन ले हुई तो उ लोग के मिलेला आधा आधा। एगो हमने देख सक को बिया कब मिलेला सिनेमा देखले रही सर। और भी जब एगो है पति हो या पत्नी हुई ओकर माँ बाप बगल से मिलल बा एगो जमीन, एगो दुनाशियों या एगो शिक्षों में माँ बाप मर गल बा तो जमीन छोड़ के चल गल बा, वो कब शादी करेला तो उज बियावा में न पत्नी जाला ओकर बगल से न पति के मिलेला। अच्छा। जीबियावा उकरे रहे जरा पसकी एगो दान लिया रह और दुनाशों में तो है उकरे रहला। और दिखले रही सर जब एगो आदमी शादी कर ले बा मैं उस सदिया में ऊक मजा एगो लासीगंस ले ले बा तो वो लासीगंसवा के पैसवा को मजा कुछ कब माछिए हो जाला लासीगंसवा। हाँ। तो वो ओकरे हुएला नहीं नेसेसर ओकर पति के दे के या ओकर पत्नी के है दे के एगो लासीगंस के विषय में। और एक बानो है दिखले रही सर है बा आज हम देखब सर सेपारेशन जीबिया। अच्छा। पति पत्नी शादी कर ले वनसन जहाँ कुमा जे सेपारे हो वनसन पसके जईब हुआ हमेशा शादी करे मौया सिविल तो पूछे ला हुआ के ऑफिस हुआ कौन काल ती शादी करब तो वो बुसकी बोले कि कुमा जे हम सेपारेशन जीबिया हम के मन बा। आज देखब मॉरिशस में हम जैसे हो वाला बोले रही हम तो हमेशा कौन से ये कर ले हैं सभी के कब शादी कर लो कोई भी है तो एगो प्रॉब्लम हो जला। एक बार आदमी बोले नहीं शादी कर ले खाली में लिखो नहीं हमके तो जीबिया हो तो शादी करे के एक प्रॉब्लम हमने देखेला सब कब होवेला। हाँ। जीवोश तो जीवोश में देखब जे शादी में कोनो चीज ले ले हो इंसान एगो दे तभी देखब सर तो चाहे ला दोनों पति पत्नी आके पेय करे के अपन धन रही कामे बेच के चाहे ला उकम जे चुकाई के। अच्छा। देतुआ मैं यही बोले इंसान प्री तो शादी कर रस से प्रकाशियों जी भी मैं सेपारेशन जीबिया के मतलब ये है जोन आदमी शादी कर ले बा रिजिम सेपारेशन जीबिया वो का होवेला जोन जीबिया ओकर रहल शादी के अगाड़ी वो हमेशा ओकरे रहेला। शादी के बाद भी जोन जीबिया मिलेला पैसा या कुछ भी होई वो ओकरे रहेला कि लुतो होई कामियो होई या कुछ भी ऊपति के मिलेला कुछ नहीं सेपारा ओकर नाम है सेपारेशन जीबिया अपन अपन जीबिया कुमा जे उलोक के कुमा जे रहेला। तो यहाँ देख लो जे शादी करेला सेपारेशन जीबिया जे ओकर जीबिया होई तो ओके कुछ मन होई अब ओकर जीबिया से कैसे ओकर एडमिनिस्ट्रेशन करे के ओके कुमा जे देखे के या से बोलो मन होई ओके आगो है जमीन एग्रीकोल है ओके मन बा प्लांटे करे के या कुछ करे के या कोई के दे के भाई में या कुछ के या अपन बहन के दे या भाई के दे दे वो कोई के नहीं पति के कुमा जे नहीं चाहेला ओकर ऑथोराइजेशन हाँ ओकर में डूबे के एडमिनिस्ट्रेशन जीबिया सब चीज कुमा जे सकी जुई करी सकी बेचे सकी उ जमीन वहाँ बिना पूछे कंसेंट में ओकर पति के
0: यानी ओकरा ओकरा सब परमिशन बा अपन मुकमजे नहीं नहीं पूछे के चाहिला जे वो आगे बढ़े के कुन केकरा दे के कौन ची करे।

0: कि हाउ जमीन संगे
1: हाँ और दूसरा चीज एगो बोली के देत हो यू के कभी तक बान आदमी कभी एगो घर के नीला या कुछ करे लनसन तो देत करे लनसन नहीं अब एगो देत ले है तो ऊ जे सेपरेशन जी बियां कर ले होई तो ऊ अपन देत अपने ही भरे के चाहेला ऊ में पति या न पत्नी ओ नहीं झुकेला साकेन जैसे हमने बोला सा ना ऊ पांडा मयाज रही आपरी मयाज तो यहां दिखेला सा सेपारे ह तो ऊ लोके मिस सिल्मा एगो चीज है पोता है
0: तो हैजा पर रघुनंदन जी तोरा आ रहे थे करत है पूछब की मान ला जा एक व्यक्ति के मतलब जो घर बा उही व्यक्ति के नाम पर बा तो है में भी मतलब शादी से अगाड़ी किन ले हवन तो है में जैसे सिपाहियों जिबिया के तू बोला था तो शादी के बाद उमे कोनो पत्नी के हक नहीं रहेला
1: खूब जोड़ी अपने बोल देला सब चीज वा अंग्रेजी में कब शादी कर ले बा सेपरेशन जी बियां से बोसो घर बा या एगो जमीन बा या एगो बड़का बिजनेस ओकर बा उ हमेशा ओकरे रही पतिया भी नहीं नहीं सकी ढुके में एगो चीज इंपोर्टेंट है शादी कर ले वनसन पति पत्नी में सेपरेशन जी बियां अब सेपरेशन जी बियां में सिपोजे कब शादी कर लिया वनसन संगीत जियत वनसन लोकातिर में रलनसन बोलन रहा जी कहाँ कितना दिन लग कब सर लोकातिर में चलन तू और हम एगो कुमा जी पति पत्नी में मतलब बोले खोजत हैं कि चल एगो घर की नहीं सा एगो जमीन किरन के एगो घर बनाई के ताकि हम नहीं सकब सर कहाँ लुए लुआई पे ये करब सा तो ऊ जमीन हुआ यहाँ से बगासो जी बिया दिलबा एगो बोली के पति दिलेबा आधा पैसा उमे आए मदम वो भी दिलेबा उके आधा उके कि दोनों में डाल के बस एगो यागो दे ले वनसन बस जाके ऊ जमीन खरीद लेवन सन एगो घर बनाई लेवन सन तो हियाँ देखब नई बात सेपरेशन जीबियां बस कि हियाँ उ जीबियां वहां एक नाम एगो जीबियां एजीवीज है मतलब पति के हुई आधा पत्नी के हुई हुकमज आधा मेम की शादी कर लेवन सन सेपरेशन जीबियां बस कि उ एक नाम हम एजीविजों हमने बोला रिजिम एजीविजों में ओके कुमाज ओकर फंक्शन है मैं सिल्मा जाने के चाहला के कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर लेबा जे एगो दिले हुई 50 रुपया और हउ दिले हुई 50 तो आधा आधा कब एगो प्रॉब्लम हो जाए जीवो सो जाए तो आधा आधा हो या देखब सब बेचे हो या एगो आ ओके मन बा किने की तो का करी तो उ सकी में जे ओकर पैसा हो के पति के दे के बस अपन घरवा के नाम में डाल दी ई इम्पोर्टेंट है मैं हमेशा जैसे बोले रही आई सा हमेशा कब शादी कर बस सेपरेशन जी बिया दोनों दिले बा पैसा तो चाहेला जोन जोन गैसी बा जोन जोन चीज खीन ले हुआ या फर्नीचर हो घर हो इलेक्ट्रोमेनाजे हो या कुछ के चीज तो उकर गैसी रखिए आ कैसे को बोली के अभी सेपरेशन जीबिया में एगो भाई है सिर्फ पत्नी है वो 90% वो कॉन्ट्रीब्यूट कर ले बा वो घरवा में पति तो सोचिए अरे नहीं हम सेपरेशन अले आधा था तो के मिले के चाहला तो नहीं एगो देत ले हो से बुझो ला बैंक से तो ला बैंक दे एगो पापिए कि 90% कुमा जो पैसा ई दिल ले रे बा मैडम हुआ तो ओके कब मिली पैसा जीविजे कोई तो देख ओके 90% के वाले रुआ मिली 10% हुए कि मैं सेवा के मिली तो सेपरेशन जी बिया है बड़ी इंपोर्टेंट मैं ये शादी करे के सेपरेशन जी
0: है जब पर एगो सवाल मन में आवा था रघुनंदन जी कि सेपरेशन जी बिया के जो कोतरा रहेला वो के बनावेला और कहाँ कब बना के चाहिला है शादी के दिन शादी के अगाड़ी कैसे कैसे चलेला
1: जोड़ी क्वेश्चन है पहला चीज कभी एगो आदमी जाला पति पत्नी शादी करे तो जैसे बुझो आज कुमाजो लोग के गलवनसन लेता सिविल में तो लेता सिविल में हुआ जाई तो हुआ एगो क्लॉक रहेला कुमाजो ऑफिशियल से तो क्या जो ऑफिशियल हुआ रही तो पहला चीज एगो छोटा सा पापिए देवेला वो पापिया में लिख देवेला कौन कौन काल थे मॉरिशस में शादी होला किसी आदमी साहब से सेपरेशन जी बियां को मिले तो जी बियां या कॉन्ट्रा में शादी होई बता रहे सब कॉन्ट्रा के विषय में तो हिया पूछेला कौन काल थे तो आदमिया एक बार का बोलेला हम नहीं है हम नहीं आती ऐसे ही कोनो में पूवी हम शादी करब तो वो आदमिया कब नहीं मौसम करेला ओकर है में है कोंट्रा दे मयाज में तो वो कोरे बिया शादी करेला
0: अच्छा
1: देखवा कोरे बिया के अभी जाइवा घरे तो देखिए तो शादी चुन कर ले हुआ कौन सी में शादी कर ले हुआ कौन काली थी मैं कब मौसम ने नहीं बा एगो कोलन है द्वाट में देखबा नई मौसने होलबा कुछ कुमा जे नहीं द्वाट नहीं घुस में हो घुस में देखबा कर कोतवा में कुछ मौसने नहीं होलबा कौन कालीते शादी कर ले हुआ तो उच शादी कर ले हुआ कोई भी अच्छा। कब तुहर कोतरा मयाज नई मौसने करेला मैं हुआ गई ला उलेता सिविल के ऑफिसियवा के बोलबा अरे हम के मन पास शादी करे के सेपरेशन जी भी हाँ तो उ लिखेला हुआ तू शादी करत हुआ चूज कर ले हुआ स्वाजी गई कर ले हुआ कि सेपरेशन जी भी शादी कर रहा कब से राशन जी बिया कर ले हुआ तो मौसने करेला
0: अच्छा।
1: वो है लाख है लाख मजुआ में तो जान जाए कोई जहाँ कौन काली शादी कर ले हुआ तो उसने कोनो जिन काले को प्रॉब्लम हुई तो उही से गुवे ने

0: हुई कौन रिजिम में शादी कर ले हुआ तो ही लगी मैं लिखेला उमे अब एक अब हाँ आली कुछ बात नहीं ना आली तो यहाँ वो कब सेपरेशन जी बिया कब शादी कर ला कंट्रोवा मेंशन है उल्बा और उकर नॉर्मल तो कर फॉर्मालिटी तो आने लग चुके अब दूसरा चीज हमने देखा सा एक बान आदमी अभी के लिए मॉरिशस में ही काली थी शादी करता न कोई बिया करता न सेपरेशन जी बिया करता अब शादी करता कंट्रोवा में ये गो नया चीज नहीं है मैं आसे गो लेपोक से बा हमने के हाई में हमने के कुछ सिविल मोरिशिया में ये एग्जिस्ट है रेजिम कन्वेंशनल या हमने जैसे बोली ला सा कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रा में ये आदमी बोला जी कॉन्ट्रा में तो शादी कर ले तो बोले हाँ तो कुमार अब कॉन्ट्रा का ये एगो रेजिम ऐसा है एगो फ्यूचर एपू जो पति पत्नी मन बाओ के शादी करके अब जाने ला हुआ जालन सन एगो कॉन्ट्रा डिसाइड करे लंसन करे के उ कॉन्ट्रा वा एगो नोटेर हिया हुएला सब चीज लिख दे उ कॉन्ट्रा में से बुझो तो हर एगो जमीन बा कार्बन में तो कार्बन के जमीन वा तो हर दे से बुझो मत तू बोलबा हुआ ओ के दूसर बा पति के से बुझो बा शहर में तो हुआ के शहर हई फर्नीचर ओकर हई लोटो तो हर सब उ कॉन्ट्रा वा में जोन जोन बा शादी करे के गाड़ी है सब तोरा कर देवेला हां उमे हां लिख दे इकोनो तक बा में बिधा लेला जोली जोली सोफा 300,000 के किन ले ले बबले नहीं तो के एक दिन प्रॉब्लम हुई तो थोड़ खातिन छोड़ब नहीं अब हम के चाहे ला कुमा जो ओके मिले के तो ये कॉन्ट्रा में सब डिटाई एटाब्लिय करेला के कौन चीज के करबा अब ओकर प्रोप्रिएटे जब ऊ बन चला का करेला ई चाहेला जैसे बोली जाई के चाहे गो नोतेर हिया अभी शादी नहीं होलबा नोतेर हिया के गाड़ी जाई के नोतेरवा पापियवा प्रिपेयर करी सबके बोली के कहाँ मिला था और कौन सी जुआ में था तो ई उमोम सेलिब्रेशन में ऊ पपियवा जो नोतेरवा बन लेबा ऊ ले जाई अब जाई हुआ कब शादी करे तो बोली ना ऑफिसियवा कौन काल से शादी करत हुए हई का एगो छोटा बन पाफिया तो ऊ बोली कि हमके मन बा कन्वेंशनल में मतलब कोतरा में शादी करे के तो कोतरा में कभी यहाँ शादी करे ओके बोली तो के देखेला ऊ कोतरवा जोन बा पूवी इलिसिट नहीं बा पूवी एगो चीज कुमा जे नहीं है कोट लालुआ बा नहीं बा आर कोनो चीज एगो मूवी चीज कुमा जे ऊ में कोतरवा में नहीं चाहे जब ऊ बा तो ओके बोली कि लेता सिविलवा के ओके बोली हम शादी करत हैं कॉन्ट्रैक्चुअल में कॉन्ट्रा में तब ओके सही सिविलवा के है ऑफिसियवा पूछेला के कर ले नोटेर हियाँ के कर हियाँ तू डिपोजिट कर ले हो वे ऊ कॉन्ट्रावा ओकर नाम चाहे ना ओके तो ओकर नाम वहाँ लिख दे कि ई कॉन्ट्रावा है करल रहल ऐतेल नोटेर हियाँ ऐतेल नोटेर हियाँ ऊ डिपोजिट कर ले बा तो देख लो हियाँ अब ओके सब चीज हो गल अब काल एगो प्रॉब्लम होल एगो जीवोश के विषय में सैप न लड़ाई करी पति न लड़ाई करी पत्नी बस की कोतरवा में तो सब कोई बोल दे लेबा के आका जीवोश होई के का मिली के कौन चीज भ कैसे बोली तो ऊ लोग एकर लो तो वा ओकर ह एकर जमीन एकर ह सब हुआ लिख गल बा ओकर कोजिशो सब कुमा जल लिख दे लेबा अब कब केस करी लाकू हई में लाकू सुप्रीम है जाई फैमिली डिविजन में तो हुआ ओ कॉन्ट्रावा ले जाके ओकर आबू हुए कि पहला शुरू दे ओकर प्लेटवा में तो डाली एगो कॉपी एक कॉपी या कौन काली थे बस अब तक जीवोश मांगता तो जीवोशवा कब हुआ मांगी तो हुआ जीजुआ ओमोलोग करेला ओमोलोग मज अप्रूव करेला कि ये जो चीज कर ले वंशन सब को एक बार तब जीविजों ओकर हई हो पताज ओके पति पत्नी में अनमन जो कॉन्ट्रावा में लिखलबा यहाँ देख ला उपमा जा दोनों सब चीज एगो एगो एगो अच्छा चीज है बस ये का है न लड़ाई करी ना पति पत्नी तक कितना बरिश के कितना संगत
1: है में लावोताज कौन ची है देजावोताज कौन ची
0: है लावोताज ही है जब जोली चीज है जे जे कुमा जे अपन अपन चीज रख दे लबा पहला को लावोताज है अरे हमेशा को एगो है हमने के पुस्तक संगत जी का जाते हैं हमेशा गलत करेला एगो पति एक लीव में बोला था हमने बोला था केस जो नावेला वो में लिखेला बस ये पति करने कभी का शादी करेला तो दिखेला कि बहु धन दौलत बा दूसर के बा तो बोलिया जी का करे लाधोग में ढुक जाई कभी कुकमा जे इलिसिट चीज के लगे है करी पत्नी कुकमा जे नहीं बताइबा बहुत कम बा पत्नी जो लाधोग में मैं पति लोग ज्यादा कुकमा जे लाधोग में बा पिए उ सब के हेने होने तन ओकर जो कराक्टर ले जालन सन सोसाइटी में हमेशा तक है आदमी बोलेला कि ठीक नहीं बा तब पति ज्यादा हाली गलत करेला सखी एगो जाके पुनानी के एगो देख ले में एगो चीज में या ओके मन बा है करे के हौ करे के सिख पटनिया।

0: पूरता प्रिकॉशन लेवेला ऊ जानेला पण का करेला तो ऊ पत्नी देखबा जून कब देलेबा जे हिया दाल देलेबा औ कोंथवा में ओकर लावंताज तो पतिया के कुछ नहीं सके मिले पतिया नहीं सके बोले नहीं हम खाऊ में सिपा काली गो सेजी आई एगो बोले के तो सेजिया तो नहीं आई जो मडमुआ के नमुआ में कोंथवा में दाल देलेबा ना बस ओकर प्रॉपर्टी हुई देखो सेफ गार्ड नियर होवेला कि ऊ जमीन में ऊ चीजवा जो बाप बोले मारे पीटे हमारे माँ नहीं मारे को यहाँ मेरे को बोली कि मारे पीटे तो ऊ में बेचारे लोग रहे माँ बाप के कहा अब तो आदमी के कैसे को कुछ बोल रहा गाड़ी दिल्ला बोल रहा है वो तो बोली हाई तो हम घर छोड़ के हम जाते हैं तब हिया देखब तो ऊ में सेवा एरिया कर लग तो जिबिया वहाँ को मजा कोई कोनो के नहीं बा बिलाई के वो कर जिबिया ले ले एक तो वो भी सोची अरे बाप कल हम नहीं जब एगो मजा को चीज करे को गलत चीज न तो हमारे चीज जो हमारे मन नाम में बा जो हमके मिल
1: चल जाए
0: वो बिला जा तो ये खातिर नहीं
1: तो चला एगो गीत के ब्रेक ले बब जा और हमारे श्रोता लोगन के जना देवा था आज पुण्यतिथि बा सर शिव सागर राम गुलाम जी के और श्रद्धांजलि अर्पित करत आई हमर गीत के द्वारा तो बस साथ देते रहिए जा अभी थोड़ा घड़ी में कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब

0: की चर्चा कार्यक्रम जारी रखते हैं और आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी हैं जो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि शादी के बाद, मतलब मान लीजिए पति पत्नी अलग होने का सोचते हैं तो बंटवारा कैसे होता है उनकी जायदाद का, उनकी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ों का। वैसे अगर देखा जाए कि शादी के समय अगर किसी ने कोई बहुत ही बड़ा कर्जा ले लिया है तो शादी के सेपरेट होने यानी डिवोर्स के बाद ये जो कर्जा लिया है वो कौन चुकाता है, कौन हकदार होता है इसका, आइए जानते हैं रघुनंदन जी से। रघुनंदन जी, जब मान लो शादी के बाद एगो शादी के अगाड़ी शादी के पौरमोयाज में जब कोई पति पत्नी एगो बड़का दित ले ले लेबा, कुछ मान लो एगो लोन ले ले बा, कुछ बनावे खातिन, कुछ किने खातिन, त और डिवोर्स हो गल 6 महीना में तो है जो दे थ के भरेला।
1: अरे बाप, एगो जुड़ी के शो अच्छा ही में बात कर लिया सर। हाँ। हम देखिए सर सब विजय दे एगो कॉन्ट्रैक्ट हुएला पौडम आयाज में। हाँ। जब शादी कर ले एगो पति पत्नी ओ के दे जे कर ले वंसन तो दोनों के कंजॉइंट में भरे के चाहेला ओ दे तो। अरे देत कब ले ला सर, देत हमनी दे ले ला सर जब हमनी के मन बा एगो जमीन खरीदे के या हमनी के मन बा एगो घर बनाई के एगो लोजमा फैमिलियाल एगो घर बनाई के एक बार भाई बहन लोग हई देजा बा हई जमीन सुतल बा हुआ जैसे बोले लन सन तो के मन बा एगो घर के तो घर बनाए के एगो कंस्ट्रक्शन करे के एगो रेनोवेशन करे के तो चाहे ना पैसा न तो पैसा करे के ऐसा चीज। अरे कल हम हमी तो देखलिए जोली सन टेलीविजन के मन बा खरीदे के है में है एगो शॉप में तो हमके मन बा खरीदे के जोली सन सोफा लौक था बोली नहीं अरे सोफा हुआ इलेक्ट्रोमेनाजे के सब आदमी के पैसा तो नहीं बा पोज में कि कहें तो वो देख बाके कब एगो सी बुझो अपारे इलेक्ट्रोमेनाजे या कुछ करे के होता या गो लोटो तो देखो देखो नया लोटो निकल रही हुआ वो लोटोवा कब निकल रहे हुआ तो उतना पैसा के अभी देखो लोटो मोस की 2 मिलियन में नहीं निकल बा तो 2 मिलियन के कर पुष में बाकी हुआ बा तो चाहे ले गो दित करे के दित कर ले हुआ शादी के जब शादी कर ले हुआ सब पति पत्नी कब जियत हुआ तो के पे करेला ऊ दे तो मेम की कब अरे कोई बिया शादी कर ले हुआ लोटोवा तो तुहर नाम में बा तो इसकी कोई बियान से शादी कर ले तो पतिया है कुमार जब बोली नहीं इतुर में तुर नाम में बा नहीं दोनों कंजेंटमेंट साइक मा रिस्पांसिबल बा भरे के सब जे जमीन हो घर हो इलेक्ट्रोमेनाज हो में बोई या कुछ किन बा रिनोवेशन कर ल जब एगो देत कर ल देत तब कला बैंक से हो तो जाके मांग बा एगो है पैसा ताकि ऊ देवेला तो दोनों रिस्पांसिबल बा कंजेंटमेंट संगे वो लोग भाई पति पत्नी वो लोग के चाहेला पे करे के तही से देख बग एगो कभी लाभों के में जाइब तो पूछेला से बुझो पतिया गलबा बोल कुमा जो है एगो घर बना है बनाई के उस जमीनवा में तो बोले आई घरवा के कर शादी कर ले लो बोले हाँ पता बोले कौन का बोले खो गई भैया शादी कर ले हई या शादी कर ले हई तो बोली हाँ तुहर पत्नियों के आई के चाहेला अकेले तुहर नाम में हम नहीं दे ओकरो चाहेला आपस की कुमार जाए पोता बा उ शादी कर ले हुआ काले गो बोली के उ देतुआ नहीं सकल पे ये करे तो जो चीज कोई मदमुआ के सी बोझो है ऐ नाम में तो ऊ में देख बस सेजिया आवेला में एगो शादी में एगो देत क पति पत्नी कॉन्ट्रैक्चुअल में कुमार जाए कंजॉइंट में जे कुमार जाए है कर ले हुआ सन तो दोनों के चाहेला आधा आधा भरे के उ देतुआ में समझला ना इगाल चाहे रब कहीं देखे अभिया मिसलमा हुए ला कभी मेम की कर ले हो अनसन एगो है अली एगो बोली पत्निया के तो पैसा बा हिया बला मिशवा ओकर नाम में डाल दे ले को देतुत कर दे ले बा वो के पिए करे के चाला दितवा नहीं सकता पिए करे के कभी तो कुमो एक बार पत्नी भी बड़ी लिमन हो अनसन वैसन ओकर दिल खुल के बोली अरे अरे पति का फिकिर कर ले हमर यहाँ तो बा हमर पुरुष में या बला बंक में तो बा फिकिर नहीं करिए हम

पे करो हम उदेतवा भरते कितना झोली है मे बाय बड़ी कम्बा मे बा कोई ने बोली एगो लाहौस में गिर गल हाँ। तो जाके बोली हम पे ये करब तहिया जुन देतुआ कुमा जे कर ले वंसन जुन लिपोटेक दल्ले वंसन उ घरुआ में हाँ। आर कौन जुन बा बंके में बस एक बार कोई के ला बंक में बा ला बंक दे ले बा पैसा यहाँ नहीं सकता भरी तो कभी पति या पत्नी बोले ला

0: भाई हम चुरकमा जे देतवा भर दे तहिया देखबा देत भरे के जब एगो पची मतलब पत्नी या पति आके साकी बोलोते से बोले हम पे ये कर देला थोड़े तो की तरह का नहीं करिए पसी तू कहाँ अनबे तू ही था गरीब हो वैसी पका हुए प्रॉब्लम बा हुकमा जे जाके तोर माँ बाप से मांग के तू के चाहे ना पैसा दे के वहाँ अप्ली करेगी देतवा नहीं फिक्र नहीं कर हमार बा उतना दिन से हो नहीं बोले रही रख ले रही
1: रघुनंदन जी हाई सपना बतावा था सबको ही के ऐसे होला नहीं पर जैसे बोला था बहुत कम महिला लोग हवन जे बहुत बड़का बड़ा दिल रखेलन सा और जाके पे ये कर देवेलन सा
0: हमने भी बा बा हाँ, अच्छा। उसी दिन हमने के एक एक्सपीरियंस बा देख लें सा हाँ। कैसे एक मजे हुले हो वेला सोसाइटी में हाँ। मैं बा एक बार हाँ ढेर नहीं बा मैं बा कि कम का एक बार बोले अंसन वो जो अपन पत्नी के खुशी हुई देखो तो अगर पत्नी के प्रॉब्लम में बा इतना एक डेट कॉन्ट्रैक्ट चल कर ले बा तो बोले नहीं फिक्र नहीं कर हम एक मानेर करके एक डेमोस करके या हम ही एक लोन लेके तुके भर दे तो दे फिक्र नहीं जो तू सुटली मन से आराम से हाँ हो बा जैसे बोल रहा कम्बा में बा मैं जब डाको हो गल बा एक पति या पत्नियां पे करे कि ऊ दे तो प्रॉब्लम ना जो देत कॉन्ट्रैक्ट कर ले लंसन एगो नहीं सकलक मजे पे करे दूसरा सकी बोले करे बा हम ही तो पे देव तली पोतिक हो या कौन हो लामक में या कोनो काली थे जहाँ धुआ हुए बा सकी ऊ कर जवा भर दे तो ये देखे ला ये एगो चीज बड़ी अपोता है। अब जैसे घर बोले रही ना घर रही या कुमा जे है जमीन रही सदिया में उकुमा जी चाहेला देतुआ करे के सदिया में जे देत ले हो शादी में और शादी में कर ले कोई कोई भी है तो कोई भी है में कब शादी कर ले तो दोनों के तो भरे के चाहला ना तो हिया मैं एगो बोली के पत्निया शादी करे के गाड़ी उकुमा जी उ देतुआ ले रहा तो पतिया कहाँ ढुके हु बोले तू तो शादी करके गाड़ी मामा हम तो हम नहीं जानी ला तू देत ले रहा ले सिवा का कर ले ई में हम नहीं भरब हाँ जे रिस्पॉन्सिबल नहीं रही पे करे के कंजॉइंट में बस की वो देत ले रहा
1: शादी से
0: शादी के गाड़ी दूसरा शादी करे के गाड़ी हिया शादी कर ले बस से पाकाशियों जी भी है तो से पाकाशियों में जा ओकर जी भी है तो ओकर है एकर जी भी है तो एकर है तो वो बोले तो माफ करिए नहीं बोले हम पगला हैं कि तू देत ताकि मजा हम भरब तो मतलब तब नहीं भरी सिलम कब शादी कर ले बा को मिनो ते दिव्य तब शादी में पौधा में या जैसे में बसा तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके अस्यूम करे के चाहला तब ओके चाहेला पे ये करे के एगो पैसा कुमा जे सब सब मतलब कि हर दिन जो कॉन्ट्रैक्ट कर ले वंसन पति पत्नी शादी में तो देख बा कोरेक बा मैं शादी करे के अगाड़ी पे सुनेल में जे होई तो ऊ जो नदमिया ले ले बा शादी करे के अगाड़ी वही ओकर दिन चाहेला
1: कुछ चीज यानी कुछ जमीन कुछ कोई न कोनो जायदाद पेमिशों के बिना बेच दिले बात तक कौन चीज करे के चाहिला मान ला ओकर पोतनिया के नहीं जनाल बा कि ऊ बेचा था या बेचा गल बा कुछो चीज मान ला एगो गाड़ी रही सिपाही को जमीन रही कुछो बेच देले बा अपन पत्नी या पति के कोसौतमा के बिना
0: पहला चीज दिखे के चला हमने यहाँ सिपोजो एगो जमीन रहल बोला पहला लुतुओ भी देखो हाँ, सब हाँ। एगो जमीन रहल तो उ जमीनवा में मजा सिपोजो है ओकर जैसे बोली सा शादी के हाँ। अगाड़ी ओकर हथोघरे रही हाँ। मैं सिपोजो यहाँ सदिया में बोलत हुआ हाँ। ओके मन बा एगो जमीन बेचे के नहीं सकी पहला चीज कोनो चीज करी नहीं काहे के करेला कोतरा किने के बेचे के नुतेर न तो नुतेर ही ओके जाए के चाहे नुतेर तो बोली पहला चीज अच्छा तो हर कहाँ कोतरा कहाँ बा तो कि बोली ना हई का मर कोतरा बा तो कोतरवा में देखी ना पौधा मयास किन ले रखल या शादी के गाड़ी किन ले रखल तो हिया देख लक पौधा मयास बोली नहीं इधर जमीनवा देखा था तोहर आर तोहर पति के नाम में बा बिना तोहर पति के सिया छे बिना ओकर कोसंतमा के नहीं सकल जाई बेचे इस जमीनवा और कोतरवे नहीं हुई नहीं है सकी बेचे देखल ये एगो चीज है पोता अब गाड़ी में
1: हाँ
0: कब गाड़ी के साथ एगो है चीज आई हाँ तो हिया देख पा गड़िया में कि कुमा जी शादी कर ले ले बा कोई भी है मिस वो गाड़ी के नाम एंतिया में रजिस्टर्ड के कर नाम में बा वो आदमिया जो वो बात अप्रोप्रिएटर है तो वो तो बोली कुमा जी हमर नाम में है वो तो काले को आदमी जाके दूसर से है ले ले एगो कुमा जी है ये करे मैं नहीं चाहेला ओकर पे मिशू उगड़िया बेचे के एगो दूसरा आदमी से

0: पतिया के घर में मैं कब देखब लीगलमेंट लीगलमेंट देखब तो पतियों के चाला तो कर धोआ कुमा जी हई में हई करे की बस की शादी में किन ले वंशन ऊ हई लुतुआ तब दोनों के बनेला मैं घर जिस तक लैसे जमीन नियर नहीं है जहां नु तेरु यहाँ यहाँ तो ओकर नाम में बा हाँ सकी बिल्कुल जेकर नाम हाँ जेकर नाम में बा वो भी ते हाँ तो यहाँ देख बा पतिया तो कुछ नहीं सकी बोले हाँ मैं की कुमा जी मैं सिरमा नो माल मा का करेला कब बेचे लंसन ऐसन काम एक शादी कर ले वंशन ऊ एगो किन ले वंशन ने बोलो तो आधा आधा पैसा बांटे लंसन अपन में बोले बोलो तो बेच लेना कोरे हम ये तक किन ले रहे हम ही तो के दे रहे पैसा तो नाम में रहल तो ईमानी ते मैं सोच के ओ बेच जाई मैं यहाँ लीगल में कब देखब उलो तो वा ओकर नाम एन ते में तब ओकर सिबो से मदमुआ के तो मदमुआ तो बेच देलक हाँ ओके छात पैसा दे के अब ओके नहीं दे ता ये एगो दूसर है दूसर एगो केस चल चला
1: हाँ बिल्कुल। और आज जब हम बात करते हैं लीगल एडवाइस पर और आज डिवोर्स में होने वाले बंटवारे पर बात कर रहे हैं जी, अगर आपके मन में भी कोई भी ऐसा सवाल है जो किसी भी लीगल इशू को लगकर है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन 4028085 पर। जी हाँ 4028085 पर इस वक्त हमारे साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका बनी हुई है, तो ज़रूर आप संपर्क करें और कोई भी ऐसा सवाल है जो कानून को लगकर है तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो जायदाद के बंटवारे पर खासकर डिवोर्स के बाद किस तरह से होता है इस पर बात आगे बढ़ाएंगे एक गीत के ब्रेक के बाद।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बिल्कुल इस वक्त हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कोई सवाल है जो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो, जी हाँ, उनका कॉल कट गया है। जी हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं 4028085 नंबर है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, आप हमारे साथ कॉल के माध्यम से अपने सवाल को रख सकते हैं। और चलिए, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से डाइवोर्स के बाद किस तरह से बंटवारा होता है, तो यहाँ पर हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर पति पत्नी कोनो बिजनेस करता एगो लौंते फ्रीज हवन स, तो कैसे एगो मान ला एगो दुकान खुलले हवन, एगो लाबुचिक खुलले हवन, काम करत हवन दोनों पति पत्नी, एवेसी करले हवन पैसवा, तो हई में कैसे बंटवारा होला?
1: हम दिक्कत नहीं पूछते और कालकिल लिमन से कर ले हुआ जो जो चीज पोता है वही पूछते हुआ। ये कुछ चीज है आज मोदेन खैला भी है। पहले तो देखबा कुमा जे माँ बाप कुमा जे एगो बिजनेस में नहीं रखल या दूसर के आदमी से काम करे। मैं अभी के जो जेनेस बा जैसे हमने बोली ला सब नया नया शादी कर ले सन पति पत्नी बैठ के कुछ अरे कहाँ भी दूसर के है काम करे, काहे ना अपने एगो बिजनेस करब सर, काहे ना अपने एगो आंथे भैंस करब सर। अभी कहते देखब एक बान है आदमी बा एगो बुटीक खोले हुए सन पति पत्नी संगे हुए सन या एगो मगाजे खोले हुए सन दोनों संगे या कोनो दूसर एगो बिजनेस एगो स्नैक की खूब जरूरी चीज है। शादी के जाए के जाना खाई के दिमाग के वो जाने ला कि उतना पैसा मिले ला उमे तो बोले सन को एक शुरू करब सर ऐसा एगो बिजनेस ई एगो आंथे भैंस। जब एगो पति पत्नी शादी में कब एगो एंटरप्राइज कर ले वनसन बना बनैले वनसन या किन ले वनसन या गोइंग कंसर्न हो चलता उपमा जो है बिजनेस हुआ शादी में कब उ बिजनेस हुआ के कुमा है बैलेंसन दोनों कुमा जे है बा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा उ है के अली शुरू कैसे रेस्तोरा से नको में तो उहे के उ लोग के चलल के लिए कुमा जो गोइंग करे के तो उ लोग के चाहे ला जे किन ले वनसन शादी के आगे तो उचिजुआ रही जो अदमिया के रखल बस एक बान के रही शादी कलग तो ओकर पति मजे आगे तो हुरुले करे उ है बिजनेस वागस तो हुआ कब शादी करलग तो में अभी कुछ में देवा था मैं शादी के गाड़ी जे ई एगो बिजनेस कर ले हुई पतिया तो उ बिजनेस हुआ ओकरे रही वही रिस्पॉन्सिबल पैसो ने ला जो जो देत ले ले होई या कुछ कर ले होई बस ये ओकर नमूए में रही शादी करे के आगे एक नाम है बियां प्रोप ओकर जमीन ओकर है। मैं आवे ला एक बान आदमी एगो एंटरप्राइज खोले ला तब कुमा जे कब शादी कर ले लेबा कब शादी कर ले लेबा उ कुमा जे दोनों तो देखबा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा ओकर चलाई के ओकर देत जी होई तो पे ये करे के दोनों संगे। मैं एगो चीज है आज के जमाना में देखब माँ बाप का करेला कब काम करेला तो बोले अरे हमारे एगो लड़का बा जैसे ई एगो बिजनेस हुआ बोले बेटी शादी कर ले अभी तो नहीं कर ले हुए आओ हम हमारे एगो बिजनेस बा तो हमने के जोन बाई गो गुस्त हुआ चल हम तुके दे दे अब हम तोर नाम दे दे एक बान हुए ला माँ बाप देवे ला उकर लड़का के शादी करे के आगे तो वो बिजनेस हुआ के जोन बागिस्त हुआ ओके शादी करे के आगे ओकर बाप या माँ दे दे ले बा एगो दोनाशों के टाइम में तो देख बा वो बिजनेस हुआ ओकरे रहेला पस ओकर माँ के दोनाशों।
0: रघुनंदन जी हाई जा पर इशारा हुआ था एक श्रोता हवन सुनी ला जा उनकरा। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। हाँ जी,
2: हाँ हाँ भाई, ओके नमस्ते।
1: तन नमस्ते, तन जोर से बोल के मजे।
0: हाँ हाँ
2: हाँ, हमर बुरा देश दे गोलवान तो ओ गोलो तो किन ले रहा है।

0: Tu as l'auto qui n'est pas là, tu as demi sur l'auto à Bentla, tu as enregistré les choses. Et tu as un mois, mais tu as dit, tu as un mois, mais tu as décédé. Mhm mad des gal ab hau popiete wa jun lele ba abola ta pan na ukana me kare ke ta ham mar beta ke dugo ama bura ke dugo beta wa ta olo moris ne haman sa deo haman sa ta chahela lo ke sinache zeriche
1: ha रघुनंदन जी
2: रत्ना जी हम कुमा जे नहीं कुमा जे प्रेस के नहीं सुन ले जो देखो हम के एगो रिकाप बोला था का है माता जी बोला
1: बोलन की उनका जन पति हवन गुजर गल हवन हाँ। और गाड़ी रहल त उ खोजे खोजता कुमा जे बेचे त दुगो बेटा बात जैसे कुछो भी बेचे के जब एगो एगो वोट करा था वन सा
2: तब समझ गए लिया
1: हां तो बेटा बाहर बा तो पूछा था वन की उनकरा सिनाचे चाहिला है सब में
2: हां पहला चीज देखे के चला वो जमीन है लुतवा जो रहल तब पति के रहल जब पति गुजर जाला ऐसे जमीन हो या कुछ भी हुई था पताज में आवेला तो देख बहिया ओके मिली ओके ओकर पत्नी के ओकर हक बा ओ है लुतवा में ओकर जेगिचे के भी ओकर जेगिचे ही ओकर लड़का है तो सब दोनों लड़का जे होई आरुकर पत्नी चाहेला सीए करे के कि कोम को हुआ एंतिया के को सब फॉर्मालिटी करे के ताउ कि उ आदमीया के जोन प्रोप्रिएटर वेनी तब एगो बोली के बोलत हुआ कि कुमा जे एगो दूसर देश में बा हां सैंप हो ओ कि नहीं चाहेला हुआ से डिरांजे करे के आई के हिया एगो आदमी के एगो भाई के या एगो बहिन हो या कोई के ओके स्वाजगे करे एगो प्रॉक्सी ओ कर के कुमा जो के दे उ दुआ हुआ कि जाने ले बहिन या के होई या एते हम के कुम तो के देवत है परमिशन हौ लतवा बेचे के करे के
1: कोनो भी चीज
2: खड़ा हो जाइए
1: जैसे एगो प्रॉक्सी देवे के
2: प्रॉक्सी के दे के हां सीए कर दे तू प्रॉक्सी जे मेम की नहीं सकी आई और हिया बा है ओकर मां बस ने कर प्रॉक्सी
1: जब हौजा करी अनसा तो कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिला कैसे ओकर प्रोसीजर रही नहीं
2: सब जाफे ओकर प्रोसीजर में ये अभी जमीन की बात नहीं बोलते सब खाली परमिशन देवे था तो एगो आकात कैसे वो कात पापिये नियर लेके अपन नाम डाल दे सब अनकोर कति दे चीते कौन कौन चीज सब डिटेल दे कि ऊ देवता ऊ आदमीया जोन ओकर नमवा भी ओके जाने के चाहला कि देख हम देवत नहीं तो कि ई परमिशन है एगो खड़ा रही एगो पुक्सी कि हम पास की हम हमर बगल से हम नहीं सका बाई से
1: कोनो प्रोसीजर करे के है जैसे अगर एगो पुक्सी के
2: नहीं नहीं ई में ही नहीं पुक्सी कब हुए ला कुमार जमीन उनके विषय में तब नोटेर मांगेला हुआ के चाहेला एनरिस्ट्रे सब करे के वो नहीं देख या चाह के जा हुआ एगो आप वो के देखे के हिया तक खाली बेचे के वो सिर्फ जाफे लॉय में तो ये वो अकात में लिख दे सब परमिशन डाल दे ओकर नाम दे दे लुटवा के सब ओकर कंडीशन करने में हाँ। बोली तू खड़ा रहिए हमर बगल से तो वही ओकर पोक्सी आ रही तो हुआ जाए तो कर एक बार
1: अच्छा
2: एगो साहब के बोले चाहे एगो अकात में लिख के एगो खाली एगो चिट्ठी नियर लिख के दे के ओके बोले के कि बेचे के कुमा जाए घर हुआ
1: तो चला है जा पर एगो और श्रोता हवन सुनी ला जा उनकरा
2: एक मिनट
3: हेलो
1: हाँ
3: हेलो
1: हेलो
3: नमस्ते
2: नमस्ते जी
3: वी हेलो हेलो
2: हाँ बोला
3: Oui, mais quand c'est?
2: Hein?
3: Oui, mon père, mon petit fils, quand il m'a envoyé là.
2: Oui.
3: Ce bébé, il a un dessert. Avec l'hiver 3. Mais vous n'avez pas autant ce terrain-là, mais pas de récit faire. Mais il est là, vous avez besoin d'une l'argent pour vous gagner ce terrain-là. Vous n'avez pas autant ça. 5 heures, je ne peux pas faire ça. Combien de bananes? Là, mon petit fils m'a envoyé dans les lents. C'est un coup de là, mon petit fils, bébé, mon petit fils, prends l'aune pour portage. Ça veut dire, pour payer ce banser. Mais est-ce que mon petit fils est capable de faire ça? Oui, pour le faire, il est capable de faire, prendre l'aune. Qui garantit dans ce salaire la paix d'une poulie?
2: नहीं पहला चीज है हमने के जो हम समझ ली है तीन गो आदमी बा अब तीन गो आदमी बे वो बस का करते उन सन उस जमीन हुआ उ लोग के तीनों के नमो में बा तो तीनों के आदमिया के नमो में रही तो कुमा जब मुश्किल होई बे ई पताजे करे के बस कि एगो जमीन कब से बुझो तीन है तीन अपंबा एक एक अपंबा के सकल लाई पताजे करे के मैं उ जमीन हुआ मैं छोटा रही मुझे कम रही तीन आदमी से नहीं सकल दाई पताजे करे तो हिया चाहेला लिसिटेशन करे के बेचे के मैं हिया ए गोवा के मन बाकी ने के जैसे माता जी बोलक उकर बेटिया के वो बेटिया के एतिगे से बाले के हाँ मेकर थे यहाँ भी प्रोसीजर नहीं होल बा कि किने के कैसे करी सके वो एगो बोली के ओकर यहाँ पैसा न हुई तो लाभांश से ले के एगो दे लाभांश से मैं नई सी रही दे पसी काहे लाभंक के चाहे ला।

0: जमीनवा जो ओकर नाम में रहत ओ वो लोन देत ना यहाँ काले को बोली कि एगो लिपोते के लेवता एगो जमीन में जो नमी जमीन में नहीं बा ओकर नाम में तो देवे कोनो लाभांक दे कोनो नहीं दे मैं तीन कार नहीं दे मैं हिया के मुश्किल हो मैं ओके मन हो जे उपमा जे कुंजिशों करे सके जाके गो नोती रहिया गो पापिये करे के ऊ जे भरी देतवा तो ओकर बेटिया के हौ दू गो जोन बा जे बिचे ओकर कुमा जे बिचे ओकर से दे सकी
1: तो जरूर जे कोनो और श्रोता हवन भाग लेवे खोजत हवन तो 402-808-85 पर तू हमने के टेलीफोन करे सकबा कार्यक्रम जारी बाते और जैसे लौं थे फ्रीज के बात करत रली और आज कार्यक्रम में पोताज के विषय पर बात करत हैं तो आगे बढ़ब स हाँ रघुनंदन जी
0: हाँ तो जैसे बोली सने गो अंते फ्रीज हुई हाँ। तब अब ओके मन हुई कुमा जे ओकर माँ बाप दिले हुई ओके कैसे कुछ तो वहाँ देखत हैं सर
1: हाँ।
0: गाड़ी तो वो करे रही भाई के ओकर पति के से बोझो हो कुछ नहीं मिली एक मिसलमा आ दुनाशों के बोले रही सा एगो एविताज के होई और माँ बाप कभी तो मर जाला तो ऑटोमेटिक एगो सक्सेशन वो खुल जाला तो सक्सेशन वा में ओके मिली तो वो करे रही पति नहीं सके कुछ करी
1: हां
0: मैं यहां देख ल जब ओ जीबिया वा और उपमा ओ एगो जीबिया फोप हो जाला तब ओकरे नाम वा में कबरेला मिसलमा वो औसने को जीबिया नहीं पोताज हो तो वो रेस्टोरेंट जोन रहेला ओकर माँ बाप दे दिल हो या गड़िये से या अपने किन ले होई तो वो कर रही नहीं सकब कुछ कर
1: चला एगो और श्रोता हवन सुनीला जाओ उनका हेलो
2: हेलो रत्ना जी नमस्ते
1: नमस्ते जी स्वागत बा
2: कपिल भाई के बोले नमस्ते
0: नमस्ते
2: बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में देवी लाने के लिए प्लीज
0: नमस्ते भैया
2: हाँ अभी हम काम में है सब समाचार हमने थोड़ा सुना था शादी हो गल तब दू बार शादी हो तब जो किनलन से अपन घर किनलन से लोन लेके हाँ दू बारी शादी में जब लोन लेके घर किनलन से तब जीवोस प्रॉब्लम हो जीवोस हो गल अब जीवोस हो गल अब पचास लोनवा भरे के अब अकेले ओकर बेटा अकेले नोनवा भर था थे तीन बरिस हो गल अब जीवोस खोता तब अब मदमा को सोम दिखलाए गए पैसा दी तब सिंह करी
0: रत्ना जी से भैया बोलन सच जाने ला एगो जमीन खिलने रलन सन सुपोजो दूनो में
1: हाँ।
0: दूनो के नाम में हुई जब कुमार जय एगो जीवोस हो चाहे ला दूनो के भरे के कब जीवोस के बाद अब एगो बोली के ऊ बोलता ऊ जमीनवा में ओके हई मांग करता नहीं कैसे ओके मदमुआ के मिली कुछ यहाँ शादी में तो किन ले दोनों तो रिस्पॉन्सिबल ऊ लोनवा भरे के तो नहीं कि कुमा जे अब मिशे हुए भर ले जाए और यहाँ कुमा जे
1: मदमुआ नहीं
0: मैं एगो चीज सकी करे एगो चीज से करी मिशुआ के बोलती से हम सब ओके मन हुई भरे के तो सब पापी जुन बा ओके चाहे ला करे मजे रमासे के देंगे सी बुझो 10,000 धारेला ऊ है मैं घरवा में या बनाए के तो ओकर 10,000 के जे घर पापी रही काल मदमो के कुछ नहीं मिली मेम की को के ओकर दुआ बा पसी बोली हाँ है का जमीन डूबत रहल डूब हम निकल ले हई है का हम न पैसा पे ये कर ली लाबोंकवा से लेके पपीवा से बताए तो मदमुआ सोच ले रल अरे नहीं उभरी हम केक मजे मिली नहीं कुछ नहीं मिली ओके
1: ये आज के कार्यक्रम बिल्कुल लगभग लगभग समाप्ति तक चलहाल हई है अंतिम एगो सवाल पूछब रघुनंदन जी से मान ला रघुनंदन जी जीवोस जीवोसवा हुआ था और पति पत्नी अपन को सौतमों से मान ला लाकूर में जाके नहीं पर अपन को सौतमों से अपन आप में म्यूचुअल करके एगो पोताज करे खोजियन सा तक खोजे वो करे सकी मतलब जितना जीबिया बा अपन अपन म्यूचुअल कंसेंट से
0: सबसे जोली चीज बोल रहा है ही हम बोली ला पति पत्नी शादी कर ले बा पति पत्नी इतना बरिसन से रहल बा वो जोन प्यार रहला वो पति पत्निया में ये दुनिया में कोई ही से नहीं है मैं अब एगो बोली के ओके मन बाकुमा जे अगड़िये जाए के लाकूर में लड़ाई करे के हे ने वकील के लेके हऊ लेके अरे जा कुमा जे नोतेर में बोले रही तेल सब एगो कुमा जब एगो शादी करब बस वहां जाके नोतेर के आगा कुमा जे सब एगो पापिये बोले बो एकरे नाम एगो आरेंजमेंट अमिकाल दोनों डाको हो सन हाँ यहाँ डाल दे बोली तू हम ले घरवा हो घरवा जैसे बोले ई ले सब चीज डाको में कितना जुली है सब अपन अपन चीज हुआ अब हुआ जाए जीवोसवा के कुमा हो तो फाइले करी कि तेल तो ओके उमलोक करी जीजुआ कि देख जोन जोन देश दे कर ले सन ये बोलता ऊ घरवा रही ओकर ई घरवा ओकर हो तो कोरे ऐसने करके पोताज हुई एगो पोताज आमियाब सबसे जुली चीज है पसी पोताज में तो हमेशा प्रॉब्लम हुई थी
1: हाँ तो चला आज की चर्चा कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बा हाइजा पर हमनी के साथ देलन दीपशिका हमर प्रोडक्शन

असिस्टेंट तकनीक पर हमने के साथ दिलन कादिया भाई और साथ रहल रितेश मोहाबिया हमने के प्रोड्यूसर। और बिल्कुल एक बार फिर चलते चलते आपको याद दिला देते हैं कि यही कार्यक्रम दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। और हमारे साथ जुड़े बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। जितना कोई श्रोता लोगन है कार्यक्रम में भाग लेलन उनका धन्यवाद बोलब जा। जितना कोई हमने के ऐसे रेडियो पर हमने के सुनलन और तोहरा मन बा कपिल देव जी से संपर्क करे के तो जरूर तू संपर्क करे सकब, और ई कोनो समस्या रही तो जरूर कानून के विषय में तू उनकरा भेंट करे सकब। और चला इसी के साथ फिरो से एगो और कार्यक्रम के संगे भेंट आपसा, तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह बोटानिकल बाग में कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सचिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम, बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के कई सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गई। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले को फूलों के साथ नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिव सागर राम गुलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुणों और असूलों को अपनी ताकत बनाकर मौर्य समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। मॉरिशस के इतिहास की एक प्रभावशाली शख्सियत सचिव सागर राम गुलाम ने न केवल अपने सरकारी कार्यों से बल्कि अपनी गहरी बौद्धिक और सामाजिक सोच से भी अपने युग पर अमिट छाप छोड़ी है। उनकी 126वीं जयंती के अवसर पर एक ऐसे राजनेता का चित्रण आपको

0: वो आज शाम देखने को मिलेगा जिनकी कलम उनके लोगों की सेवा में पहला हथियार बनी थी। हिंद महासागरीय इलाके में सहयोग मजबूत करने की दिशा में आईओसी और सिगात के बीच कायम फ्रेमवर्क समझौते को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एबेन में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से लागू हैं, जिसके तहत इलाकाई स्तर पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को काफ़ी बढ़ावा मिला है। विदेश की खबरों में फिलीपींस के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 की उम्र 14 साल की बताई गई है। 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। हमलावर 16 साल का था जो मारा गया। ये इस साल फिलीपींस में हुआ ऐसा 3रा घातक हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का सभी दोस्तों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, पहुंची हूं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शाम के 4:11 हो चुके हैं। 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, सितंबर महीना है और इसी के साथ इस प्यारे से सफर में आइए जुड़ते हैं, कुछ बातें कुछ जज्बात आपसे साझा करते हैं।

सबसे पहले हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे उन सभी का जो इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं. आप अपने मैसेजेस के द्वारा, अपनी चिट्ठियों के द्वारा, अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा इस कार्यक्रम को और भी चार चांद लगाते हैं. बस अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिएगा हमारे साथ, यूं ही दिल से जुड़े रहिएगा और प्यार भरे खतों के साथ. आपकी कई बार ऐसी बातें जो आप किसी से नहीं कह पाते, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी बात समाज तक पहुंचे ज़रूर, पर आप नहीं चाहते कि आपका चेहरा किसी को पता चले. बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो वो है ना कि हम अपनी बात रख पाएँ, हम अपने दिल का मैसेज दूसरों तक पहुंच पाएँ और पहुंचा पाएँ. और बिल्कुल कई सारे ऐसे लोग हैं जो बातें तो करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी कई बार ऐसा होता है कि कुछ दबाव के कारण, या कुछ कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कई ऐसी मजबूरियां आती हैं जहां पर हम अपनी बात रख नहीं पाते. तो चलिए, आज हमें एक बहुत ही प्यारा सा खत आया है और ये एक टीचर का खत है. और बहुत हिम्मत चाहिए होती है, आपने जिस तरह से आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इस खत को शामिल करने के लिए आप एक पहल की है, थैंक यू कहेंगे आपको. और आप लिखते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपके प्रोग्राम को सुनकर, आपकी चिट्ठी मिली. कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो मन की बात दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत प्रस्ताव, और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बढ़िया बात, आप दुनिया की, दुनिया ने बिल्कुल आपकी जो बात है आप दुनिया को सुना सकते हैं, बता सकते हैं. आपकी पहचान को बिल्कुल गोपनीय रखते हुए, कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, और इसीलिए आप बेहद प्रसन्न हैं कि आप अपनी बात को इस कार्यक्रम में बिल्कुल दिल खोल कर रख पा रहे हैं. आप लिखते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं आए दिन बच्चों को पढ़ाने के साथ उनकी मनोस्थिति को समझने का प्रयत्न करता हूँ. आज बहुत से बच्चे, युवा अपना मार्ग भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, दोस्तों के प्रभाव में आकर, या फिर कह सकते हैं कि घर में होने वाली अनबन, लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर कई बार ये जो बच्चे हैं अपने मार्ग भटक रहे हैं. बस मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इनको मैं मदद दे सकूं, और इसके पीछे दोष किसका है, अध्यापक होने के नाते मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी भावी पीढ़ी हैं, और अगर ये गलत कर रहे हैं तो उनका हाथ छोड़ देने के बजाय उनको समेटिए, उनकी समस्या समझने का प्रयत्न कीजिए. कई बार कुछ बच्चे अपनी समस्या को समझा ही नहीं पाते हैं. अध्यापक होने के नाते हमें कई ऐसे विद्यार्थियों को देखकर हम चाहते हैं कि हम उनकी समस्या को समझकर दूर कर सके, पर कई अभिभावक अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते. ये उनका मानना है, बच्चों का ये कहना है कि हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी दे तो उन्हें जज किया जाता है. अध्यापक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, तो इसमें नुकसान केवल बच्चों के भविष्य का ही नहीं, पर एक माता पिता का भी बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है. क्योंकि जिस बच्चे के जन्म पर आप इतने खुश हुए थे, आज उसी बच्चे को गलत रास्ते पर जाते देख आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है. बच्चा अगर आपका है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है. मैं निवेदन करता हूँ हर वो इंसान से जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है, हर माता पिता से, कृपया करके अपने बच्चों के लिए समय निकाले. उन्हें किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दे, उसकी पीड़ा को समझिए, उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए. क्योंकि केवल अध्यापक या अध्यापिकाओं का काम नहीं है, यहाँ पर माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने इस

के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की है और मैं समझती हूँ जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं शायद इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे एंड डेफिनेटली आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम जहाँ पर हम घरेलू बात कई बार दिल की भावनाएं कई बार समाज में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो सच में हमें भले मैं ये नहीं कहती कि हमें इसका एक ठोस सल्यूशन मिल जाता है पर कई बार सोचने पर बिल्कुल हम मजबूर हो जाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है गलती किसकी हो रही है क्योंकि हम कहते हैं ना कि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलने लगे हैं कि हाँ ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है और ऐसा कहकर बस हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं पर देखा जाए तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना जैसे जैसे इस गुरु जी ने कहा इस अध्यापक ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भावी भविष्य है हमारी भावी पीढ़ी है जिनके कंधों पर इस देश का भार पड़ने वाला है और अगर उनके कंधे ही कमज़ोर होंगे तो वे इस दिन के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे और जिस प्रकार का सिनेरियो इस समय हमने देखा है समाज में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो बच्चे बढ़ रहे हैं हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मे बी 11, 12 ईयर्स या उससे भी कुछ बड़े बच्चे जो टीनेजर्स टीन से गुजर रहे हैं बिल्कुल ये एक बहुत ही क्रिटिकल एज है जहाँ पर बच्चे अपने साथ साथ अपने शारीरिक चेंजेस मेंटल चेंजेस इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे हैं और बिल्कुल ये जो परिवर्तन होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पर चेंजेस इंसान को पूरी तरह से चेंज कर देता है मेंटली फिजिकली इमोशनली और कहीं ना कहीं जब ये चेंजेस आते हैं और अगर इस चेंज को समझने के लिए हम उनका साथ नहीं देते तो ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे उन्हें जो समझे वे उन्हीं के पास जाएंगे और अगर आप कई बार होता है कि बस एक माता पिता होने के नाते या एक अभिभावक होने के नाते मैं इस बात को पूरी तरह से समझ पा रही हूँ क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत समय चाहिए बहुत पेशेंस चाहिए वो तो चलो बच्चे है ही पर इसके साथ साथ उस स्टेज पर हम कितना सीख रहे हैं बीइंग अ पेरेंट हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है हर स्टेज पर हम सीखते रहते हैं हम सीख कर आगे बढ़ते हैं और सिखाने वाले भी ये बच्चे ही हैं और सीख कर बिल्कुल एक दूसरे को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है ना कि एक दूसरे को जज करना है कई बार कहता ना कि उनको समझने के लिए हमें वो सीढ़ी उतर कर थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है उनके लेवल पर ताकि हम उनकी बात को समझ सके उनके पॉइंट को समझ सके विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट विदाउट एनी जजमेंट बस यही तो चाहती है आज की पीढ़ी है ना सो दिस इज आज आपकी चिट्ठी मिली जहाँ पर बातें करते हैं भाई हम किसी को जज नहीं करते यहाँ पर आपके दिल की बात आप रख सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम 4028070 इज़ द नंबर फॉर रेडियो मनोरंजन

विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट विदाउट एनी जजमेंट बस यही तो चाहती है आज की पीढ़ी है ना सो दिस इज आज आपकी चिट्ठी मिली जहाँ पर बातें करते हैं भाई हम किसी को जज नहीं करते यहाँ पर आपके दिल की बात आप रख सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम 4028070 इज़ द नंबर फॉर रेडियो मनोरंजन

आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर। और चलिए आज की ये दूसरी चिट्ठी भी बहुत ही प्यारी सी, और ये है एक एनिमल लवर की चिट्ठी। और एनिमल लवर यानी जो पशुओं से बहुत ही प्यार करती हैं। और आप लिखती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम को सुनना, और अगर आप मेरी इस बात को आज के इस प्रोग्राम में शामिल करती हैं, दिल से थैंक यू। आप कहती हैं कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, पशुओं से बहुत प्यार करती हूँ, खासकर मेरे यहाँ जो डॉगीज़ हैं उनकी मैं सबसे फेवरेट हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ और मेरे यहाँ काफ़ी सारे डॉगीज़ हैं, और मेरा जो दिन है इन्हीं की देखभाल से शुरू होता है, इन्हीं की देखभाल में ख़त्म होता है। मैं जब घर जाती हूँ, जिस तरह से मेरे जो डॉगीज हैं मुझे ग्रीट करते हैं, मुझे मिलने आते हैं, मुझ पर छलांग लगाते हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत दिल से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। पर मुझे दुख होता है जब कई सारे लोग डॉगीज को अपने आंगन में रखकर भी उनको वो टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ वो बर्ताव नहीं कर पाते। क्योंकि एक पशु को पालना भी ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। और कहते हैं ना कि एक बेजुबान जानवर को अगर आप अपने घर में पनाह देते हैं तो उस पर कोई अत्याचार ना करें, उसकी देखभाल पूरी ढंग से, पूरी दिल से कीजिए, क्योंकि वो बेजुबान जानवर बस आप ही के सहारे है। और डॉगी जो है वो एक ऐसा जानवर है जो भले इंसान आपसे मुंह मोड़ ले, पर वे आपको देखकर कभी ना खुश नहीं होंगे, आपको हमेशा दिल से चाहेंगे, दिल से प्यार करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर हो सके तो अपने पशुओं से अच्छा बर्ताव करें। That's really sweet of you. आपका एक छोटा सा मैसेज भी एक बहुत ही ठोस मैसेज लगता है। कई बार बिल्कुल हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग अपने घर आंगन में पशुओं को पालते तो हैं पर उनकी देखभाल ढंग से नहीं करते, उसे समय नहीं दे पाते, या फिर कई बार उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, मारा पीटा जाता है, खाना समय पर नहीं दिया जाता, उनकी देखभाल नहीं की जाती। कईयों के घर में तो ऐसा भी है कि पालतू जानवर को पूरा दिन बांध कर रखा जाता है, एक तरह से ये भी तो एक अत्याचार ही है। सो थैंक यू सो मच इस पॉइंट को, इस बात को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। दिल से आपको भी कहेंगे थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली एक ऐसा मंच है जहां पर दिल खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं बिना डरे, बिना झिझक के। हम कोशिश करेंगे हम आपकी बात को इस मंच में बिल्कुल टैपिक कर सकें।

कई बार टेलीफोन के माध्यम से आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कई बार छोटे छोटे मैसेजेस के माध्यम से हमें ये लिंक्स भेजते हैं या बात करते हैं, तो इसको पूरी तरह से एक स्टोरी फॉर्म देना, भाई आशा करते हैं कि हम इस बात को डेपिक कर पाते हैं अच्छे ढंग से। कहीं कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को चोट पहुंचाना। एंड चलिए इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम को जारी रखते हैं गीतों के सफर में। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? वैसे हमारे कॉलर्स बिल्कुल लगातार हमें कॉल करते आए हैं, 4028070 पर सुदेवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मौका से, और उदय जी हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त अगवेजपुस से, थैंक यू सो मच।

0: You're listening RM Free Radio.
1: रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं और बेशक अगर इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं घर की ओर जा रहे हैं सो जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस वेरी केयरफुल ऑन द रोड्स क्योंकि बिल्कुल चार बजते ही सभी को घर जाने की बड़ी जल्दी होती है और इसी में कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं डेफिनेटली बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है एंड विद दैट इट्स ऑलरेडी भाई 4:45 बज रहे हैं सो एन्जॉय कीजिए अच्छे अच्छे गाने घर की ओर अच्छे मूड के साथ आप जाइए एंड डेफिनेटली जैसे आज की पहली चिट्ठी थी बिल्कुल घर जाके एक प्यारी सी पप्पी प्यारी सी झप्पी अपनों के साथ शेयर करना ना भूले कई बार हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कहते हैं कि भाई ऐसी छिछोरी हरकतें हम नहीं करते अरे छिछोरी हरकतें थोड़ी है ये तो प्यार है प्यार कभी कभी जताना भी चाहिए बताना भी चाहिए दिखाना भी चाहिए छुपाना क्यों है भाई इतनी प्यारी सी चीज़ ऊपर वाले ने दी है आपको और बिल्कुल जताइए बिल्कुल बताइए अपने बच्चों को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो सिर्फ बच्चों को ही क्यों भाई पति पत्नी को भी तो कह सकते हैं एंड डेफिनेटली आज यही जो एलिमेंट है कहीं ना कहीं बहुत बहुत बहुत कम हो रहा है एंड दैट इज व्हाई कहते हैं ना कि रिश्ते टूटते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं भाई यही तो वो गोंद है जो आपके रिश्ते को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखता है So go for it, my dear guys, और इसी के साथ भाई हम है ना आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार एक ऐसी जरूरत है जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में प्यार कम हो रहा है तो आप मार दीजिए तड़का प्यार का किसी ने रोका है आपको हम कुछ गलत कह रहे हैं कभी कभी प्यार जताने के लिए कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं करने पड़ते आपके आंगन में कोई फूल खिला है तो उसे तोड़कर अपनी वाइफ को दे दीजिए विद अ नाइस एंड स्ट्यूपिड सी क्यूपिड सी स्माइल के साथ

चलिए इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे बाद आएंगे रोशन हरनाम आपका साथ देने के लिए कलाकार के बाद कार्यक्रम को लेकर, जहां पर आपका वे साथ देंगे, आपका मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ हमारे एक स्थानीय कलाकार जुड़ेंगे उनका साथ देने के लिए। और एक ऐसी आवाज, ऐसी बुलंद आवाज, और ये आवाज है हमारे मॉरिशस के एक ऐसे कलाकार की जिनका नाम है शत्रुघ्न संजय जी। तो जरूर उनके गीत, उनकी बातें, उनकी जुबानी आप सुन पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो जरूर आप उनका साथ दीजिएगा और हमें यहाँ पर दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे चलते चलते यूं ही रेडियो मनोरंजन के लहरों पर, जुड़े रहिए। आपका मनोरंजन हर एक कार्यक्रम के साथ अलग अंदाज में किया जाता है। और वैसे आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम नेक्स्ट वीक यानी फ्राइडे को शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है। रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आपको।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिलाते चला शाम के 5:05 हो गए बा और अभी अभी आप लोग सुन ला जा रत्ना जी द्वारा बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी मिली और अभी के लिए तो हर खतीर ई कार्यक्रम तैयार हो गए बा।
2: कलाकार की बात

0: कंपनी के प्यारे प्यारे श्रोतागण भाई बहन लोग संगतियालोगन कैसे हो आजा रेडियो मनोरंजन पर आप लोग के हम निशानदार स्वागत कर रहे थे जा शुक्रवार के सांझ के बखत बा पाँच से लेकर छः बजे तक का तो हर खतिर प्रोग्राम कलाकार के बात और कलाकार के बात हमने एगो बहुत ही सुंदर आवाज से आज आरंभ कर लीजा और उ सुंदर आवाज तो लोग तब पहचान ले ले हो जा कहे कि ये आवाज जो ना बहुत ही जानल पहचान आवाज हम मॉरिशस भर में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार होवन जब ओकर हारमोनियम हमने सुन ली सह जान गेली सह कि आज हमनी के बीच में आल होवन गुरुजी संजय शत्रुघ्न जी। प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम।
0: कैसे हुआ भाई संजय जी?
1: बस आपकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से हम यहाँ पर हैं और जितने हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के प्रेम के प्रति हम लोग यहाँ पर हैं।
0: बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम में तू प्रवेश कर ला अपन हारमोनियम के साथ। ये तो बहुत कम देखे के मिलेला कलाकार के बाद प्रोग्राम में और अपन वाद्य के साथ अला अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अला और हमने प्रबंध कर लीजा तब बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी
1: रोशन जी।
0: और साथ ही साथ हमने के साथ एगो और मेहमान बा ओकर हमने बाद में परिचय देव जा तो हर परिचय हमने के श्रोतागण के फिर से सुना ल
1: जितना श्रोतागण लोग हमने हमने संगे जुड़ल हो जा हम है संजय शत्रुघ्न आप सभी लोग हमसे हमारे परिचित हो जा और बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम से और हमारे भाई रोशन के ई बेहतरीन प्रोग्राम में जुड़ल हो जा और आगे रोशन जी
0: बहुत धन्यवाद संजय भाई ऐसे ही गाते रहिए सरस्वती माता का आशीर्वाद तो हर पर बरसता हम देखा था और गाते गाते हारमोनियम उंगली ओकर पर चला बा अपने से उंगली हिलता का बोली तो हरा हमके देख के गावा था परंतु हो जा उंगलियों पर काम करता ये बोला जला प्रोफेशनल सिंगर एंड म्यूजिकल म्यूजिकलिस्ट जैसे बोली ला जा और याद दिला दे हमने के श्रोतागण के कि तो लोग एमबीसी के साथ सकबक खेले जब भाई संजय जी बात करियन गाना गायन तो उही से हमने गो प्रश्न निकाल के तोहरा हमने पूछब जा और एमबीसी के साथ खेलबा तो तोहरा दू गो टिकट प्राप्त होई जलसा के रात बा एगो कार्यक्रम अभी चली 26 सितंबर के शाम के तैकर बारे में हमनी विस्तार रूप से चर्चा करब जा और तुहरा दू गो एंट्री टिकट्स प्राप्त होई तै बाद में फिर से चर्चा करब जा। चल हमनी के जो आज के मुख्य मेहमान होवन हमनी के जो मुख्य कलाकार होवन जो भोजपुरी जगत में खूब चमकेला बहुत ही चमकता सितारा होवन ओकर से हमनी बात करी ला जा और आज दूसरा भाग कहे कि पहले तो भाई संजय जी आगरलन अपन संगीत के सफर के बारे में बात कर ले ललन अब हमनी के बतावो भाई संजय जी हमनी के भोजपुरी महारथी हुआ हमनी के मॉरिशस में तो हमनी के बतावो कि जो हमनी के कलाकार हुआ जा वो लोग ज़्यादातर बोले लन जा कि वो लोग के शुरुआत भोजपुरी क्षेत्र में खासकर भोजपुरी संगीत में गमत के साथ शुरू होल और हमने के बताओ तोहर ऐसा सफ़र शुरू होल गमत से या तू बॉलीवुड गाना गा के अपन सफ़र शुरू कर ला?
1: रोशन जी पहले के समय में

0: एगो मनोरंजन रहल आगे पंडाल में गमत जोन रहल वो सचमुच एगो बढ़िया मनोरंजन रहल। सकेला बोले एगो एगो व्यक्ति जोन सकेला बीमार भी होई एगो एगो गमत में जब बैठ गल ना तो अपने आप ओकर ओकर बीमारी सकी ठीक हो जाए
1: तंदुरुस्त हो जाला
0: बिल्कुल। तो ऐसे में हम भी एकर से प्रेरित रही गमत जैसे कि बड़े बड़ा गायक रहा जैसे कि सुनानियन जी रहा बसंत सिपोल जी रहा विष्णुहरी जी रहा ऐसे में अलग अलग बहुत गायक लोग के देख ले हैं। तो हम भी उस समय हम भी प्रेरणा रहा कि गाय के तो उस समय जवान रही तो शायद बहुत लोग नहीं जाने ला हम भी यही क्षेत्र में घुसल रही तनिशन गमत में गाय हवे चीज रहल और हमने के बहुत आनंद मिले गमत गीत गाय के।
1: बहुत अच्छा भाई संजय जी तो गमत के साथ ही शुरुआत कर ला और तुहर जोन प्रेरणा के स्रोत रहल तुहर जोन पुरनिया कलाकार रहन जो आज इस दुनिया में नहीं होवन तो वो लोग के तू श्रद्धांजलि अर्पित करत हुआ जा गुरु जी और वो लोग से सीख के वो लोग के देख देख के तू भी एक क्षेत्र में प्रवेश कर ले ला और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए ला और ये बात हम के चाहेला अवश्य बोले के कि ऐसा मकाम पर तू पहुँच गल हुआ आज कि तुहर बहुत से शिष्य और शिष्या बा एगो शिष्या तुहर संगे आज आल हुआ वो बारे में अपनी बात करब जा और कुछ बा और तुहरा जोड़े के हाँ जी चला एगो गजल हाँ गजल तो हम जानी ला तू बहुत ही अच्छी तरीके से गावेला ले परंतु जब गमत के तू चर्चा कर ले हुआ तो कहे नहीं हम तुहर से एगो गमत के जो न प्रदर्शन है वो हमने तनी सुनब जा अपन श्रोतागण के तनी ये प्रदर्शन कर द तो वो लोग बहुत ही कृतार्थ हो जायन।
0: क्या बात है रोशन
1: बोला
0: हमारा पर याद करके थोड़ा एक दो अंश करे कि अभी
1: नहीं हम तो जानी ना हम तो जानी ना हारमोनियम के साथ गए बा और सब तो हर दिमाग में बसल बा।
0: अच्छा एक अंश कर दिला।
1: अच्छा

0: है। शास्त्र और पुराण भी कुछ कम तो नहीं है। कोई वेद पुजारी, कोई बना शास्त्री, मार गई मुझको ये संगीत कटारी। मैं तो साजों का दीवाना, मैं तो सुरों का दीवाना। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी, हाय सुना। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी, सात सुरों में गीत गाऊं राग रागनी। कोई वैजतान सेन, कोई बना सुबीर सेन, मार गई मुझको ये संगीत कटारी। मैं तो साजों का दीवाना, मैं तो सुरों का दीवाना।
1: क्या बात बा भाई संजय जी, इतना तू चार चांद लगा दे लई कार्यक्रम में। और तो हर खातिर जितना तालियों की गूंज कर अब सो उतना ही कम हो, ये वेद की वाणी, वेद की चर्चा कर ल। और बहुत ही प्रभावशाली शब्द बा इस गमत के जो छोटा सुन टुकड़ा हमने के पेश कर ल, बहुत ही बढ़िया। तो चल भाई संजय जी, हाई गमत के अंश तो हर खातिर प्रस्तुत कर लन। और ऊ में एगो शब्द आवेला वेद। तश्रोतागण, तोहर काम अब शुरू हो गल बा। अगर तू चाहत हुआ गुरुजी से बात करे के और हमनी के प्रश्न के जवाब दे के, त अवश्य करे सकब। 4028070 पर कत सौ दी का तो मैं सोसाजिस पर अवश्य जवाब दिया। और MBC के साथ खेलिया और दू गो टिकट तू जीतिया। और कौन टिकट जीतबा? जोन फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट बा, जोन धमाका बा, जोन हो शनिवार 26 सितंबर को, यानी कल नहीं

0: शनिवार को 2026 को ब्लिस ब्लैंकेट होल आर्सेनल में हो जा हमनी के बुरी लजा की तैयार हो जा एगो नाइट फुल ऑफ भोजपुरी म्यूजिक डांस एंड एंटरटेनमेंट हो जा पर मनोरंजन होई नृत्य होई और संगीत भी होई त हमनी के जवाब द जलसा के रात प्रोग्राम के नाम है जोन फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट है आर्सेनल में और तुहरा मौका देवल जाता दो गो टिकट जीते के और इमें भाग लेके वहाँ लाइव परफॉर्मेंस रही रंभा राम तोहर नीरज गुप्त मधु किशोर किमिया कुणाल हिरीलाल रोशन सदा सिंह और कृषि मोनिक डीजे रही नेल के स्पाइकी वी डीजे वकील डीजे अभी और डीजे अनी तो चला हमनी के जवाब द भाई संजय जी बतैलन वेद और तोहरों तो जाने लगा कि चार वेद बा अब भाई प्रश्न ये रही कि कौन कौन से वेद बा हमनी के बताव कि जो न चार गो वेद बा उमें से कौन सा वेद है जेकर में संगीत के वर्णन होल बा जो सबसे पुराना वेद है उत ऋग वेद है हमने जानी ल जा तो इ चार वेद में से कौन सुन वेद है जेकर में संगीत के खूबे वर्णन होल बा और भजन कैसे करल जला हवन मंत्र कैसे करल जला ओकर में वर्णन करल गल बात है 402-807-0 पर जवाब द और हमनी बरहब सा अपन मेहमान की ओर और संजय भाई हमनी के बतावा कि तोहर शिष्या यहाँ पर उपस्थित हो गल हुआन
1: बिल्कुल हमनी के बीच में हवन तान्या जी हाँ तो तान्या जी यहाँ हमार साथ हमार संज्ञान बा और खासकर तोहर बुलावा से भी यहाँ यहाँ पर उपस्थित हवन अगर कोनो प्रश्न होई ओकर संगे पूछे कि या फिर गाय के उसकी बिल्कुल
0: बिल्कुल तो तानिया जी हमनी के स्वागत स्वीकार करे तानिया जी नमस्ते कैसे हुआ तानिया जी
2: सबको के नमस्ते
0: नमस्ते ठीक हुआ और भाई संजय जी के साथ आल हुआ अपन गुरु जी के साथ तोहरा कैसे बुझाता है जा आके
2: बहुत अच्छा
0: लगता रेडियो के स्टूडियो में पहली बार के लिए आल हुआ जा
2: हाँ पहली बार
0: के लिए आल हुआ जा और चला हमने तोहर से अभी बात करब जा तो एगो श्रोता भी फोन करत हुआ ओके ले ले जा पहले ओके तानिया जी
2: यस
0: चला हम श्रोता के ले ले ला जा देख ला जा के हो ऑनलाइन पर हेलो
3: हेलो रोशन भैया नमस्कार
0: नमस्कार वीना बहन त्यागू से बात करत हुआ
3: हाँ और संजय भाई के भी बहुत बहुत स्वागत बा हमर घर में
1: हेलो
3: और हमर हमनी के मतलब भोजपुरी जितने परिवार बा सबके ओर से उनको बहुत बहुत बधाई
0: हाँ सुनत हुआ बहन के सुनत हुआ वीना जी के नहीं सुनत हुआ
3: सुना
0: था अतन वीना एगो वीना जी अतन इंतजार करियो अब सुनाता था
1: अब
0: सुनाइए तो भाई जी तुहरा अब सुनत हुआ
3: भाई के भी बहुत बहुत स्वागत और शुभकामना बा
1: बहुत धन्यवाद
3: बहुत बधाई बा जो कार्य करत मन भोजपुरी क्षेत्र में उनका आवाज तो बहुत ही सुंदर बा
1: बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद तुम्हारा आशीर्वाद और ऊपर वाला
3: जी और हम आपके बहुत किसे बोलला फैन है
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
3: सभी भोजपुरी कलाकार मॉरिशस के एक से एक बढ़ के बन हमारे देश में तो सबके ओर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत है
1: बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद वीना जी तो अभी गुरु जी गए वेद पर
3: उत्तर हम ई देवत है
0: साम वेद है अच्छा हम तो हर जवाब नोट कर रहे थे वीना जी साम वेद बोलत हुआ तो चलो तो हर जवाब नोट कर लेने हैं देख अब सा दूसरा श्रोता सही जवाब दे कि नहीं ओके अच्छा धन्यवाद चले गो दूसरा श्रोता के हमने स्वागत कर रहे थे जा हेलो हेलो
4: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते शोभा जी बाकवा से बात करत हुआ
4: हाँ
0: हाँ और हेलो
4: हेलो
0: हाँ संजय भाई के सुन ला संजय भाई
4: हाँ संजय भाई को भी नमस्ते
1: बहुत नमस्ते आपको
0: हाँ ओकर गाना कैसे लगल तोहरा शोभा जी
4: गाना एकदम बढ़िया और टिकटॉक पर भी उनकर भजन देखले हैं हमेशा मिलेला टिकटॉक पर
1: बहुत धन्यवाद
0: हाँ और बहुत ही हैंडसम दिखेल ना
4: हाँ
0: हाँ जैसे मॉरिशस का अमिताभ बच्चन जी हुआ

0: बोला शोभा जी जैसे गुरुजी गैलन वेद पर आधारित कौन जवाब दे बतू
1: जवाब सामवेद
0: सामवेद अच्छा सामवेद चलो भाई सटुगन से पूछी रजा सामवेद
2: एकदम सही जवाब
0: एकदम सही जवाब
2: सामवेद बधाई हो आपको
0: बधाई हो तो
1: धन्यवाद
0: शुभ संध्या वीना जी और शोभा जी दोनों के नाम हमने जोड़ ले ले हैं सर और है जा तो हर नाम विनर के लिस्ट में चला बाद एक अफसर लकी ड्रॉ के जरिए के कर जीत हुए आज सामवेद के बारे में एगो गमत टाइप के गई न बहुत अच्छा तो हमने के बताओ अब तानिया जी से हमने बात करब जा या चलो तानिया जी से हमने बात करी रह जा और एक बार फिर तोहरा हमने स्वागत करत हैं जा तानिया जी हमने के बताओ गुरु जी के साथ अभी वोकल करत हुआ या हारमोनियम सीखत हुआ हमने के बताओ
3: दोनों
0: यानी आप संगीत सीख रही हैं और हारमोनियम भी सीखत हुआ काहे कि गुरुजी के जो नेगो इंस्टीट्यूट है ओकर नाम है
3: एसएस
0: स्वर संगीत सिंगिंग एंड हारमोनियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पावल जला कट्रोबोन में अगर तो लोग सीखे खोजत हुआ जा कैसे गायके गायकी में रुचि रखत हुआ जा और हारमोनियम भी करे खोजत हुआ जा तो गुरुजी तो यहाँ मौजूद होवन बहुत ओकर छात्र और छात्राओं का से सीख के बहुत ही बढ़िया तरीके से गावेलन और हारमोनियम भी खेलेलन तो तानिया जी हम सुनले हैं कि तो भक्ति विधि के बारे में बहुत कुछ जानेल जब एगो विवाह संस्कार होला तो जो वर और वधु के वो लोग पर हरदी चढ़ेला है ना एगो हल्दी विधि के बारे में ई कहे होला हमने के बतावा तनी तानिया जी
3: हरदी हमने के रीत और रिवाज है ई हरदी विधि का है कहे हमने हरदी डाली लाज हमने के खूबसूरती के लिए आशीर्वाद के साथ साथ हमने के रक्षा भी करेला हरदी दुल्हा दुल्हन के सूरत के प्रकाशित करेला ई पीला रंग शुभ मानल जाला साथ साथ में ई हमने के बुरी नजर और भूत प्रेत से बचावेला
0: बहुत अच्छा तो बहुत ही संक्षेप रूप में आप हमने के बतैला कि हल्दी विधि के महत्व का हमने के संस्कृति में बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी तो हम तो से एगो मांग करती है एगो हल्दी गान सकबा गाय हमने खातिर अच्छा बहुत ही बेझिझक बोलत हुआ एगो हल्दी गान सकबा गाय तो चलो हमने तुहरा सुनी ला जा
3: धन्यवाद

0: बहुत ही सुंदर तरीके से ये हल्दी गान हमने के सामने प्रस्तुत कर ला तानिया जी और तो हरा बहुत ही बधाई हो ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह से सिखलापन गुरुजी के साथ है ना ऐसे ही सीखते जाइए और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चल जाइए
1: धन्यवाद
0: चला गमत के

0: बारे में हमने बात कर ली जा गुरुजी के आवाज में एगो गमत टाइप का एगो अंश सुन ली सा हल्दी गान भी तानिया की आवाज में हमने सुन ले ली सा अब बारी बा गजल के जब गुरुजी के नाम ले ला सा त काहे गजल नहीं छेरब जा काहे कि गुरुजी जो रहल गत साल एगो बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता का आयोजन करे रहलन गजल सिंगिंग कंपटीशन जहां पर बहुत नया नया जो न कलाकार रलन उभर के आगे एलन जा वो लोग के हमनी पहचान ले ली जा कि कैसे इस गजल में वो लोग अपन कला के प्रदर्शन कर लन जा तो चला गुरुजी हमनी के लिए हमनी के श्रोतागण के लिए एगो बहुत ही सुंदर सा गजल आप प्रस्तुत कर हमनी सुनब जा भी
1: अवश्य एक बहुत पॉपुलर गजल है ये अनूप जलोटा जी गए हाँ

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात
1: कलाकार के बाद श्रीमान संजय शत्रुघ्न जी के साथ, साथ ही साथ तान्या जी के साथ है। जात हमने सुनत है कलाकार के बाद और हमने सुनत है जा हारमोनियम की ध्वनि और आवाज में तब बहुत ही निखार यह हमने के गुरुजी संजय शत्रुघ्न जी और बहुत से जो शिष्यगण हुआ ओकर से सीखत हुआ जा। तो चल हमने गजल के बारे में तनी बात करी ले जा। तो भोजपुरी में तो बहुत ही माहिर हुआ जा संजय भाई, तो गजल कैसे सीखले हुआ हमने के बतावा तनी।
2: वैसे गजल हमरा बहुत प्रेरणा मिलल बा, बहुत बड़ा बड़ा गजल गायक लोक संगे जैसे कि पंकज उदास जी, अवन गुलाम अली जी, अनूप चलोटा जी, ऐसे बहुत ऐसे गजल गायक हवन जा तलक अजीज। तो ऐसे में हमरा ऐसे बुझाला कि गजल जो है सबसे कठिन है सीखे के और गाय के।
1: अच्छा।
2: गाय की गजल में बहुत क्लासिकल टच रहेला और गजल में एगो सबसे अहम चीज है उसमें तलफुज। वो जे एगो एगो एगो गायक जे गावा तो का तलफुज जे अच्छा नहीं रही तो वो गजल बेकार में चला जा।
1: तलफुज
2: यानी कि ओकर जो डिक्शन बा वो
1: अच्छा सब ओकर जो ज्ञान बा स्वर तार और लय के
2: वो कैसे उतारा था वो
1: अच्छा

0: तो इस सब बहुत अहम बाई में और एगो गजल के ओकरा प्रस्तुत करे के ओकरा निभावे के ओकर अदा जोन खा वो एकदम अलग
1: अच्छा

0: शायरी से चले लाल और शायरी जो सीधा एगो एगो एगो एगो व्यक्ति के दिल के छूले वाला
1: दिल से निकले रहा और दिल के छूले
0: एकदम वो एकदम अलग
1: एकदम अलग और जितना गजल के जो प्रदर्शक था वो लोग के हमने देखल दिखने से बैठ बैठ के परफॉर्म करे के तो गजल हमेशा अच्छा बैठ के परफॉर्म करे के गुरु जी
0: ये एगो अलग अदा है बैठ के एकर एगो व्यक्ति जब एगो गायक जब बैठ के एगो एगो गजल के प्रदर्शन करेलन तो वो एगो दूसर एगो एगो घराना के जैसे कि ऐसे ही चाहे ना ओकरा उतारे के खड़ा होके एगो गजल नहीं सकेला गया वो एकदम अड लगी
1: बहुत अच्छा तो चलो हमने के जान लिया हम जान लिया सर कि हमने के जो श्रोतागण होवन तुहरे गो गाना सुने खोजत हुआ जा
0: अवश्य
1: तो चलो बहुत गाना बात तुहर एगो गाना तो अभी गैलस जैसे शुरुआत हो सजनी का है ना
0: अच्छा
1: तो एगो दूसर हमने डालब सर
0: मितवारे मैंने किया था
1: हाँ मितवारे मुन्ना रे बिटवारे हाँ ये है हमार देश के नौजवान ये हम डाले खोजत थे
0: जैसे आपकी मर्जी
1: बहुत ही प्रभावशाली शब्द बाई में तो हर अनुमति से हम है गाना
0: अवश्य अवश्य रोशन
1: अच्छा धन्यवाद आपको भाई संजय जी तो चलो हमने के सुना जा और आप रेडियो मॉरिशस नहीं बल्कि रेडियो मनोरंजन से जुड़ल हुआ तो हर खातिर और प्रश्न अभी बाकी बा तो चलो है गाना सुना एक बाद में हमने फिर से तोहर से बात करब जा

0: Continuous music. RM3.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद हमारे देश के नौजवान हमारे देश के प्रेमीजन बहुत प्रेम के साथ ये गाना गाएले भाई संजय जी हमने की बताओ बहुत प्रेम के साथ ये गाना तू गाएले बताओ
3: बिल्कुल
2: है गाना गाए के इतना ज्यादा आसान बात नहीं रहल है ना और ये गाना तोहरे बोल
3: बिल्कुल सब
2: तोहरे बोल हा
3: हमर कंपोजिशन
2: तोहर कंपोजिशन तोहर बोल और
3: इसका एकर म्यूजिक भी हम ही कंपोज कर लिया है एक स्टूडियो में हम ही बजा लिया है
2: अरे वाह क्या बात बा और एकर में गो गायिका की आवाज बा आवेला
3: ये मैं हमार जैसे कैसे बोला हमार बहन हमार कैसे बोला
2: हमार साथी
3: म्यूजिकल कार्य में बहुत हमार योगदान दे बा
2: अच्छा
3: रुमा देवी ओकेज चिनान और वही गीत में अपन आवाज दे बा ये फीमेल वॉइस में बहुत उत्तम रहल
2: बहुत सुंदर और ओकर जो बोल भी है बहुत ही प्रेरणादायक बोल बा ये गाना में तो चला अब तोहर से हमने एगो आग्रह कर रहे थे जा कि एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग गैया हाँ एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग और बहुत से लोग तोहरा आवेदन जा तोहर यहाँ सीखे के कहे कि वो लोग बहुत फिल्मी सॉन्ग में बहुत रुचि रखे लन जा और वो लोग सोचे लन जा कि चला गुरुजी के साथ वो तक गए रहे लन फिल्म के गाना तो कसें कि फिल्मी गाना सीखब सब परंतु जब तोहर यहाँ आवेदन जा तो तू अपन जो अंदाज में वो लोग के बेस जैसे है जो न सारे गम अपर सरगम सब नोट सिखावे
3: जा अलंकार सब कुछ
2: एकर सहिते तो लोग सिखावे लजा तो चला तोहर से हमनी सुनब जा एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग गाना और तोहर खतीर संजय भाई एगो बहुत ही सुंदर सा गाना गाए
3: आशा बा कि ये गीत रोके भाई ये गीत हम ले लिया फिल्म दीवाना से अरे क्या गए ले बा कुमार शानू साधना सरगम जी

0: की बात कलाकार की बात
1: कलाकार के बात में अभी आप तानिया जी के साथ गुरुजी संजय शत्रुघ्न के सुन ले जा बहुत ही सुंदर सा गाना फिल्म दीवाना से है गाना हुआ है तो चला 402-8070 पर फटाफट जवाब दे कि ई जोन गाना रहल ई में कौन अभिनेता नजर आ रलन और कौन अभिनेत्री 402-8070 पर जवाब दे और एमबीसी की तरफ से दुगो एंट्री टिकट्स पावर जलसा की रात बा प्रोग्राम कॉन्सर्ट में भाग ले खतेर चनमनी के भाई संजय जी से पूछी ला जा कि हाई गाना कहे चुन ला भी हमनी के साथ गाए के हमनी के आगे प्रस्तुत करे के तान्या जी के साथ कहे ये गाना तू चुन ला रोमांटिक गाना बा कहे
2: वैसे ये गाना बहुत गाना बा जो रोमांटिक गीत बा जो यो इमोशनल गीत है जहाँ पर सीधा एगो तीर जैसन दिल के छू ले बोला
1: अच्छा बहुत अच्छा तो चल हमनी एगो श्रोता के इंतजार में इंतजार करत हुआ ना जवाब दे खातिर ओके सुन ले राजा पहले हेलो
3: नमस्ते रोशन भाई
1: नमस्ते बहन जी को नाम है तुहर
3: हम कल्याणी है त्रियोले से
1: कल्याणी जी के
3: स्वागत शत्रुघ्न भाई की और तान्या जी की भी नमस्कार
2: अवश्य धन्यवाद नमस्कार आपको
1: हाँ जी
3: जवाब ऋषि कपूर और दिव्या भारती
1: तो चल हमने तुहर जवाब नोट कर ले हैं सर एगो दूसरा श्रोता के सुनी रह जा धन्यवाद धन्यवाद हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते आशा जी कैसे हुआ जा
4: हम तो एकदम बढ़िया है और आज के दोनों कलाकार के सुन के तो और चकाचक मन प्रफुल्लित हो गया
2: बहुत धन्यवाद आपको
1: बहुत धन्यवाद आशा जी तो वक्त बहुत कम रह गए बा खाली 3 मिनट बचल बा अभी हमनी के बतावा कौन जवाब देब
4: स्वर्गीय
1: ऋषि कपूर और दिव्या भारती जी बहुत ही सुंदर जवाब दिला अच्छा बा भाई शत्रुघ्न जी बिल्कुल सही जवाब आशा जी देलन और कल्याणी जी भी देलन तो चलो तुहर जवाब एकदम सही आशा जी बहुत धन्यवाद
4: धन्यवाद
1: शुभ संध्या चलो बाद में गोल की ड्रॉ करब जा और तुहरा बोलब जा कि केकर जीत होल बा वीना जी शोभा जी आशा जी और कल्याणी जी के बीच में तो एगो अंतिम जो संदेश बा भाई संजय जी लगता है कि एगो तीसरा पॉट तुहर खातिर हमने के छाला रखे के जितना बात बात तुहर से बताए कि अभी तक

0: तबोल हमनी के संक्षेप में कौन संदेश हमनी के नौजवान और हमनी के जन मॉरिशस वासी के बा संगीत के क्षेत्र में रहते हुए तू अपन संदेश दे बा बोला
1: अंत में हम जितना सोता गन लोग हमने संगीत जुड़ल हो जा हम हाइये सका बोले कि देखा भोजपुरी जन बा हमने के मातृभाषा एके हम नहीं सक हमने नहीं सकब सा भुलाए हमने यही से जुड़ल है ऐसा हमने के रूट्स जो बोले था वही से जुड़ल बा और चाहे कितना भी अपन जीवन में इनोवेशन लावत हो कुछ भी करत हो तो अपन भोजपुरी भाषा के बोलिया गैया इमें नचिया इमें अपन प्रचार प्रसार जोन भी शुभ कार्य बा शुभ चीज संदेश बा पहुँचाए के जनता लोग के अपन के परिवार में ई भाषा के भूलैया नहीं
0: बहुत अच्छा तो बहुत धन्यवाद गुरुजी संजय जी और तानिया जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद हैजा ऐला गुरुजी और शिष्या साथ साथ ऐलन हारमोनियम में प्रदर्शन कर ले जा सुंदर आवाज में सभी के मन मोह ले ला जा दोनों और खासकर जो न रोमांटिक सॉन्ग गैला गमत के अंश प्रदर्शन कर ल गजल भी प्रस्तुत कर ल और भोजपुरी में एंट्री मर ल ये तो बहुत ही बढ़िया रह धमाकेदार एंट्री जैसे बोली ल जा तो हमने के लगता कि एगो तीसरा भाग तोहर संग की हमने फिर से रखब जा बाद में श्रोतागण के जो प्यास बुझल नहीं जितना तोहर ज्ञान के भंडार बा बहुत बहुत धन्यवाद तो चला एक बार फिर हमने बोलब जा कि ईश्वर तुहर रक्षा करी तानिया जी के भी और हमेशा सरस्वती का सरस्वती माता का आशीर्वाद तो लोग दोनों पर बरसल रही तो चला हमने के जो लकी ड्रॉ कर ली ला जा भी और उकर उपरांत हमने के आज के जो विजेता होवन वह आशा जानू जी कॉटेज से उकर जीत हो गल बा और उके प्राप्त होता दो एंट्री टिकट जलसा की रात बा प्रोग्राम जो प्रस्तुत करल जा ये 26 सितंबर की रात्रि को 6 बजे से लेकर शुरू हो जा ब्लिस ब्लैंकेट आर्सेनल में तो चल भाई शत्रुघ्न के हमने बोले जा बहुत धन्यवाद तानिया जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण 5:50 हो गल बा और तुहर खतिर भी प्रोग्राम हमारी धरोहर सुने के बखत चला बा किरण जी हमनी के इंतजार करत हुन जा कि कब ओकरा हम मौका देब बतियाए के नमस्कार और शुभ रात्रि
2: You're listening to RM3 Radio

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अभी हमने ओजोन लेयर पर बतियाब जा वर्ल्ड ओजोन डे मनावल जाला हर बरिस 16 सितंबर के। ओजोन लेयर ह का चीज कहे चाहे हमने के एकर विश्व दिवस मनावे के, कहे चाहे हमने के एकर सुरक्षा करे के, एकर कौन असर बा हमने के जीवन पर, ये बात पर हमने ध्यान देवब जा। दरअसल हमने के जीवन, हमने के दुनिया धरोहर और संस्कृति के जीवित रखे खातिर घामा के जितना ज़रूरत बा उतना ही ज़रूरत बा ओजोन लेयर के, जोन घाम के उस सब जहरीला किरण के धरती पर आवे से रोकेला, जेकर से हमने के हर प्रकार के खतरा बा। ओजोन लेयर एगो ऐसा हल्का गैस है जेकर से घाम के खतरनाक रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेला और ये ब्रह्मांड में जीवन सुरक्षित रहेला। ओजोन लेयर इतना ले जरूरी है कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस 16 सितंबर के दिन इंटरनेशनल ओजोन लेयर दिन घोषित कर लेबा। ये दिन 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करा गल रहा ओजोन लेयर के हानिकारक वस्तु से सुरक्षित रखे के। ऐसन बहुत केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हालोंस, जेकर इस्तेमाल से ओजोन के परत

के नुकसान पहुंचेला। ये प्रोटोकॉल के पालन ढेर देश करेलन सा और CFC होला प्रोजेक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगावेलन सा और एकर से संबंधित बा विना प्रोटोकॉल भी ओजोन लेयर के सुरक्षा खातिर स्थापित करल रहल। 1970 में जब वैज्ञानिक लोग दिखलन जा कि ओजोन लेयर में छेद होता एरोसोल से जोन की एयर कंडीशनर फ्रिज वगैरह वगैरह के इस्तेमाल से होत रहल और एकर असर इतना खराब बाकी एकर से सकी स्किन कैंसर कर बीमारी कैटरक्ट भी सकी होवे और पेड़ पौधा और इकोसिस्टम के खतरा होए तब उन लोग इस सब प्रोटोकॉल के शामिल कर लंजा स्थापित कर लंजा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हीलिंग द ओजोन लेयर एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए ओजोन परत के पुनर्स्थापना और जलवायु परिवर्तन से संघर्ष इस सब बात के शामिल कर गल। तो जिसे देखा था वह इस सब प्रोटोकॉल के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय दिन हमने के एहसास दिलावेला कि ओजोन खाली पृथ्वी पर जिंदगी खातिर जरूरी नहीं है बल्कि हमने के भावी पीढ़ी खातिर चाहिए ओजोन के बचा के रखेगी। हमने अपन जीवन जी ले वैसा लेकिन हमने के चाहिए आवे होला पीढ़ी खातिर ये सब जोन आकाश बा ये सब जोन प्राकृतिक संसाधन बा उ लोग के सुरक्षित रखेगी आवे होला पीढ़ी खातिर। ओजोन भी दिग्बता धरोहर के रूप में ही हमने के मिलल बा और ये अमानत के रूप में हमने के चाहिए आवे होला लैका लोग के सुरक्षित छोड़ के जाए के ताकि उ लोग सकें जा एगो स्वस्थ दुनिया में स्वस्थ रूप से सांस ले वे और यहाँ पर कोनो जहरीला किरण के नहीं चाहिए परे के जैसे कि कोनो बीमारी सकी पैदा हुई। तो हमने सब कोई के ये जिम्मेदारी बनेला कि ओजोन लेयर पर जस्ती से जस्ती जानकारी पावब जा और कैसे एकर सुरक्षा होई काहे ये महत्वपूर्ण है इस सब बात हम जिके चाहे जाने के औरों के जनावे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्वतंत्र मॉरिशन राज्य की नींव रखने वाले ससु सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। पॉपलोमिसिस में उनकी समाधि पर और पोर्टवी वाटरफ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया। एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ा और इंडोनेशिया जंगलों की भीषण आग से जूझ रहा है। 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख। और सऊदी अरब तथा यमन के हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज। कल सीमा वाले इलाकों में हुए हमलों में 24 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। 18 सितंबर 1900 को केवल नगर में ससु सागर राम गुलाम का जन्म हुआ था। आज उसी स्थल पर मॉरिशस के सबसे पहले प्रधानमंत्री की 126वीं सालगिरह पर कई महानुभाव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। ससु सागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की मौजूदगी में फूल चढ़ाने की विधि संपन्न की गई। मंत्री राजेश भगवान, अविनाश राम तोहल, महेंद्र गुंदिया, सांसद रेजा समताली,

0: फ्लाग जिला परिषद के अध्यक्ष धनराज किशुन, बैलरीव के ग्राम परिषद की अध्यक्ष माही काहुल पुस्तों ने भी इसमें भाग लिया। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले दिवंगत सर शिवसागर राम गुलाम को नमन किया गया। निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सुधार, आवासीय परियोजनाएं, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। ये उनकी मात्र कुछ ही उपलब्धियाँ हैं, इसकी सूची इससे बहुत ज़्यादा लंबी है। स्वतंत्र मोशन राष्ट्र की नींव रखने वाले सचिव सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती। पॉम्पलेमसस बोटानिकल गार्डन में आज सुबह राष्ट्रपति की समाधि, राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सचिव सागर राम गुलाम एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन मोशन निर्माण में समर्पित किया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह बड़ी संख्या में लोग पॉम्पलेमसस में एकत्र हुए। जरा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
1: कम संसाधनों के बावजूद एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ते आजाद राष्ट्र का उन्होंने ख्वाब देखा था। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं सालगिरह के मौके पर पॉम्पलेमस के बोटानिकल बाग में अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: Tout le temps mon vieux, moi j'ai 86 ans. Depuis mes enfants me connaissent, mais ce qu'il fait pour nos pays, qui aujourd'hui même nos enfants, nos petits enfants peuvent récolter.
3: Ce qu'il donnait, l'éducation gratis, 23e âge, pension, tout à fait. Les paquets grands. Petit, c'est pas qu'ils ont fait. Égalité.
4: Tcha-tcha, là, nous venons dans mon mariage. Un tcha-tcha comme ça, on dit que la lampe pour gagner. Ce garçon peut suivre, il dit ça aussi, il peut faire ce qui est bon.
5: Si nous suivons la vie de tcha-tcha, souffrance qui nous passait depuis son enfance, son maman, son papa, il nous sacrifier beaucoup quand tcha-tcha est arrivé.
1: उनकी समाधि पर हिंदू रीति रिवाज अनुसार विशेष प्रार्थनाएं की गईं। उनका बेटा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, उनकी बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर, सरकारी सदस्य, लिबरल पार्टी के समर्थक और चचा को निजी तौर पर जानने वाले लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने सर शिव सागर राम गुलाम के सफर को एक बार फिर मिसालिया करार दिया है।
6: Un parcours incroyable ça.
7: Malheureusement, dans l'histoire pas dire. Gosan tu peux t'aller dans Kowalnagar. Mais une histoire impensable même quand va arriver ça. Sur la vie, ce parcours. Personne n'a qu'à faire de tout ça sur ça, pas même moi.

0: वैशाली शख्सियत ससिव सागर राम गुलाम ने न केवल अपने सरकारी कार्यों से बल्कि अपनी गहरी बौद्धिक और सामाजिक सोच से भी अपने युग पर अमिट छाप छोड़ी थी। उनकी 126वीं जयंती के अवसर पर आइए एक ऐसे राजनेता का चित्रण देखें जिसकी कलम उनके लोगों की सेवा में पहला हथियार बनी थी। एक लेखक के रूप हैं। ये पेश है ये खास रिपोर्ट विधि मासीबरन के साथ।
1: 1935 में लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉरिशस लौटने पर सर शिव सागर राम गुलाम धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते हैं। ब्रिटिश समाजवाद और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने गरीब मजदूरों और गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की रक्षा करने का संकल्प लिया। 1927 से ही उन्होंने द टाइम्स अखबार में मॉरिशस शीर्षक से अपना पहला लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने मॉरिशस के संविधान पर चर्चा की थी।
2: Untitled Mauritius, nous peut reproduire cet article-là. Et il y a ça, il y a un national Mauritius Ariapatrika, aussi fin, reproduire cet article-là. Dans cet article-là, jusqu'en 1927, toute bonne constitution qui nous a hérité, l'in fait commenter à sa constitution-là.

0: लेखक प्रहलाद रामशरण के अनुसार सर शिवसागर रामगुलाम एक विनम्र, सरल, दूरदर्शी और मददगार व्यक्ति थे। मॉरिशस में प्रवासियों के वंशजों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति चिंतित, उन्होंने अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे वकील और के बुधन और निरंजन तथा डॉक्टर हजारी सिंह के साथ मिलकर इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने बाद में इंडियन सेंटिनरी बुक प्रकाशित की, जिसमें इस महान नेता का सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स शीर्षक से एक लेख शामिल था। यही वो लेख था जो उनका वास्तविक राजनीतिक घोषणा पत्र यानी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना।
1: मार्च महीने में उनकी पुस्तक उस उत्सव पर एक पुस्तक छपी, इंडियन सेंटिनरी बुक, और उसमें डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स आप्रवासियों की संतानें, बहुत सुंदर लेख है, और वो उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना है। उसमें उन्होंने भारतवंशियों की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और क्या उसको करना चाहिए ये भी उसमें बताया गया है। जन आंदोलन की बात सबसे पहले डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स अपने आर्टिकल्स में किया है और जिंदगी भर उन्होंने उसको उस पर चल करके देश को आजाद किया है।
0: अपनी कलम और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रपिता ने इस प्रकार एक संयुक्त, स्वतंत्र और भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर मॉरिशस की नैतिक और राजनीतिक नींव रखी।
2: बिना कोई अस्त्र उठाए जिस महान व्यक्ति ने मॉरिशस को उनकी पहचान दिलाई, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सर शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर पुतली वाटर फ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। प्रधानमंत्री सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे। मॉरिशस में नेशनल क्राइम एजेंसी कायम करने के सिलसिले में अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज पोम्पलेमस में राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए जाने के समारोह के बाद प्रेस से बात करते हुए ये बात कही। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: सोलह मिलीमीटर फिल्म ऐसी दिखती है। ये हमारे सबसे पुराने आर्काइव्स हैं, जिनमें से कुछ 1960 के दशक के आखिर के हैं। इनमें ऐसी तस्वीरें, आवाज़ें और प्रथाएं हैं जो मॉरिशस की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती हैं। आज भी एमबीसी आर्काइव्स में लगभग 600 रील के बक्स अलग अलग स्थिति में सुरक्षित रखे गए हैं। टोमा मोटई एक टेक्निकल विशेषज्ञ हैं और उनके साथी मैडलेन ओवाद एक मल्टीमीडिया आर्काइविस्ट, दोनों फ्रांस में नेशनल ऑडियोविजुअल इंस्टीट्यूट से हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने नेशनल रेडियो और टेलीविजन स्टेशन के आर्काइव्स की एक इन्वेंट्री बनाई ताकि बनाए गए कंटेंट को बेहतर ढंग से बचाकर रखा जा सके। टोमास मोटे ने कहा,
4: On est ici vraiment dans un cas classique d'archives télévisuelles.
3: ये टीवी और रेडियो के आर्काइव्स हैं। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। समय के साथ इनकी जगह डिजिटल ने ली है और आज डिजिटल ही आर्काइव का मात्र जरिया है, यानी कि इन आर्काइव्स को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। टेलीविजन और रेडियो के ये ऑडियोविजुअल आर्काइव्स देश की सच्ची स्मृति हैं। इस आर्काइव को बेहतर ढंग से बचाकर रखने के लिए सुझाए गए तरीकों में से एक सेंट्रलाइज डेटाबेस कायम करना है। मैडलेन ओवाद कहती हैं, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी खासियत है, रिपोर्ट के अपने अपने तरीके। किसी विषय पर रेडियो और टीवी दोनों का डेटाबेस बनाया जा सकता है, लेकिन इन फाइलों को प्रबंधित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आर्काइव सेक्शन के हेड रशीदा जहांगीर ने कहा, बहुत सी कंपनियां, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हमसे चित्रों की मांग करती हैं।

0: चित्रों को ऑनलाइन डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पब्लिक की पहुंच और एमबीसी के कर्मचारियों के लिए इसके लिए समय भी लगेगा। एमबीसी हर साल हजारों घंटे का कंटेंट बनाता है जिसका रक्षण आवश्यक है। दो प्रोडक्ट नजरिए से फायदा हुआ, एक प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट करने और प्रचार करने पर आधारित और दूसरा उन्हें बचाने और पुरानी रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करने लायक बनाने के तकनीकी तरीकों पर आधारित हैं।
1: पिछले कुछ दिनों से आगालेगा में समस्याएं फिर बढ़ रही हैं। बिजली की कटौती, खराब ओवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: घोषबुआ में लेजामी दागालेगा संगठन की ओर से उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो किसी तरह के इलाज के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए या फिर प्रशासनिक कार्य संपन्न करने के लिए मॉरिशस आए हुए हैं। साथ में वे लोग भी जिनके पास आवास संबंधी पैसा चुकाने के लिए जरिया नहीं। लावाल सुब्रमण्य करीब एक चौथाई सदी से इसके अध्यक्ष है। द्वीप समूह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन्हें अक्सर इसके बारे में सुनना पड़ता है। कुछ दिनों से वहां बिजली की आपूर्ति कट गई है, रोटी नहीं और साथ में इंटरनेट संबंधी परेशानियां भी हैं। आगालेगा वासियों की तरफ से संबंधित परेशानियों के बारे में बताया गया। सुब्रमण्य लावाल ने कहा, कुछ समय से ये पाया गया है कि जनरेटर ठप है। काफी समय से इसके बारे में कहा जा रहा था। बेहतरीन समाधान फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाना है। ये देखा गया है कि जब जनरेटर खराब पड़ जाता है तो कई क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। हाल में एमटेल संबंधी परेशानी थी। ऐसी समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये अहम चीजें हैं। आउटर आइलैंड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आगालेगा के विकास एवं संचालन के लिए जिम्मेदार है। उसके अनुसार बिजली, इंटरनेट और ओवन की खराबी की समस्याएं निपटनी ही वाली हैं। सेबास्टियन लामी ने कहा, ओआईडीसी की तरफ से 3 जनरेटर भेजे गए हैं। 50 केवीए जहाज से इन्हें ले जाया जा रहा है। साथ में इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हैं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय की ओर से। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि ओवन फिर से चालू है और रोटी भी पक रही है। आगालेगा के निवासियों की ओर से यही इच्छा व्यक्त की जा रही है कि उनकी अक्सर पेश होने वाली समस्याओं के लिए टिकाऊ समाधान ढूंढे जाए। यही मांग कर रहे हैं कि जनवरी महीने से ही एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, दिसंबर महीने तक लागू हो ताकि पूरे साल तक कठिनाई ना हो। कुछ छोटे मोटे समस्याएं तो होंगी ही लेकिन बड़ी समस्याएं ना हो। सांसद ईशान जुम्मन ने जल्द ही लावाल सुब्रमण्य की मांगें सुनी और अगले मंगलवार को एक बैठक निर्धारित है। पिछले साल के अप्रैल महीने में चीदो तूफान के गुजरने के बाद से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आगालेगा का दौरा किए जाने के बाद से आखिरकार क्या बदला है? ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज करवाने के लिए मॉरिशस लाना पड़ता है। 18 और 30 वर्ष के बीच की उम्र के लोगों में बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। सांसद ईशान जुम्मन ने कहा, आफकोन की ओर से एक अस्पताल बनाया गया, आधुनिक अस्पताल है जहां बहुत से उपकरण हैं। आफकोन आगालेगा से रवाना हो रहा है, उन्होंने वहां पर अपने सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। एक समय ऐसे था जब आगालेगा में करीब 3,000 कर्मचारी थे, अब वे सभी चले गए। ये अस्पताल उनके लिए था, उन्होंने हमारे लिए ये प्रस्ताव पेश किया है ताकि हम फिर से अस्पताल ले लें। स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ की ओर से इस प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। केवल जब कुछ गंभीर मामले होंगे तब वही प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी। दोनों को लेकर लोगों की भर्ती करने के बारे में भी काम किया जा रहा है, दफ्तर, प्रशासनिक कार्य आदि। इसके लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। आगालेगा वासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि पढ़े लिखे आगालेगा वासी वहां पर काम कर सकेंगे, अन्य पद भी होंगे। आगालेगा में 2 टापू, उत्तर और दक्षिण, 360 निवासी और उनकी शिकायतें, यही उम्मीद बंधी हुई है कि ये केवल कुछ धुंधली यादें बनकर रह जाएं।
1: और हम आपको बता रहे थे आज सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर कई जगहों

0: पर उनकी प्रतिमाओं के सामने फूल चढ़ाए गए। हमारी कई टीमों ने उन स्थलों का दौरा किया। सरा विस्तार रिपोर्ट में।
1: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो शशि सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी बहन सुनीता जयपुल के साथ मिलकर शशि सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर को फिर से जनता के लिए खोल दिया। लकड़ी से बने इस ऐतिहासिक घर के 8 कमरे, राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाने वाले शशि सागर राम गुलाम के जीवन के एक हिस्से की कहानी बयां करते हैं। यहाँ उनकी तस्वीरें, पुराने अखबारों में प्रकाशित लेख और उनके निजी जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस पुनः उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले शशि सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिसर उनके पारिवारिक जीवन की यादों को फिर से जीवंत करता है, उनके चिकित्सीय सफर को सामने लाता है और देश की सेवा के लिए उनके समर्पण की कहानी भी बयां करता है।
0: और हमारी एक टीम प्लनवेट के मेमोरियल सेंटर में भी गई हुई थी, जहां पर कई महानुभाव एकत्र हुए, जहां पर शशि सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो शशि सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे।
0: बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां पर एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ गया है। इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग से जूझ रहा है। नुसंतारा अटलास के अनुमान के अनुसार साल की शुरुआत से अब तक 9 लाख हेक्टर से ज़्यादा जंगल राख हो चुके हैं और इसके और बढ़ने की आशंका है। इस बीच जहरीला धुआं स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है।

0: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में कुछ बादल घिरे रहेंगे और बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लेटों पर। बाद में मौसम अच्छा रहेगा। कल दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और कहीं कहीं पर बारिश होगी। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। रात के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। आज रात दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 एवं 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:05 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:04 पर सूर्योदय।

देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Shok samachar suniye. Balmic Road, Saint-Michel, Belle-Rivière-Sèche-Mé. Balmic Road, Saint-Michel, Belle-Rivière-Sèche-Mé. 33 साल के सचिफ्री अजोल्ड के श्री महादेश सौदागर, श्री महादेश सौदागर जो परमुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके भाई मंदेश सौदागर के मकान बाल्मीक रोड सेमिशेल बेलारी वैसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 11 AM। रुतबा 54 में 68 साल के 68 years old के श्री मोतीलाल गैरप, श्री मोतीलाल गैरप जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान रुतबा सैकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट नून। डी फोर एबेन में 83 साल की 83 years old की श्रीमती वहादम्बा कुपन, श्रीमती वहादम्बा कुपन पैदाशी नाम तिरुवेंगादम और जो विनोदा वारादम्बा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 10:15 बजे उनके मकान डीफो एबेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ का थोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 10:15 AM। स्कूल रोड दागतिया में 53 साल के 53 years old के श्री धर्मानंद ज्योति की मृत्यु हो गई है। वे पूर्व पुलिस अफसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान स्कूल रोड दागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: नमस्कार, इस समय 6:25 हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: RM3 रेडियो।
0: इस समय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नई सोच कार्यक्रम, और नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं।
2: नई सोच
0: लेकर आगे बढ़ना जिंदगी की रीत होती है। जिंदगी की इस रीत में आप शामिल रहिएगा कि कहीं कुछ बातें हो जो हमें गवारा नहीं हो, तो उन बातों को अलग से सोचने की हम कोशिश करें ताकि हम जिंदगी के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ते जाएं, जिंदगी का साथ हमेशा अच्छे से निभाते चले जाएं। चलिए ज़रा हम इस बात पे गौर करते हैं कि जहाँ इस जहाँ में हमें प्यार करने के लिए वक्त नहीं मिलता, उस जहाँ में हम कैसे नफ़रत कर सकते हैं। सो नफ़रत को एक तरफ रखिए, बस प्यार ही प्यार बांटते चलिए, प्यार ही प्यार लुटाते चलिए।

बस इस संसार में प्यार बांटना ही अगर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए तो इस हिस्से को यह हिस्सा हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाए। बस प्यार बांटते चलिए, यही पैगाम हम भेजते हैं। बस हमारा ही पैगाम नहीं है ये, मन्ना डे जी अपना पैगाम।

अगर आप किसी को उनके होंठ पे मुस्कुराहट दे पाए तो उन होंठों की ये मुस्कुराहट आपको हजारों दुआएं देंगी और इन दुआओं से आपके जीवन में रौनक ही रौनक आएगी। ज़रूर आप औरों को मुस्कुराने के बहाने दे दीजिए, हर इन बहानों के बदौलत मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट नज़र आएगी इस जहां में।

मुस्कुराते चलिए मुस्कुराते चलिए और होंठों पे हमेशा मुस्कुराहट लेकर चलते रहिए। गुनगुनाने से दिल खुश होता है, गुनगुनाकर औरों को भी खुश किया जाता है, गुनगुनाकर परिवार में खुशियां बिखेरी जा सकती है।

खुशियाँ और गम जिंदगी में मिलते ही मिलते हैं। आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप उन्हें उनका स्वागत करते हैं, गम मिलते हैं उनका भी कीजिए स्वागत और उनको खुशियों में बदलने की कोशिश कीजिएगा। अगर गम से घबरा जाना है तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। ज़िंदगी को संभाल के रखने के लिए गमों को भी संभालना पड़ता है।

बेशक बातें तो वही हैं, कभी खुशी मिलती है कभी गम मिलते हैं, और इन गमों और खुशियों में कोई हो आपका साथ देने वाला तो जिंदगी खुशगवार जरूर रहती है। इसलिए आप अपनों का साथ ना छोड़िएगा, हर गम में आप साथ दीजिएगा, अगर खुशी में देते हैं तो गमों में भी मत छोड़िएगा साथ किसी का।

बस यही दुआएं करते हैं कि आपको खुशियां ही खुशियां मिले, गम ना मिले, ऐसी तो हम दुआ करेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर गम को आप खुशी में ढालने की हिम्मत रखें, इसका स्किल रखें, ये हम दुआएं करेंगे। बस इसी गाने के साथ, कभी खुशी कभी गम मूवी के गाने के साथ समाप्त होता है आज का नई सोच कार्यक्रम। बस थोड़ी देर में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम।

0: दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज शो में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और औरों के होठों पे मुस्कुराहट सजाते रहेंगे, ऐसी दुआ हमारी है। दिलों की आवाज शो है ये, आपके दिलों की आवाजें गूंजने वाली है। इसमें आपके दिल में जो भी गाना सुनने की इच्छा है आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। पहुंचाने का जरिया जी हाँ, वही नंबर 5250-6200, वही नंबर, ये नंबर है मैसेजेस का और वही नंबर है कॉल करने का, वो नंबर जो आप हमेशा रटते रहते हैं, जानते रहते हैं 4028070। सो इन्हीं नंबरों पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। आपके दिल में जो गाना सुनने की इच्छा है वो गाना तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। आप जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और अपने अपनों को भी अपने साथ अपनी खुशी की टोली में शामिल करते रहेंगे। वैसे अभी तो 7:01 हुए हैं और आज है एक स्पेशल डे हम सब मॉरिशन का। आज है जयंती हमारे राष्ट्रपिता का, सर शिव सागर राम गुलाम, जिन्होंने देश को प्रगति की चाबी दे डाली, निशुल्क शिक्षा देकर, जिन्होंने हर नागरिक की सेहत का ख्याल रखा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके स्वतंत्र कर दिया हर मॉरिशन को, देश को आज़ाद करके। उन सर शिव सागर राम गुलाम जी की जयंती तो उत्सव की तरह मनाने योग्य है। उन महान व्यक्ति की जय जयकार तो करनी ही करनी है। चलिए जरा हम एमजीआई के कलाकारों की आवाजों में ये गाना सुनते हैं।

आप सुन रहे थे ये गाना विशाल मंगरू जी और अक्षय जुरंज की आवाज़ों में। और हम तो इस हरियाली, प्रगति, उन्नति, खुशहाली जो हमारे देश को दी है सर शिव सागर राम गुलाम ने, इसके लिए शत शत धन्यवाद अवश्य कहेंगे उनको। इस समय 7:06 हुए हैं और आपके लिए हम बजवाएंगे वही गाने जिनकी फरमाइशें आपने की हैं। तो चलिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपसे दिल की, आपके दिल से निकली हुई आवाज़ें हम पहुंचाते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए के की आवाज़ में। और साथिया मूवी का ये गाना हम पेश करते हैं आरती जी की पसंद पर। आरती जी ने मेबग से इस गाने की फरमाइश की है अपनी बहन सुष्मिता के लिए। तो चलिए जरा सुनते हैं हमारी ये पहली फरमाइश।

चलिए गौदेजों प्रिवाद तक पहुंचाते हैं हम ये गाना. ये है फिल्म तुमको न भूल पाएंगे मूवी का गाना. और ये गाना आप सुनिए गालगा याग्निक की आवाज़ में, साथ साथ सोनू निगम भी होंगे. और ये तो प्यारी प्यारी आवाज़ है, आप सुनिएगा रीना जी की पसंद पर. गौदेजों प्रिवाद पॉपलेमूस की रीना जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति विनेश के लिए और अपनी बेटी गुड़िया के लिए. तो चलिए ये गाना हम आप सभी सुनने वालों के नाम भी करते हैं.

बिंदिया की चमक और चूड़ी की खनक से थोड़ी सी खुशी तो आ गई होगी आपकी इस पल में, और ये पल खुशियों से ही भरा होता है क्योंकि इस पल में हम आपको वो गाने सुनवाते हैं जो गाने आप सुनना चाह रहे हैं, आपके दिल में जिस गाने की उसको सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है। चलिए ज़रा हम ममता मूवी का गाना पेश करते हैं जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में और जिसकी फरमाइश की है सूरज शर्मा सजादा जी ने त्रियोले से अपने पूरे बिसे सर परिवार के लिए और अपने बेटे निशाल के लिए।

और इस बार राम जानी मूवी का ये बड़ा पॉपुलर सा गाना हम पेश करेंगे। ये गाना उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में सुनिएगा। और ये गीत हम पेश कर रहे हैं सुदेवी जी की पसंद पर, बाकवा से सुदेवी जी ने प्रियोली की दीदी ललिता जी के नाम, कुशल परिवार के नाम दीदी सुनीता, शोभा देवी नाम, मालिका के केशनी, कृष्य और पूरे रामरतन परिवार के नाम किया है ये गाना। चलिए ज़रा ये गाना हम ज़रा गुनगुना लेते हैं, क्योंकि इतना मशहूर सा गाना गुनगुनाए बगैर कैसे रहें भला।

और जरा बढ़े बढ़े हम बढ़ते चलें और प्यारे से गाने की ओर अपना इशारा करें। ये गाना है फिल्म सन्नाटा से लिया गया और सन्नाटा तो बस नाम का है, ये मूवी का नाम है। हम ये गाना सुनेंगे बहुत ही जोश और जोश के साथ। और वैसे ये वो गाना है जिसकी फरमाइश बड़ी बड़ी स्वीट सिक्स मैसेज में दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवेशा और पूरे आपाटू परिवार के लिए मांगा गया है। वैष्णव के पूरे परिवार के नाम करते हैं ये गाना, दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवेशा और आपाटू परिवार के लिए।

0: और चलिए जरा इस समय 7:34 हुए हैं और इस वक्त आपके लिए पेश करेंगे वही गानी जो आपकी फरमाइश होगी और आपकी फरमाइश के साथ साथ आपके दिल की आवाज होगी.
1: Continuous music. RM3.
0: दिल की आवाज आएगी इस बार बाई से नंदा जी के दिल की आवाज आई है हमारे हम तक और उनके दिल ने कहा है कि वो सुनना चाह रहा है दरिंदा मूवी का गाना. तो नंदा जी को सुनवाते हैं हम दरिंदा मूवी का ये गाना मुकेश की आवाज में उनके पूरे परिवार के लिए, पूरे पुनीता परिवार के लिए, गणेश परिवार के लिए, उनके बेटों के लिए, बहुओं के लिए, उनकी बेटी के लिए और नातियों के लिए.

चलिए जरा हैप्पी बर्थडे कहते हैं हम त्रियोली की निधि को। निधि जी का जन्मदिन है आज, बड़ी खुशी खुशी साथ निभा रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य, उनके भाई सर्वेश, यशवीर, तावीश, उनके जीजा जी कमलेश, दानशील, बहनें हैं पूजा, शैली, रेया, गाथिका, तारिणी, मौसा, मौसी, मामू, मामी और उनके मम्मी पापा की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। निधि जी आप अपना केक काटिए और केक के साथ साथ मिठास भी बांटिए, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपको बहुत सारी तरक्कियाँ मिले और तरक्की केस की सीढ़ियाँ आप चढ़ती जाएं, ये दुआ पूरे परिवार की है आपके लिए।

हैप्पी बर्थडे विश किया गया इस गाने के जरिए निधि को जो त्रियोली की रहने वाली है. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू निधि. और इस वक्त 7:45 बज रहे हैं और हम पेश करेंगे एक ऐसा गाना जिसे हमने यलगार मूवी से लिया है. उदित नारायण सपना मुखर्जी की आवाज़ों का ये गाना सुनना चाह रहे हैं गिरीश हरलोल जी. तो चलिए गिरीश जी ये गाना सिर्फ सुनिएगा नहीं गुनगुनाइएगा भी.

तो चलिए चलिए जरा हैप्पी बर्थडे कहें हम हरीश जी को। बबासा के हरीश जी मना रही है अपना जन्मदिन और उन्हें शुभकामनाएं मिल रही है ललिता जी की तरफ से। थयोली की ललिता जी ने सुदेवी जी के साथ मिलकर, ज्ञानी जी के साथ मिलकर, छोटी जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी के साथ मिलकर हरीश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ भेजी हैं।

सुबेर सैन की आवाज में गाना सुनते हैं और ये गाना है आज का पंची मूवी से लिया गया। इस गाने की फरमाइश संध्या जी ने की है गुडलैंड से, बाहुश गुडलैंड से। संध्या जी ने ये गाना मांगा है अपने पति विनोद के लिए, सेजल, रैना और निर्वय के लिए।

ये है दिलों की आवाज और प्यारे प्यारे से गाने, प्यारे प्यारे से चुने हुए गाने हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इस बार लेकर आए हैं हम दुल्हा बिकता है मूवी का ये गाना। दुल्हा बिकता है मूवी का ये गीत आप अनवर की आवाज में सुनिएगा। और हमसे इस गाने की फरमाइश की है पाल्मा का थबोन के प्रीतम जी ने, अपनी बहन स्वास्थी के नाम उन्होंने ये गाना किया है, मामा माया के नाम और अपनी पत्नी रैना के नाम।

0: दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप लोगों के दिलों की आवाज ही सुनाई दे रही है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये दिलों की आवाजें भी हैं। चलिए जरा हम पूर्णिमा जी के दिल की आवाज सुनते हैं। पूर्णिमा जी ने मांगा है फिल्म अमन का गाना। अमन का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ का है। उन्होंने ये गाना मांगा है प्रेमा सिंह चरण जी के लिए, जो पैतृपी मौकी रहने वाली हैं, उनके बेटे उनकी बेटी के लिए और उनके पति के लिए, उनकी माता जी और उनके पिताजी के लिए। और ये गाना अपनी नातिन परी के नाम कर रही है पूर्णिमा जी, जिनका बर्थडे है आज। और परी दसोई जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, उसके भाई कनिष्क की तरफ से, नानी माँ पूर्णिमा की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू परी।

बस चलिए हम लेकर चलते हैं आपको यहूदी मूवी की ओर, और यहूदी मूवी का ये गाना आप सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसकी फरमाइश करने वाले हैं ताया के रफीक मोहित जी, हमारे सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं ये गाना।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: और इस बार चलिए हम शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें सुनते हैं। यादों की कसम मूवी का ये गाना है और इस गाने की फरमाइश विद्या जी ने की है। विद्या जी जो रहती हैं मोका, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपने पिताजी के लिए की है। उनके पिताजी और उनकी माताजी के नाम उन्होंने ये गाना इसलिए किया है क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह है। बहुत बहुत मुबारकबाद भेजी है विद्या जी ने अपने माता पिता को। तो चलिए सुने हम शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें।

चलिए जरा हम पेश करते हैं अगला वाला गाना और ये गाना हम पेश कर रहे हैं गिरीश जी की तरफ से, गिरीश हरलोल जी की तरफ से, उनके उनके फ्रेंड है किरण कौशिक। किरण कौशिक जी का बर्थडे है आज, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू किरण जी। आपको बहुत सारी विशेस मिल रहे हैं आपके सभी स्कूल मेट्स की तरफ से, और किरण कौशिक जी आपके नेफ्यू का भी बर्थडे था 13th को, सो आप दोनों को मंगल कामनाएं हम देते हैं बर्थडे के। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू किरण जी, और आपके नेफ्यूज को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके पूरे परिवार की तरफ से, आपके सभी दोस्तों की तरफ से और गिरीश जी की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा तरक्की करें और हमेशा हर पल आपका खुशगवार रहे। मुस्कुराहट तो आपके होंठों से कभी निकले ही नहीं, कभी जाए ही नहीं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू किरण जी।

दुआओं का ये गुलदस्ता था और इस गुलदस्ते के बाद चलिए जरा हम कश्मीर की सैर कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत, कितनी बेमिसाल, कितनी रंगीन ये कश्मीर नजर आ रही है। चलिए जरा कश्मीर की खूबसूरती के बारे में सुनते हैं हम बेमिसाल मूवी का ये गाना है लता मंगेशकर की आवाज़, और इस आवाज़ में मिली होगी आवाज़ किशोर कुमार जी की, और साथ में इसमें ये गाना आप सुनिएगा सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में भी, यानी कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर की आवाज़ें होंगी, आपकी आवाज़ भी मिलेगी इसमें, हमें पता है। इसकी फरमाइश करने वाले हैं, इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं साजी जी ब्राज़ील से। उन्होंने कनाडा की सरोवर के नाम ये गाना किया है।

और चलते चलते जरा चलते हैं हम पाकी सा मूवी के गाने की और लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत चलिए जरा हम पोर्टलीज के इब्राहिम जी की पसंद पर सुनते हैं। आपको याद दिला दे इस समय 8:36 हुए हैं। सो पोर्टलीज के इब्राहिम जी आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं हम।

और इस बार राहत फतेह अली खां की आवाज सुनिएगा, ये है नमस्ते लंदन का गाना। और ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुनैना जी की पसंद पर। प्लान मानियो की सुनैना जी ने ये गाना अपनी सभी सखियों के नाम मांगा है।

इस समय 8:48 हुए हैं, 9 बजे तक हमारा आपका साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के जरिए है। और ऐसे में हम आपके नाम करते हैं इस बार फिल्म ना जायज़ का गाना, और ये गाना तो हमारे श्रोता लोग बहुत पसंद करते हैं, देखा जा रहा है। गुडलैंड की वनीसा जी ने सुनना चाहा है ये गाना, और कुमार सानुअल का अग्नि की आवाज़ों का ये गीत वनीसा जी मेविन और गैनीसन के नाम करते हैं। चलिए ज़रा इन सवालों को सुनते हैं, जवाब तो खुद ब खुद आ जाएंगे हुजूर। सवाल बहुत प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा है।

0: दिलों की आवाज
1: बस दिलों की आवाज कार्यक्रम का अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं। ये होगा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ओम शांति ओम मूवी का गाना। इस गाने के साथ ही दिलों की आवाज़ प्रोग्राम यहाँ समाप्त हो जाएगा। आप लोगों का साथ मिला इसके लिए बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हम, और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे प्रोग्रामों में इसी तरह भाग लेते रहेंगे। दिलों की आवाज़ कार्यक्रम लगभग 9:03 पर समाप्त हो जाएगा और आप लोगों के लिए हम पेश करेंगे आपका भोजपुरी प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। और प्रोग्राम में भाग लेने के लिए ज़रूर फ़ोन कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, लेकिन इस बार हमारा फ़ोन नंबर बदला हुआ होगा। कॉल करने के लिए नंबर होगा 4028085 और मैसेजेस के लिए नंबर होगा 5251705। तो इन्हीं नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा भोजपुरी गीतों की फरमाइशों के लिए। फिलहाल तो हम आपके लिए ये अंतिम गाना छोड़ी जा चलते हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का। सुनिएगा, गुनगुनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा।

0: ज़माना आता रहे ज़माना जाता रहे पर जो इतिहास में अपना नाम गढ़ा जाते हैं उन्हें हर ज़माने में याद किया जाता है। सरशिव सागर राम गुलाम जी, आज़ादी देकर, शिक्षा निःशुल्क देकर और स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क देकर इस देश की उन्नति में नींव बना गए हैं। इस देश की उन्नति के आधार हैं सरशिव सागर राम गुलाम। उनको हम अवश्य उनकी जयंती पर नमन करते हैं।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
0: भोजपुरी तड़का में तो है स्वागत करते हैं जान। नमस्ते सब श्रोतालों के, जहाँ हो बजा खुशी खुशी रहिया जा, खुश हंसते मुस्कुराते रहिया जा। और ये ऐसे में तो हर स्वागत करते हैं जहाँ अपनी रेडियो मॉरिशस पर तो हर प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का में। भोजपुरी तड़का में तो हर पसंद के गाना तो हमने चले बेकर अब जा, बस हमने क्या टेलीफोन ही करिया जा 4028085 पर, या फिर अपन मैसेज ही भेज दिया जा 5251700005 पर। तो हर पसंद के गाना तो हर तक पहुँचाओ अब जा। और ये भोजपुरी तड़का तो हर प्रोग्राम है, कर में जोन गाना खोज

बजा सुने के हमने की बताई बजाता ई गनोए से हमने की कार्यक्रम के शोभा बढ़ाव जा हम है सुरे खा तो हर साथ देवा थई चला तोहरा नमस्ते सलाम वालेकुम तोहरा वणकम सलाम वालेकुम विष्णु हरि जी के गावली गाना है।

0: भोजपुरी तड़का
1: चला तड़का हमने दबात बाबू वाला गाना संगे लगा ला जद हमार बाबू वाला गाना हमने बजाओ है जा विश्वानी दुबन जी खातिर अभी कहाँ अपन घरे हुई हन विश्वानी जी तभी रुद्रिक में हवन वकेशन मनावत हमन अपन संगतिया लोग संगे अपन सब सखी लोग के नाम करत हमन गाना और संगे संगे अपन बहन शारदा के नाम सहेली नीला प्रतिभा के नाम शोभा जी और गीता गजाधर जी के नाम चला खूब मस्ती करा विश्वानी जी और खूब अच्छा अच्छा पल बिता के आई हमारे समय कुणाल बाबूलाल के गावाली गाना मंगले हवा तो चला तो हर खातिर बजवाई ला जा।

0: भोजपुरी तड़का।
1: अभी कुछ जलसा करब जा, जलसा लालबा। अभी तक किशोर खिमिया जी के गावाली गाना हाँ और जलसा में हुई बजाता ही तक गाना मस्त रही तो हर खातिर। और याद था सुखे रात बाद जे तनी सन्ना आराम आराम करे खुश बताई गाना से बड़ा अच्छा आराम लगेला। सजादा फैमिली खातिर मांग ये गाना बजवावत हैं जा सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। चला सुनी जा।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में गमटवा हुई बे करी कहे कि जन्मदिन के भी त माहौल बाना जन्मदिन के शुभकामना गिरी शरलोल जी देवर था वन अपन संगत्या किरण कोशिक के और किरण कोशिक के नेफ्यू के भी जन्मदिन रहा 13 सितंबर के दोनों जना के गिरीश जी बोला था वन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और बसंत सुपौल जी के गावाली गाना मंगले हवन चला जन्मदिन के बधाई देवे के ई गाना बड़ा जबरदस्त गाना बा किरण जी के और उनके नेफ्यू के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

अब चले बड़े बढ़ते बढ़ते चली जा हमनी अगवा के लेके मामा के लेके पापा के लेके बहल गौरी जी के गीत में संगे संगे बहल गौरी जी के एक गाना मंगले हवन हमने से विजय बेनी प्रसाद जी विजय बेनी प्रसाद जी रहे लन शामुनी और गाना मंगले हवन अपन संगतिया गणेश जगनारायण जी खातिर और मोताबा के शास्त्री बनुमारी जी खातिर और शामुनी के अपन पूरा बनुमारी परिवार खातिर और ऐसे में हम तो लोग के बता देला जा ई गाना जो हमने तो लोग के सुनावत हैं जा ई बहल गौरी जी गैले हो वन अपन संगतिया लोग संगे मिल के यानी कि सुग्रीव गौरी जी भी संगे हो वन ई गाना सुना जा गुनगुनाए ना जा कहाँ गुनगुनाए के गाना तक गमट गमट गाइला

चली जा हमने सुना नयन जी के गावल गाना प्रस्तुत करी ला जा शांति जी खाती तेहूस के शांति जी बगल से ही गाना चला हम बनी बजवाए ला जा दागुचे के उनकर मराठी परिवार खातिर अप्पा दागुचे के उनकर भगिना ओम खातिर और उनकर भाई बलराम खातिर सुना नयन की आवाज़

जिंदगी में और बहुत कुछ बा माँ के सेवा करे के अपन परिवार के देखभाल करे के और ये कितना जिम्मेदारी निभाए के और साथ साथ अपन अपन परिवार दोस्त लोग के बीच में हंसी मजाक भी करे के। तो चला अभी हमने माँ के सेवा के बारे में सुनी जा। विजय राव जी गए ने हवनी गाना और ये गाना मंगले हवन आत्माराम जी पेले ऐसे और आत्माराम जी गाना बन बहन लोग खातिर मंगले हवन छोटी जी खातिर प्रभावती जी सुदेवी जी और ललिता जी खातिर और बेले के अपन पूरा स्नू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का में चला हमने जन्मदिन मनाई ला जा जन्मदिन मनावा थे जा आज निर्वेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकर पापा कृष्ण उनकरा बहुत आशीर्वाद दिले हवन उनकर मामा निशा उनकरा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिले हवन और उनकर बहन कृष्णी उनकर पूरा परिवार उनकरा जन्मदिन के मंगल कामना दिले हवन और ललिता जी

करा जन्मदिन के बहुत शुभकामना देवत हवन संगे संगे ललिता जी सुखलाल मौसी उषा लुकाना छोटी जी प्रभावती जी के नाम करत हवन ई गाना जन्मदिन के ई गाना लीलो माथुर जी के आवाज़ में सरस सुनी जा।

हर दिन शुभ रही, हर पखट शुभ रही, तो हर खाती रही, उम्मीद करत है। और ये अभी चल दादा दादी के कहानी सुनब जा। दादा दादी लोग आल रलन जा बिहार से, आल रलन जा हमने के भोजपुरी बेल्ट से, भोजपुर इलाका से, और आल रलन जा हमने के देश में एगो अच्छा सन जीवन बिताए खातिर। बकिर जब ऐलन जा तो कितना दुख कितना पीड़ा उन लोग के झेले के पड़ल। चले ही बतिया ही जन पीड़ा के बात बा, पीड़ा के जमाना बा, पीड़ा के जन स्थिति बा, यही सुनब जा हमने गासन सिंगारों जी से। और ही गाना हमने बजाओ थे जा गायत्री जी खातिर, नोवेल फाउंस से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर गाना बजवाओ थवन। मायबू से मामी कल्याणी।

मोहन जी खातिर, फिर लॉन्ग माउंटेन से भाभी कल भाभी शकुंतला जी खातिर, नोवेल फॉन्स से अपन संगतिया गीता बाई खातिर मंगले हवन गायत्री जी गीत, और यही गीत हमने श्रीमती जी खातिर बजवा थे। जय श्रीमती जी, मंगले हवन गाना पूरा चंद्रमुनि परिवार खातिर और मोहिस परिवार।

अब चला हमने सुनी जा संतोष महादेव जी के गावाली को गाना और संतोष महादेव जी गैले हवन ये गाना हमने के श्रोतालु पसंद करेला निकरा और यह वाकवा के सुदेवी जी के फरमाइश ये गाना मंगलवान सुदेवी जी दीदी ललिता खातिर कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता दीदी शोभा खातिर देवीना और मालेगा के राम रतन परिवार खातिर हृदय और कुवारू परिवार खातिर असल में हमने सुदेवी जी के पसंद के गाना पजवाओ अब जा विनोद सिरदर्द जी के गावल विनोद सिरदर्द जी के गावली गाना चला सुनी जा पीते पीते पीमा और पीते पीते पीमा के बारे में चला सुनी जा हमने कहाँ प्लांट ले हवन पीते पीते पीमा अपन खितवा में

और जो संतोष महादेव जी के गावल गाना बरमिट में चढ़ल बा गरम गरम पानी ये गाना के हमने चर्चा कर ली जा गाना अब तहला कैसे नाव जा और ये गाना मंगले हवन हमने से अनीता लाल जी जी और ये गाना पर सैपिया के पूरा महादेव परिवार खातिर मदलबे के पूरा इतू और लाल जी परिवार खातिर मंगले हवन अनीता लाल जी। अब यही गाना सुनीता जी सुने खोजत हवन घोंगुप से और अपन बहन विमाला खातिर मांगत हवन कुंगुमा की।

श्वेता बाबूलाल के गावल किशोर किमिया के संगे संगे गावली गाना चला सने जा हमने अमृता जी के पसीन पर पीतों के अमृता जी गाना मंगले हवन अपन बेटी पूनम खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और अपन नातिन सोनिया और परी खातिर

बेशक यहाँ कबल चिंतामणि और विभा चिंतामणि के गावल काम करवा और काम करवा गाना हमने बजावा था जस सोनम जी खातिर सोनम जी गाना पिछे फिर भी ऐसे मंगले हवन अपन सब संगतिया लोग खातिर सब कोई काम करता था जब भी

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का
1: भोजपुरी तड़का है, संगीत के तड़का और ये भोजपुरी गीत के तड़का, भोजपुरी भाषा के तड़का जहाँ हो बजा ये गीतवन सुन के तोहरा दिल खुश होवत हो, यही उम्मीद करत हैं जा। और ये अभी सुनब जजन गाना हमने किशोर कुमार रमेश्वर जी के गावल, ये गाना चला हमने उनकर छुपी छुपी रानी के बारे में सुनब जा चला। ये है दीवानगी से भरल भरल एक गाना और ये गाना चला हमने सुनी जा वीना जी के पास। इन पर वीना जी गाना मंगले हवन खिफिया जगह पर से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी के बाद जब छड़ेला था सोना नयन और बसंत सुपौल जी के बीच में जो नाखुश हो रहा एक हर बारे में चर्चा तो होती रह रहा ये चर्चा के बिना तो भोजपुरी संगीत तनी तनी सन्ना फीका फीका सा रह गया चलो ये जन चर्चा हर जगह हर कोना में चले ला ये चर्चा के बारे में तो हम जानी ला जा और ये हर मिसा बात करी ला जा कि सुना नहीं अनर बसंत सुपाल जी के बीच के जन लाखोस है ये तो चौचक है चलो सुनी जा ये लाखोस सुना नहीं अनर बसंत सुपाल जी के गावल और ये लाखोस हम इसे मंगले हवन विजय जी रहे लन गाँव भी और ये गाना अपन दुगो संगतिया खातिर मंगले हवन देव भरत और सुदेश खातिर तो चलो सुनी जा इलाकोस

Sonuol, pas satu AC kamper al bahar.

0: रात बाहो
1: जलसा के रात बाता चला जलसा करी जा और प्रस्तुत करी जा हमने कुनाल हिरलाल की गावल जलसा के रात होला गाना और ये गाना हमने नितिन खातिर बजावत है जा नितिन जी लाफ लोगा से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार के नाम

0: की तड़का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: कार्यक्रम के शोभा बढ़ाए खातिर आकाश जी मंगले हवन गाना अभिमन्यु हरपाल जी के गावल अयोध्या के राज सीता मांगे अयोध्या के राज आकाश जी बजवाए खोजत हवन मीला वंदना रेखा और रागिनी खातिर।

बचत करे के हमनी के जीवन के सबसे अच्छा अनुशासन है और ये अनुशासन के हमेशा अपन जीवन में बरकरार रखे के चाहेला रखी ला जा। ये अनुशासन अपन जीवन में तो हमें बहुत प्रगति करी।

0: कोई सुना जा, ढेर ताका नहीं लिया जा, तोशियों बढ़ जाए, जाबेद बढ़ जाए, ढेर सोचिया नहीं।
1: यह धर्मदेव रंगू जी के गावल गाना सोच नहीं तनी सन सोचल कमती करा अपन दिमाग के काफ़ी आराम दिया के सोचा। अभी गाना जो चलाओ थे जब धर्मदेव रंगू जी के गावल अंतिम गाना रही हमने के भोजपुरी तड़का के ये कार्यक्रम के बाद 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीशा लेके आई हन। तो हर साथ मिला लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टेलीफोनिंग कर ला जा हमने के कार्यक्रम में भाग ले ला जा हमें के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना सुनवाई ला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। Very good evening to all of you. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

0: हुए देख।
1: वैसे हर लव्स, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात बहुत हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे कि निशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।